यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के वैशाख माह के 31वीं तिथि, तदनुसार 21 मई सन 2026, सुबह के 8:55 होने को हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

आज सुबह सबसे पहले आप सुनेंगे 9:10 पर रामचरित मानस, 9:20 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, और उसके बाद में 9:40 पर होगा कार्यक्रम गैर फिल्मी गजलें।

10 बजे आप सुनेंगे गाने पुराने जमाने के, 10:30 पर आज सुबह वक्त रहेगा गाने नए तराने नए का।

शाम 5 बजे आप सुनेंगे युववाणी कार्यक्रम और उसके बाद आप सुनेंगे जयपुर से प्रसारित धीनेरी बाता। 6:20 पर आप सुनेंगे माटी के स्वर कार्यक्रम। किसानवाणी कार्यक्रम होगा शाम 7 बजे और उसके बाद में 7:30 पर

0: आप सुनेंगे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम और रात्रि के 8 बजे हमारे केंद्र से आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रम। सुबह के 9 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर से। प्रादेशिक समाचार, मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, पंचायतों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, राज्य में पेट्रोल डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध, आम जन को घबराने की आवश्यकता नहीं। और प्रदेश में आज पहली बार गोडावण दिवस मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली दौरा पूरा कर नई दिल्ली लौट आए हैं। भारत और इटली ने कल अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की। दोनों देशों ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, समुद्री परिवहन और बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने टैक्स से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस बयान में कहा कि भारत इटली संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक व्यवहारिक और भविष्यन्मुखी रोडमैप देगी।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। ये बैठक 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं और फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबैट सामग्री और अपुष्ट जानकारी फैलाते हैं। इससे छात्रों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में शिक्षा मंत्री ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र के ठुम्बड़ गांव में सुबह भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया। ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताई, जिनमें पानी की समस्या सबसे ज्यादा थी। इस पर मुख्यमंत्री ने एनिकट, हैंडपंप और तालाब बनाने सहित कई कार्य स्वीकृत किए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार गांवों की मजबूती के लिए काम कर रही है। पंचायतों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार संकल्पित है।
3: हम रोजगार सृजन करने का काम हमारी पंचायत में कैसे कर सकते हैं, हमारे उस क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं? हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हम नई तकनीकी से कैसे खेती कर सकते हैं, कम पानी में कैसे अच्छी खेती कर सकते हैं, कौन सी खेती लाभदायक है जिसको हम कर सकते हैं, उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की कहां आवश्यकता है जिसको हमारी

0: खेती होती है उसको कोल्ड चेन से कैसे जोड़ा जाए, सुगमता से किसान का माल मंडी में कैसे आए, पशुपालन को जोड़ते हुए डेयरी का लाभ कैसे हमारे किसानों को मिले, उसका उत्पादन कैसे बढ़े, किसान और हमारे माता बहने हमारे मजदूर आर्थिक रूप से संबल कैसे हो, और ये जब संभव है जब हम गांव की छोटी छोटी बातों को, गांव के लोगों को मोटिवेशन करते हुए उस गांव को हम मजबूत बनाएं।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने किसानों और पशुपालकों से संवाद किया। श्री शर्मा ने किसानों से प्राकृतिक खेती और उन्नत तकनीक को अपनाकर आर्थिक रूप से मजबूत होने की बात कही। मुख्यमंत्री आज शाम डूंगरपुर पहुंचेंगे। वे वहां कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री 84 विधानसभा क्षेत्र की तंबोला ग्राम पंचायत में ग्राम चौपाल में शामिल होंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे जालौर रेलवे स्टेशन से भुज दिल्ली वाया भीलड़ी जालौर पाली मारवाड़ जंक्शन एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इस रेल सेवा के जरिए जालौर पहली बार राजधानी दिल्ली से सीधा जुड़ेगा। ये ट्रेन अंजार गांधीधाम भचाऊ भीलड़ी धनेरा रानीवाड़ा मारवाड़ भीनवाल मोदरान जालौर मोकलसर समदड़ी लूनी पाली मारवाड़ जंक्शन ब्यावर अजमेर किशनगढ़ जयपुर जंक्शन जयपुर गांधीनगर स्टेशन बांदीकुई अलवर और रेवाड़ी स्टेशनों पर ठहराव करेगी। ये ट्रेन कल उद्घाटन स्पेशल के रूप में चलाई जाएगी। इसके बाद इसे नियमित कर दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि राज्य में पेट्रोल डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। आमजन को किसी भी प्रकार की घबराहट में आकर अनावश्यक खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है। कल राज्य में पेट्रोल डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पर मुख्य सचिव ने जयपुर सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान देश की प्रमुख पाइपलाइन नेटवर्क प्रणाली से जुड़ा हुआ है, के माध्यम से पेट्रोल डीजल और एलपीजी की नियमित आपूर्ति लगातार जारी है। केंद्र सरकार ने भी प्रदेश को आश्वस्त किया है कि भविष्य में भी आपूर्ति में किसी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी। विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि अधिवक्ता केवल न्यायालय में पैरवी करने वाले व्यक्ति नहीं होते, बल्कि वे लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की सशक्त आधारशिला है। उन्होंने कहा कि समाज में न्याय की स्थापना, आमजन के अधिकारों की रक्षा और संविधान के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कल्पावटा में न्यायालय परिसर में अभिभाषक संघ कार्यालय के लोकार्पण और नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने कहा कि एक सफल अधिवक्ता वही है जो अपने मुवक्किल के विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का हम सभी को पालन करना है, बचत करना हमारी परंपरा भी रही है।
2: मोदी जी का आह्वान आम जन के लिए है, जनता में इसका बहुत फायदा मिल रहा है, इसीलिए हमारा भारतवासियों का आने वाला भविष्य सुरक्षित है। अपेक्षा अन्य देशों की, बड़े बड़े देशों में तेल के भाव, गैस की सप्लाई, उसके बनी से हम बहुत सुरक्षित स्थिति में। और मेरा सबसे अनुरोध है, हम सब मिलकर के हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी के आह्वान की पालना करें तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा और थोड़े दिन बाद में जो घटनाक्रम में निपट जाएगा उन्हें सामान्य स्थिति।
1: राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण को समर्पित गोडावण दिवस आज प्रदेश में पहली बार मनाया जा रहा है। इसे लेकर जैसलमेर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा आज डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। इस दौरान गोडावण प्रतिमाओं का अनावरण किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि गोडावण संरक्षण को लेकर किए जा रहे प्रयास रंग ला रहे हैं।
3: गोडावण दिवस को लेकर स्वर्ण नगरी में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा गोडाउन संरक्षण को लेकर चल रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस दौरान गोडाउन प्रतिमाओं का अनावरण भी किया जाएगा। वहीं आज जैसलमेर शहर के उत्कृष्ट जैन भवन में गोडाउन दिवस समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। गौरतलब है कि गोडाउन के संरक्षण के लिए जैसलमेर के रामदेरा व सुदासरी में विशेष ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां AI तकनीक से इनकी आबादी बढ़ाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य पक्षी के सुरक्षित आवागमन के लिए रामदेरा में एक विशेष टनल का निर्माण भी करवाया जा रहा है। मनीष व्यास, आकाश। गोडाउन दिवस को लेकर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, पंचायतों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, राज्य में पेट्रोल डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध, आमजन को घबराने की आवश्यकता नहीं। और प्रदेश में आज पहली बार गोडावण दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस।
5: एपिसोड 102।

श्री राम के विनय भरे मधुर वचन सुनकर भी ऋषि परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शिव का धनुष तोड़ने का अपराधी होकर भी वो उन्हें ही ज्ञान सिखा रहे हैं। उनकी ये धारणा भी पक्की हो गई कि राम की सहमति से ही उनका छोटा भाई कटु वचन बोल रहा है। श्री राम ने मन ही मन में सोचा कि दोष तो लक्ष्मण का है और मुनि का क्रोध अब उनकी ओर बढ़ रहा है। सच ही तो है कि कभी कभी सीधापन भी भ्रामक होता है, तभी तो लोग टेढ़े लोगों की वंदना करते हैं। किंतु प्रकट रूप में राम ने परशुराम के कुठार के आगे अपना सिर झुका दिया। बोले, स्वामी, जिस प्रकार भी आपका क्रोध शांत हो आप वही कीजिए। भला स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? सच तो ये है कि मुनिवर का वीरों का सा वेश देखकर लक्ष्मण ने कुछ कह डाला। वैसे वास्तव में दोष लक्ष्मण का भी नहीं, उसने उनका नाम तो सुना था किंतु पहचानने में भूल हो गई। यदि वो मुनि के वेश में आते तो लक्ष्मण ने उनकी चरण धूली ले ली होती।

आकाशवाणी नागौर का ये चेयरमैन चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 9:20 हुए हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। यह है पहली प्रस्तुति, आवाज शर्मा बंधु की है।

युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 0152-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।

आकाशवाणी नागौर के सिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 9:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गजलें। यह है पहली पेशकश।

हरिहरन की गाई इसी गजल के साथ गैर फिल्मी गजलों का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 103.7 MHz पर यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं गाने पुराने जमाने के। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं ये पहला गाना जिसे हमने लिया है फिल्म जानी दुश्मन से। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: लीजिए सुनिए मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म इज्जतदार का ये गाना।

0: हुआ?
1: अभी आपने सुना ये गाना फिल्म जब जब फूल खिले से, मोहम्मद रफ़ी और नंदा की आवाज़ में।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लीजिए सुनिए ये अगला गाना फिल्म आग और शोला से। लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाज में ये गाना है।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

अभी आप सुन रहे थे गाने पुराने जमाने के, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं गाने नए तराने नए। ये है पहली पेशकश।

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: अभी आपने सुना ये गाना फिल्म जीरो से, अब है जोधापुरकर की आवाज में। लीजिए सुनिए गाने नए तराने नए में ये अगली पेशकश।

फिल्म का नाम है दिलवाले। अरिजीत सिंह, नेहा कक्कड़, कनिका कपूर, सिद्धार्थ महादेवन की आवाज़ में है ये गाना, जिसे लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन बनाई है प्रीतम ने।

अभी आपने सुना ये गाना फिल्म बार बार देखो से बिलाल सईद की आवाज़ में। और लीजिए सुनिए गाने नए तराने नए में ये अगला गाना।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

जावेद अली और शक्तिश्री गोपालन के आवाज़ में सुना अभी आपने ये टाइटल सॉन्ग फिल्म जब तक है जहाँ से। इसी के साथ गाने नए तराने नए अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमे चैनल है FM बैंड 103.7 MHz पर। दिन के 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं मुंबई से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं हरिहरन और लेस्ली लेविस की आवाजों में, लेस्ली लेविस और मुनव्वर मासूम का लिखा हुआ ये गाना, संगीत लेस्ली लेविस और हरिहरन का, एल्बम का नाम आत्मा।

अलीशाज लव नोट्स, ये एल्बम का नाम है। अलीशा की आवाज, नितिन रायकवार के बोल और संगीत है संदीप चौटा का।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं शान, सुनीता राव और साथियों की आवाजों में गुलजार का लिखा हुआ ये गाना, अनु मलिक का संगीत, फिल्म का नाम अशोका।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: है।
1: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजें, सहिर होशियारपुरी के ये शब्द हैं, संगीत जगजीत सिंह का और एल्बम दिल भी तू जान भी तू।

0: पी बलराम की आवाज़ में ये गीत आपने सुना, शाहीन इकबाल के बोल, सुजीत शेट्टी का संगीत, एल्बम था ख्वाबों में।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम, रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। देखा है तेरी आंखों को, ये एल्बम का नाम, जय वालिया की आवाज, इन्हीं का लिखा हुआ गाना, संगीत ललित का।

0: AIR at 90.
1: इटली की यात्रा पर थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने, धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थीं। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में 23 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी हैं। नए मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। नए सदस्यों को आज सुबह लोकभवन में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई। अब मंत्रिमंडल में कुल 32 मंत्री हैं। इनमें मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। पहला जो गीत है, जिस देश में गंगा रहता है, इस फिल्म का गाना बाली ब्रह्म भट्ट और सुनिधि चौहान की आवाजें, प्रवीण भारद्वाज का लिखा हुआ गाना, संगीत आनंद राज आनंद का।

दोस्तों आज है सांस्कृतिक विविधता दिवस, तो आज के गानों में कुछ यूं होगा कि हिंदी के अलावा कुछ जो दूसरी भाषाएं उनके भी कुछ कुछ शब्द इसमें शामिल है इन गानों में, तो सुनिए आप इनका आनंद लीजिए और अगला ये गीत सुनिए। खुद्दार फिल्म का गाना किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है राजेश रोशन का।

0: यादों की महफिल कार्यक्रम के बाकी गाने एक ब्रेक के बाद।
1: लीजिए कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, किसानवाणी सजीव फोन इन कार्यक्रम में इस गुरुवार यानी कि आज दिनांक 21 मई 2026 को फोन इन का विषय है खेती की आधुनिक विधियां। इस विषय से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में इस बार विशेषज्ञ होंगी सोनाली मीणा, जो कि सहायक आचार्य कृषि महाविद्यालय नागौर से हैं। आप भी अपनी खेतीबाड़ी, पशुपालन संबंधी समस्या या जिज्ञासा के निवारण हेतु हमारे टेलीफोन नंबर 240-168 पर आज गुरुवार को शाम 7 बजे से 7:30 के बीच हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 240-168, नागौर का स्टडी कोड है 01582। सूचना समाप्त हुई।

ब्रेक के बाद अब यादों की महफिल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं गुलामी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। गुलजार के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली। एक दूजे के लिए इस फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: मिशन कश्मीर फिल्म का ये गाना शंकर महादेवन, जसपिंदर नरूला, सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजों में। राहत इंदौरी की बोल, संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे, नीलांबरी किरकिरे और साथियों की आवाजें, स्वानंद किरकिरे के बोल, संगीत अमित त्रिवेदी का।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की आवाजों में लीजिए अब सुनिए श्री 420 इस फिल्म का गाना। गीतकार शैलेंद्र हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना, आर डी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम नौकर।

0: कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना गोदान फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज, अनजान के बोल और रविशंकर का संगीत।
1: मैं उठते ही लो अरे पुरवा के झोंकवा में

0: प्रसारण यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 1 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से।
1: आमिर चैनल है, दिन का 1 बजने वाला है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र के चुड़ादा गांव में सुबह भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया, ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताई। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मॉर्निंग वॉक के बाद मुख्यमंत्री बांसवाड़ा सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत के संदेश को आगे बढ़ाते हुए आम जनता से पेट्रोल डीजल बचाने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील की। सर्किट हाउस पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री का आज कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करने का भी कार्यक्रम है। इसके बाद वे डूंगरपुर के लिए रवाना होंगे। श्री शर्मा वहां भी कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री 84 विधानसभा क्षेत्र की तंबोला ग्राम पंचायत में ग्राम चौपाल में शामिल होंगे। कल मुख्यमंत्री इसी गांव में प्रातःकालीन भ्रमण करेंगे। देशभर में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा की प्रवृत्ति से दूर रखना है। इस दिन वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इधर पाली के राजीव गांधी स्मृति भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया और 2 मिनट का मौन रखकर पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण को समर्पित गोडावण दिवस आज प्रदेश में पहली बार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जैसलमेर में राज्य पक्षी गोडावण की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा, जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी सहित वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वन मंत्री ने डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र का भ्रमण कर गोडावण संरक्षण के लिए चल रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा भी की। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड ने सरस दूध और दूध उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें आज शाम से लागू होंगी। डेयरी ने दूध के दाम में प्रति लीटर 2 रुपए की वृद्धि की है। दूध के साथ दही, छाछ, लस्सी और पनीर की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। 200 ग्राम पनीर का पैकेट अब 74 रुपए की बजाय 80 रुपए में मिलेगा। इसके अलावा 200 ग्राम दही का पैक अब 16 रुपए की जगह 18 रुपए में मिलेगा। सादा छाछ पर 1 रुपए और नमकीन छाछ और लस्सी पर 2-2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले 13 मई को अमूल और मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की थी। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने अभी इससे कोई राहत नहीं मिलने की संभावना जताई है। विभाग ने आगामी 3 से 4 दिन तक प्रदेश के आधे से अधिक हिस्सों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर और कोटा संभाग के अधिकांश जिलों में गर्म हवाओं का असर बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में राज्य के 7 शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा, जबकि 8 शहरों में रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार रिकॉर्ड किया गया। श्रीगंगानगर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं बीकानेर की रात सबसे गर्म रही, वहां न्यूनतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आम जन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित साइबर धोखाधड़ी से सतर्क रहने की सलाह जारी की है। पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक VK सिंह ने बताया कि साइबर अपराधी अब गूगल जेमिनी, ChatGPT और ग्रोक जैसी AI तकनीकों का उपयोग कर आधार बायोमेट्रिक सुरक्षा प्रणालियों को बायपास करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से अपने आधार बायोमेट्रिक्स को एम आधार ऐप या UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से लॉक करने की अपील की है। बायोमेट्रिक्स लॉक होने पर फिंगरप्रिंट और आइरिस डेटा का उपयोग तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक स्वयं उपयोगकर्ता उसे अनलॉक ना करे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
0: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

सवेरा फिल्म का गाना आपने सुना, 1958, 1958 की ये फिल्म है। मीना कुमारी और अशोक कुमार पर फिल्माया गया ये गाना है। हमारे बहुत सारे साथियों ने इसका सही जवाब भी हमें लिख करके भेज दिया है। एक साथी लिखते हैं कि नदी केवल एक पृष्ठभूमि नहीं है, नदी प्रेम में पड़े प्रेमियों की भावनाओं को प्रगाढ़ कर देने वाली, मन को निर्मलता और सुकून देने वाली एक सजीव साथी है। नदी की निश्चलता और निरंतरता को समय या फिर जीवन के प्रवाह के रूप में देखा जाता है। नदी, बहती जलधारा, लहरें प्रिय के साथ गुजारे पलों को याद दिलाया करती है। इसके अलावा आज एक दिवस है, चाय दिवस। बहुत सारे श्रोताओं ने इसके बारे में भी हमें लिख भेजा है और शुभकामनाएं भी दी है। उनकी भी कुछ बातें हैं, वो भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। एक साथी लिख रहे हैं कि अचानक नदी की तरफ से एक ठंडी हवा का झोंका आता है। वो हवा सिर्फ मेरे शरीर को नहीं छूती बल्कि सीधे मेरे दिल को छूकर निकल जाती है। उस बर्फीली और मखमली हवा के स्पर्श के साथ ही मेरे जहन में अचानक तुम्हारी यादें ताजा हो जाती है। ऐसा लगता है मानो उस बहती हवा ने चुपके से कान में तुम्हारा नाम लिया हो। इस शांत माहौल में तुम्हारी याद आना कोई इत्तेफाक नहीं है। जी हाँ, ये बातें हमारे साथियों ने लिख करके भेजी है। लेकिन एक बात आपसे और भी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि गर्मी इस वक्त अपने चरम पर है। बहुत परेशान हैं हम सब लोग गर्मी की वजह से, कि जब बाहर जाते हैं तो गर्मी परेशान करती है। तो इस तपती गर्मी में पानी, हवा और छांव, ये तो हमें सुकून देते ही हैं। इनकी इच्छा तो हमें रहती है कि खूब अच्छे से हम पानी पिए, और चलते वक्त अगर ऐसा लगे कि छांव मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसके अलावा भी कौन सी चीज़ें हैं जो तन और मन को बहुत ठंडक देती है और सुकून देती है? क्या किसी की प्यार भरी बातें होती हैं, क्या किसी का साथ होता है, या किसी की याद होती है जो आपको इस गर्मी में भी बहुत ठंडक का एहसास करवाती है? इसके बारे में भी आप हमें लिख सकते हैं। चलिए अपनी टेक्स्ट की इबारत की तरफ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हवा के साथ साथ, जी हाँ, अगला जो गीत है सीता और गीता फिल्म का, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें हैं। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है, आरडी बर्मन का संगीत है, संजीव कुमार और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया ये गाना है।

सीता और गीता फिल्म का ये गाना हमने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि संगीत में खो जाने से मन भटक जाता है और गर्मी का एहसास नहीं होता, तन मन दोनों को सुकून मिलता है और विविध भारती इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अपनी पसंद के गाने सुनने मिलते हैं और सुरीले सफर में जो है बहुत सुरीले गाने भी आपको कई बार जो आपकी पसंद के होते हैं वो भी आपको सुनाई देते हैं। इसके अलावा एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज जो चाय दिवस है उसके बारे में बहुत सारे साथियों ने जिक्र किया है। लिखते हैं कि आज इंटरनेशनल टी डे है, यानी कि

आज सुरीला सफर प्रोग्राम 1 बजे से मैं सुनूंगा, ऑफिस में सुन रहा हूँ, और आपके साथ मेरी पसंद जो है वो अदरक इलायची वाली चाय का आनंद भी ले रहा हूँ, घर की चाय जो मेरी हमसफर यानी कि धर्म पत्नी ने बनाकर दी है, स्टील के थर्मस में लेकर के आया हूँ, और वही चाय पीते हुए आज का कार्यक्रम सुनूंगा। एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल नदिया के किनारे भी कमर्शियल हो गए हैं, जब लोग जुड़ते हैं तो कोलाहल बढ़ जाता है, उस माहौल में सुकून तो नहीं मिलता पर हाँ थोड़ा अच्छा जरूर लगता है। और इसके अलावा एक साथी लिख रहे हैं कि अगर संगीत में सुरीले सफर में चाय का जिक्र हो तो सफर का मजा दुगुना हो जाए, क्योंकि आज दोस्तों चाय दिवस है, हम जिंदगी को बड़ी जिंदा दिली से जीते हैं, मजा तब आता है जब चाय दोस्तों के संग पीते हैं, चाय की चुस्कियों में यादों को डुबोया करो, दुनिया वालों की बातों को खाम खा दिल पे न लगाया करो, महफिल में रंग बिखेर जाती है, ये चाय ही है दोस्तों जो हमें एक दूसरे के साथ बैठाती है। अब देखिए भाई, हमने अपने जो टेक्स्ट में बिल्कुल भी चाय का जिक्र नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने इतनी बार हमें याद दिलाया कि हमें लगा कि एक चाय का गाना सुन लिया जाए, उसके बाद इबारत की तरफ आगे बढ़ा जाए। सुनिए, ये लीजिए अपनी पसंद का गाना।

बन फूल इस फिल्म का ये गाना हमने सुना। हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये गाना तो भाई सर्दियों के अनुकूल है, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है चाय पर हमें दो ही गाने पता है, एक तो ये और एक दूसरा शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, उसमें भी चाय का जिक्र आता है। इसके अलावा अगर आपको कोई गीत पता हो कि जिसमें चाय का जिक्र आता है तो वो आप हमें बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको बताते हैं कि हमारे एक साथी लिखते हैं कि श्रोताओं के मन और आग्रह का सम्मान कर ये गाना बजाकर आपने सिद्ध कर दिया कि विविध भारती हर समय श्रोताओं के साथ है। धन्यवाद जी। बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद कि इस तरह के जब कोई खास दिन होते हैं तो आप हमें लिख भेजते हैं उसके बारे में, और आपका जो इसमें रुचि है उसके बारे में भी आप हमें बताते हैं, हमें पता चलता है। एक साथी लिख रहे हैं कि अपने परिवार के लोग साथ हों, आइसक्रीम कुल्फी का स्वाद हो, विविध भारती पर बजते हुए गीत हो तो गर्मी का एहसास बिल्कुल कम हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि चांद और तारों को प्रेमी अपने मन की बात बताते हैं और नदी किनारे ठंडी हवा में बैठकर प्रेम का इजहार करते हैं। रात भर आकाश में तारे गिनना, यही सब करते सपनों के शहर में चले जाना, यही है पागल प्रेम की कहानी। जी धन्यवाद आपका। चलिए हमारी इबारत की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि नदिया के पानी के पास बैठ हवा के साथ साथ मैं आपको कोई खत लिखूं। चलिए अगला गीत कन्यादान फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, शंकर जयकिशन का संगीत, आशा पारेख और शशि कपूर पर फिल्माया गया गाना है, गीतकार का नाम आपको बताना है।

कन्यादान फिल्म का गाना नीरज का लिखा हुआ ये गाना है। एक साथी की बात है कि वो छुपा कर रखे गए खत, जिनकी हर एक लाइन को कभी सैकड़ों बार पढ़ा था और जिन्हें छूते ही आज भी दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। वो खत भले ही धूल खा रहा था, लेकिन उसने दिल के किसी कोने में जमी धूल को साफ कर दिया। उसे पढ़कर आंखें भले ही थोड़ी नम हो जाए, लेकिन होठों पर एक ऐसी मुस्कान तैर जाती है जो सिर्फ और सिर्फ अतीत के उस खूबसूरत हिस्से को जीने से ही मिल सकती है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हमने पूछा था कि कौन सी और बातें हैं जो ठंडक देती है, तो लिखते हैं कि सच कहें तो हमें ठंडक देते हैं हमारी नन्ही परी के बोल और हमारे गुरुजी के इतने मधुर वचन और अपनों की प्यारी सी याद और फूलों के पास बैठना और चांद की चांदनी, और सबसे ज्यादा ठंडक मिलती है अपने नटखट कान्हा जी से बात करके। हालांकि हमारी उनसे बातें किसी और को सुनाई नहीं देती, यानी हमारी और उनकी बातें किसी और को सुनाई नहीं देती, लेकिन वो बातें हमें सबसे ज्यादा ठंडक देती है। चलिए, धन्यवाद आपका इन बातों के लिए। अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं, गहरा दाग, इस फिल्म का ये गाना है। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, शकील बदायूनी के बोल हैं, रवि का संगीत है। कौन से कलाकारों पर ये गाना फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

गहरा दाग फिल्म का ये गाना आपने सुना, माला सिन्हा और राजेंद्र कुमार पर फिल्म आया गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि मंजू जी इतनी गर्मी है कि छाछ और मट्ठे के बिना तो हमारा काम चल ही नहीं रहा है। और इसके अलावा हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि बस विविध भारती के सुरीले सफर की ठंडक है और आपका सूत्र संचालन है जो हमें बहुत ठंडक देता है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि गर्मी की चिलचिलाती दोपहर में जब चिलचिलाती धूप और लू मन को थका देती है, तब सुरीला सफर के सुमधुर गीत एक मरुद्यान का काम करते हैं। मानो को शीतल बयार, ठंडी हवा का झोंका तन मन को सहला रही हो, धीमी और मधुर धुने पुरानी मीठी यादों को ताजा कर रही है, जिसमें उदास दोपहर भी संगीत और खुशनुमा बन गई है। ये संगीत और गीतों का ही जादू है जो बाहर के मौसम की तपिश को भुलाकर भीतर एक खुशनुमा और भावुक मौसम का निर्माण कर देता है। बहुत धन्यवाद आपका इतने प्यार के लिए। चलिए हम अपनी इबारत की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं अनामिका फिल्म का गाना। लता जी की आवाज है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत है, संजीव कुमार और जया जी पर फिल्माया गया ये गाना है।

अनामिका फिल्म का गाना हमने सुना। एक हमारे साथी की ये बात है, लिखते हैं आदरणीय बहना जी, आपका ये संबोधन हमें बहुत पसंद आया। आज सुरीला सफर कार्यक्रम के गीतों का इतना सुकून मिल रहा है इनको सुनकर के, वो ठंडक भी जो मौसम, इस मौसम में कूलर पंखे उनमें भी जो ठंडक हमें नहीं मिल रही है वो विविध भारती को सुनने से मिल रही है। और एक साथी लिख रहे हैं कि ये अनामिका फिल्म का बहुत लाजवाब और सदाबहार गाना है, हमें बड़ा पसंद है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि इस गाने की लाइन लिखते हुए लिखा है कि हमारे समय की आरडी बर्मन के गाने क्या का ये बहुत ही इनका पसंदीदा गाना है उस जमाने का, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बहुत, इन्होंने नमस्कार करते हुए प्यार भरे शब्दों में इन्होंने लिखा है कि इस भरी दोपहरी और गर्मी के मौसम में नदी का किनारा और ठंडी छांव कौन नहीं चाहता। बचपन में भैंस चराने नदी के किनारे जाया करते थे और नदी में नहाते ही भैंस तो घंटों पानी में से बाहर ही नहीं निकलती थी और उसे निकालने के लिए हमें तैर कर अंदर जाना पड़ता था और फिर उसकी पूंछ पकड़कर हमें बाहर लाना पड़ता था। भाई देखिए, गर्मी से जब परेशान हम केवल इंसान ही नहीं होते, पशु पक्षी जानवर हम सब भी परेशान होते हैं, और जब उन्हें सुकून मिलता है तो वो वहां से आना क्यों पसंद करेंगे भला, है ना। चलिए आप बताइए हमें कि पानी, हवा और कूलर और पंखे ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो आपको इस गर्मी से ठंडक दिलाने में या निजात दिलाने में आपकी मदद करती, कौन सी बातें हैं जो और भी ज्यादा आपको ठंडक देती। ये सवाल हमने किया था, कुछ श्रोताओं की बातें हम तक पहुंची है, लेकिन अगर आप और भी इस बारे में लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अनोखा प्यार, इस फिल्म का गाना अब आपको हम सुनवाते हैं। जिया सरहदी का लिखा हुआ गाना, अनिल बिस्वास का संगीत है।

अनोखा प्यार फिल्म का गाना आपने सुना, कितनी खूबसूरती के साथ लता जी ने इस गाने को गाया है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज के अनुपम सुंदर इबारत देखकर दिल के झरोके से प्रकृति के सानिध्य में अपने साजन या सजनी के साथ गुजारे हुए बेहद खूबसूरत अनुराग के पल याद किए जा रहे हैं, जो उन्हें पसंद आ रहे हैं। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कितनी शांति है, कभी नदी किनारे बैठ कर देखा है, ऐसा लगता है बहती हवा के साथ साथ मन भी कहीं दूर उड़ चला है। चांद तारों भरी निशब्द रात के साए में जब कोई बात तुम्हारे कानों को छुए तो समझ लेना कोई तुम्हें दिल से याद कर रहा है, ऐसे में जहां कहीं भी हो चले आना। ये हमारी इबारत जो है उसमें से कुछ एक लाइन इन्होंने इसमें लिखी है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि दिल जब प्रेम में पड़ जाता है ना, तब दिन दुनिया और इस जहां की और कोई ध्यान नहीं जाता है, बस एक मैं और एक वो। उसे सामान्य जगह बैठकर भी खत लिखने लग जाऊं तो अपने आप लगने लगता है कि नदी किनारे शीतल हवा के झोंकों के बीच लिख रहा हूं। मुझे आज भी वो पहली मुलाकात याद है, बादल आसमान में छाए थे, बीच बीच में बिजली हल्के से चमक रही थी, दूर कहीं शायद हल्की बारिश भी हुई थी क्योंकि मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू वातावरण में घुल गई थी। कितना प्यारा समा था वो। धन्यवाद। उमर कैद, इस फिल्म का गाना। इस गाने के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखा भी था, अंदाजा लगाया था उन्होंने कि आज की इबारत पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि ये गीत तो आप सुनवाएंगे। जी हाँ, यही गाना अब आपको सुनवा रहे हैं। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें, गुलशन बावरा के बोल हैं, संगीत किसका है ये आप बताइए।

उमर कैद फिल्म का गाना जिसमें संगीत सोनिक ओमी का। एक साथी लिख रहे हैं कि इस तेज गर्मी में जब ऑफिस के लिए निकलता हूं और धर्म पत्नी मुस्कुराते हुए लंच बॉक्स और चाय का थर्मस देती है तो मानो तेज गर्मी छूमंतर हो जाती है और उनकी मुस्कुराहट की ठंडक का एहसास होता है पूरे समय। और एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि जब कोई अपना करीबी ठंडा मन से सुकून से कह दे कि मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, तो मानो दिल में इतनी ठंडक और सुकून महसूस होता है कि क्या बताएं। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि पंजाब में भी अभी गर्मी पड़ रही है तो नींबू पानी, मीठी लस्सी, गोंद कतीरा और मीठी छबील का शरबत का लंगर लगाया जा रहा है और इस तरह से ठंडक लोगों को मिल रही है। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं, जो पहले अनोखा प्यार फिल्म का गाना हमने आपको सुना उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि ये गाना तो हमने पहली बार सुना है और ये विविध भारती की लाइब्रेरी में ही हो सकता है। एक साथी लिख रहे हैं कि अबोध शिशु को गोद में लेकर खेलना और उसकी किलकारी हंसी में खो जाना, ये भी मन को बहुत शीतलता प्रदान करता है। और एक हाँ एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि चिलचिलाती धूप में भी अमलतास के फूलों की तरह ये कार्यक्रम चल रहा है, हमारे विविध भारती से गानों की ठंडी बुछार हो रही है और मन को आनंद एवं सुकून मिल रहा है। सचमुच ही सुरीला सफर हम दोस्तों को एक डोर में माला की तरह पिरो कर रखता है। अमलतास के फूलों का आपने जिक्र किया, वो जो एक गुच्छा होता है अंगूर की तरह पीले फूलों का, वाह सचमुच बहुत तेज गर्मी में भी जब आप बाहर जा रहे हैं और अमलतास के फूलों का गुच्छा अगर आपको दिख जाए तो उसे निहारिए सिर्फ 2 मिनट के लिए, देखिए आपकी आंखों को कितना सुकून मिलता है, कितनी ठंडक मिलती है। और जब मैं इसे देखती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति ने या ईश्वर ने हमें जो ये उपहार दिए हैं इसके बदले में हम उन्हें कैसे धन्यवाद कह सकते हैं। भाई बहन फिल्म का गाना, शमशाद बेगम की आवाज, इसमें संगीत किसका है ये आप बताइए।

भाई बहन फिल्म का गाना इसमें संगीत है श्याम सुंदर का। एक साथी हमारे लिखने कि सुबह सुबह प्राणायाम में चंद्रभेदी और शीतली प्राणायाम से अंदर तक शीतलता मिलती है। जी हाँ, ये प्राणायाम भी बहुत कारगर है। अगर आप गर्मी से परेशान हो तो इसे करके आप थोड़ी राहत इसे पा सकते हैं। और एक साथी हमारे लिखे, प्रकृति में पानी और हवा के अलावा भी कई ऐसे तत्व हैं जो हमें शीतलता और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। हरी घास, नंगे पैर चलने पर शरीर की गर्मी शांत होती है। घने पेड़ सूर्य की किरणों को रोककर तापमान कम करते हैं। पौधों से वाष्पोत्सर्जन, हवा में नमी बढ़ाकर प्राकृतिक कूलिंग करते हैं। मिट्टी और चट्टानें, गीली मिट्टी, इसकी सुगंध और स्पर्श मन को शांत करता है। गुफाएं, भूगर्भीय संरचना के कारण ये स्थान हमेशा ठंडे रहते हैं। चंदन और मुल्तानी मिट्टी, त्वचा पर लगाने से तुरंत ठंडक मिलती है। चंद्रमा की रोशनी, चांदनी रात में मन और मस्तिष्क को शीतलता मिलती है। भोर का समय, सूर्योदय से पहले की प्रकृति सबसे अधिक ठंडी और ठंडी होती है। हरियाली के दृश्य, हरा रंग आंखों के तनाव को दूर करता है। पक्षियों की चहचहाट से मानसिक सुकून मिलता है। और इस तरह से इन्होंने गर्मी को थोड़ा कम कर सके, इस तरह की बातें इन्होंने लिखी। एक साथी हमारे लिखे, खाने में खरबूजा, तरबूज, आम फ्रिज में काटकर ठंडा करके ठंडक का एहसास किया जा सकता है। पना बेल का शरबत भी शरीर को तरोताजा रखता है। धन्यवाद आपका। चलिए अब हम बात करते हैं कश्मीर की कली, इस फिल्म के गाने की मोहम्मद रफी, आशा भोंसले की आवाजें, SH बिहारी के बोल, संगीत OP नैयर का। कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

0: शर्मिला टैगोर और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया ये गाना। एक साथी लिख रहे हैं कि मंजू जी, भले मेरी लिस्ट आपकी लिस्ट से ना मिले पर आपके गीत।
1: युवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

लीजिए एक कार्यक्रम संबंधित सूचना सुनिए। श्रोताओं, किसानवाणी सजीव फोन इन कार्यक्रम में इस गुरुवार यानी आज दिनांक 21 मई 2026 को फोन इन का विषय है खेती की आधुनिक विधियां। इस विषय से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में इस बार विशेषज्ञ होंगी सोनाली मीणा, जो कि सहायक आचार्य कृषि महाविद्यालय नागौर से हैं। आप भी अपनी खेतीबाड़ी, पशुपालन संबंधी समस्या या जिज्ञासा के निवारण हेतु हमारे टेलीफोन नंबर 240-168 पर आज शाम 7 बजे से 7:30 के बीच हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर एक बार आपको फिर बता दें, हमारे फोन नंबर है 240-168 और एसटीडी कोड है 01582। सूचना समाप्त हुई।

दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है, लेकिन आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स, प्यारी प्यारी बातें, और उसमें कई बातों में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी छुपी हुई थी, जानकारी छुपी थी, तो आपकी इन बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अब कार्यक्रम का सफर यहीं तक है, और मुझे यानी कि मंजू द्विवेदी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, बच्चे कच्चे घड़े की तरह होते हैं। बचपन में उनकी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी शरारतें, रूठना मनाना, उनके मासूम सवाल बहुत प्यारे लगते हैं। उनकी नटखट जिद भी बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि उस जिद में प्यार, स्नेह, अपनापन भरा होता है। जिस तरह कुम्हार गीली मिट्टी को आकार देता है, उसी तरह माता पिता के द्वारा स्नेह सिंचित बच्चों का मन भी धीरे धीरे सुंदर रूप लेता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है और किशोरावस्था और युवावस्था की ओर बढ़ते हैं, उनके भीतर अपनी सोच, अपनी पसंद और अपनी पहचान बनने लगती है।
1: बच्चे

आजकल बच्चों और युवाओं में क्रोध और जिद की अधिकता हो रही है। हर बात पर उनकी ये जिद होती है कि वो ही सही हैं, बाकी सब गलत। बड़ों की बातों पर विश्वास ना करते हुए पुराने जमाने की सोच बताकर नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी बात मनवाने की जिद और बड़ों की बातों पर असहमति उनकी बढ़ने लगती है। यही वो समय होता है जब वो खुद को समझे जाने की अपेक्षा रखते हैं। बहुत सारे

सवाल उनके जहन में होते हैं और आत्मसम्मान उन्हें बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन शब्दों में उसे वो व्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए उनका व्यवहार बदलता हुआ दिखाई देता है। जबकि भीतर से वो बहुत अधिक स्नेह, प्रेम, विश्वास और अपनापन खोज रहे होते हैं, अत्यधिक ऊर्जा से भरे होते हैं।

अक्सर जिद और गुस्से का कारण केवल बिगड़ना नहीं होता और बच्चों और युवाओं की ये जिद अचानक नहीं आ गई, बल्कि आजकल के माहौल की ही देन है, जहां ज्ञान और जानकारी तो बहुत है लेकिन अनुभव बहुत कम। और भी बहुत से कारण हैं, जैसे करियर का प्रेशर, मन की उलझने, अकेलापन और उनकी बात ना सुने जाने, ना समझे जाने की भावना आदि आदि। ये वो समय है जब इन्हें प्यार और स्नेह की बहुत अधिक जरूरत होती है और ज्यादातर माता पिता इन्हें तमाम कारणों की वजह से ये समय नहीं दे पाते। यदि बच्चों युवाओं को समय निकालकर धैर्य से उन्हें सुना जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए और प्यार से सही गलत क्या है ये बताया जाए और उनसे बातचीत किया जाए, तो उनका स्वभाव धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। बच्चों और युवाओं के जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए परिवार और समाज को आगे आना होगा, जिससे उन्हें ये एहसास न हो कि हम अकेले हैं। उनके भीतर स्नेह और सहिष्णुता का बीज

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
2: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
3: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले तीन महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड।

0: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
2: इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड,
3: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
2: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिंस।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
3: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 फरगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
4: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, आईयूएमएल और एआईएडीएमके के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

0: वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोक भवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
2: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
3: चाय, ये चाय।
4: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है बड़ा आदमी। इस फिल्म का महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, संगीत है चित्रगुप्त का।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और गीता दत्त की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना। संगीत एस मदन का, फिल्म का नाम है बंटवारा।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आशा भोसले और मुकेश की आवाजों में भाभी की चूड़ियां इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ गाना, संगीत सुधीर फड़के का। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई गांवों में खिली गलियां,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं तलत महमूद की आवाज में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, संगीत है सलील चौधरी का, फिल्म का नाम छाया।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुआफा करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं दाग फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे, और अब आपको सुनवाते हैं घराना फिल्म का गाना। मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, संगीत रवि का। ये है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अंतिम गाना। आप इस गीत को सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली। कीजिए बस कुछ पल का इंतजार।

0: वालों को किस तरह का फोबिया है भाई
1: वो
0: उन्हें।
1: बताएं अपना,
0: हाँ
1: बिल्कुल छुपाइए नहीं, बताइए ईमानदारी से पूरी अपनी अपनी बात, क्योंकि सभी को होता है कुछ ना कुछ किसी में किसी चीज का डर, तो आप बताइए।
0: इसके अलावा आज बात होगी कहानी पद्मश्री की, में राही बाई सोमा पोपरे जो महाराष्ट्र की बीज माता यानी कि सीड मदर कही जाती हैं,
1: जी
0: इनके बारे में। और बहुत खास दिन है भाई,
1: हाँ,
0: चाय दिवस, चाय की
1: अरे
0: चुस्कियां
1: भैया
0: तो लेते लेते बहुत सारे काम है ना खत्म हो
1: जाते
0: जाते हैं, कब हो
1: बिल्कुल।
0: जाते पता ही नहीं पड़ता। और जब भी
1: एक
0: हम
1: देश ऐसा यही है भारत जहां पे इतनी 50 आप सोच लीजिए कि गर्मी इतना तापमान चल रहा है, उसके बाद भी उनको क्या चाहिए, चाय
0: चाय
1: चाहिए।
0: चाहिए।
1: चाय के बिना गुजारा नहीं है,
0: हाँ, चार दोस्त बस मिलकर बैठे तो वहां एक पांचवी चीज होती है वो चाय
1: चाय
0: होती है,
1: होती है।
0: दो लोग बैठे तो चाय होगी, अगर आप अकेले ही बैठे हैं तो
1: तो भी
0: आपका
1: चाय
0: साथी अगर
1: होगी।
0: चाय का प्याला है तो बस। और बड़े से बड़ा होटल हो या छोटी सी एक टपरी हो, हर जगह चाय की चुस्कियां जो हैं वो
1: चलती
0: अपना
1: रहती है।
0: आलम बांध देती हैं। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है, इसके बारे में तो थोड़ी चर्चा होगी, लेकिन एक और बड़ा खास दिन है संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, इसके बारे में बात भी
1: इसके बारे में
0: होगी।
1: बात करेंगे, और साथ ही हम चाय के बारे में आप भी बताइए कि आप किस तरीके से अपनी महफिल जमाते हैं चाय की प्याली के साथ में।
0: और जब संवाद की बात हो रही है तो संवाद यानी कि बातचीत के लिए भी चाय जरूरी होती है। संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का जो दिवस है, ये जनता को इसके महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए और विश्व की बहुत सी समस्याओं का समाधान करने के लिए, संसाधनों को जुटाने और मानवता की उपलब्धियों का जश्न मनाने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए आयोजित किया जाता है।
1: जी, और बिल्कुल ऐसे बहुत से अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का अस्तित्व संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से भी पहले का है, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें एक शक्तिशाली प्रचार उपकरण के रूप में अपनाया है, इसीलिए दुनिया भर में इन संयुक्त राष्ट्र दिवसों को हम मनाते हैं।
0: तो आज हम मना रहे हैं संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, और साल 2001 में यूनेस्को ने इस दिन को अपनाया था, इसकी घोषणा की थी, और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2002 में इसका प्रस्ताव रखा और हर साल 21 मई को इसे मनाने की आधिकारिक शुरुआत की गई फिर।
1: जी, और इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया की संस्कृतियों को समृद्धि का जश्न मनाना और शांति बनाए रखना और सतत विकास को बढ़ावा देना, ताकि सभी अलग अलग समाजों के बीच आपसी संवाद को प्रोत्साहन मिल सके।
0: बिल्कुल, ये दिन दुनिया भर की विभिन्न भाषाओं, परंपराओं, कलाओं, जीवन शैलियों को सम्मान देने और उनका जश्न मनाने के लिए होता है, और इस दिन शांति और विकास संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में संघर्षों को कम करने और संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में जो विकास के लक्ष्य हैं, संस्कृति की क्षमता है, उसको उजागर किया जाता है।
1: जी हाँ, और अभी समय हो रहा है, इतना हम लोगों ने इतनी बातें करी, तो एक अच्छा सा प्यारा सा गीत सुन लिया जाए।

भाई बात बन जाती है, कुछ तुमने कहा कुछ हमने कहा और इसी तरह से संवाद होता है, बात बन जाती है और आगे बात को हम बढ़ा रहे हैं राही बाई सोमा पोपरे की बात के साथ में, जिन्हें महाराष्ट्र की सीड मदर या बीज माता कहा जाता है और सह्याद्री पर्वतमाला के बीचों बीच महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में, जिसे पहले अहमदनगर नाम से हम जाना करते थे, वहीं पर स्थित कोंभालने की ढलानों पर पर्वत श्रृंखला के भीतर गहराई में बसे स्थान पर महिलाएं दोपहर भरी दोपहर में भी एक साथ मिलकर काम करती हैं। थोड़ी ही दूरी पर राहीबाई सोमा पोपरे का अपना यहाँ पर बीज भंडारण है। राहीबाई महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले आदिवासी ब्लॉक के कुंभले गांव में रहा करती थी। मूल रूप से महादेव कोली आदिवासी समुदाय से वो ताल्लुक रखने वाली उनका राहीबाई का जन्म एक बहुत ही निर्धन परिवार में हुआ, जिसमें उनके 5 भाई बहन थे। उनका जन्म एक किसान परिवार में

0: हुआ था और आर्थिक हालात ठीक नहीं होने के कारण वो पढ़ाई भी नहीं कर सकी। उनका अधिकांश बचपन अपने माता पिता के साथ खेती बाड़ी करते हुए बीता और जब वो सिर्फ 12 साल की ही तभी थी तभी उनका विवाह हो गया था और उसी गाँव के समुदाय के एक किसान थे जिनके साथ उनका विवाह हुआ। शादी के बाद उन्होंने अपने पति के साथ खेती का काम जारी रखा और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता भी उन्होंने हासिल कर ली।
1: बिल्कुल। और जिस तरह से आपने बताया कि महज 12 साल की उम्र में राही बाई का विवाह हो गया था उनका, तो वो उसी गांव के समुदाय के किसान थे और शादी के बाद भी उन्होंने अपने पति के साथ खेती जारी रखी और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता हासिल कर ली थी उन्होंने। और शिक्षा से वंचित होने के बावजूद राही बाई का दिमाग बहुत तेज था और उनकी दृष्टि पैनी थी। खेती करते करते उन्हें एक समय ये एहसास हुआ कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसलों का उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन खेती की लागत भी साथ साथ बढ़ती जाती है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों से उगाई गई जो फसलें होती हैं उनका सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। और जब राहीबाई अपनी बीज बैंक के दरवाजे को खोलती हैं, जहाँ वो बीज इकट्ठे करती हैं, जमा करती हैं, तो अंदर जो होती है वो गौरैया रहती है।
0: क्या बात है।
1: तो गौरैया उड़ती है तो राहीबाई कहती है कि पक्षियाला कलता काय खाच अनि काय नहीं, मनसाला एकता ज्ञान असुनपण त्याला हे समझते नहीं। यानी पक्षी सहज रूप से जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है लेकिन मनुष्य हमारे सभी ज्ञान के बावजूद समझने में विफल रहते हैं।
0: बिल्कुल। राहीबाई पोपड़े जो हैं वो बाजरे की एक देसी किस्म को बोने के लिए अपने अनुभव बयान करते हुए बताती हैं कि पहले 3 साल तो अच्छी फसल हुई, पक्षी खेतों में आते, दाना चुगते और अनाज में कुछ रुचि दिखाते, लेकिन 4th साल कुछ ऐसा हुआ जो वाकई अद्भुत था। पंछियों के झुंड खेतों में उतरे और पूरी फसल चेट कर गए। और हैरानी की बात यह थी कि इन्होंने अपने आसपास के बाजरे के खेतों में जिनमें आधुनिक हाइब्रिड अनाज बोए गए थे बिल्कुल उनको छुआ भी नहीं। पक्षियों की पसंद बिल्कुल साफ थी कि उन्हें बाजरा पसंद नहीं था जो कि सख्त हो, कड़वा हो और कम पौष्टिक हो। और दूसरी तरफ जो देसी बीजों से उगाई गई फसल थी स्वाभाविक रूप से बहुत मीठी थी, मुलायम थी, पंछियों को भी वही मन भाई।
1: बिल्कुल। और वो याद कर क्योंकि पक्षी जो होते हैं वो उनको एहसास होता है कि कौन सी हम किस तरीके की जो फसल है वो किस तरह से उगाई जा रही, मिलावटी बीजों से उगाई गई है या असली देसी बीजों से उगाई गई है। तो याद करती है कि हम अनाज को हथेलियों में मसल कर ताजा ही खा लेते थे। इसी के साथ उन्होंने धीरे से एक बर्तन उठाया और बीज बैंक में राख में संरक्षित वॉल या घेवड़ा कहते हैं इसको के बीजों का एक मुट्ठी भर हिस्सा निकाला और कहती हैं कि वो ये सिर्फ बीज नहीं है, ये वो कहती हैं पीढ़ियों की विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अपनी सूझबूझ और ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्होंने खेत पर तालाब और एक पारंपरिक जलकुंड बनाए। पहले अनुत्पादक समझे जाने वाली 2 एकड़ भूमि अच्छी उपज देने लगी और उस पर उगने वाली सब्जियों से उन्हें आय भी होने लगी। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र ग्रामीण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संस्थान में वहां से उन्होंने मुर्गी पालन में सहायता प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने एक नर्सरी भी विकसित की। और समय के साथ साथ पैदावार पारंपरिक पैदावार से 30% तक अधिक होने लगी। अपने अनुभव के आधार पर वो विश्वासपूर्वक कह सकती हैं कि देशी फसल की किस्में जो होती हैं न केवल सूखा और रोग प्रतिरोधी होती हैं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर हैं और मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखती हैं क्योंकि उन्हें रासायनिक उर्वरकों और अत्यधिक पानी की जरूरत नहीं होती है। और देशी किस्मों को बचाने की आवश्यकता को पहचानते हुए राहीबाई ने कई तिलहनों के अलावा चावल की 15 किस्मों, अरहर की 9 किस्मों और सब्जियों की 60 किस्मों सहित कई देसी फसलों का संरक्षण किया है। उन्होंने समुदाय को सलाह दी कि कृषि रसायनों से दूर रहिए। राहीबाई कहती हैं हाइब्रिड फसलों से बने भोजन का सेवन करने के बाद ग्रामीण अक्सर बीमार पड़ रहे थे।
0: बिल्कुल। और अपनी सीखी हुई सारी बातों को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद राहीबाई अब किसानों और छात्रों को बीज कैसे चुनना चाहिए या मिट्टी की उर्वरकता को किस तरह बढ़ाना चाहिए, इसकी तकनीक और कीट प्रबंधन, इन सभी चीजों का प्रशिक्षण वो देती हैं। वो किसान को देसी फसल उगाने के लिए पौधे उपलब्ध करवाती हैं और उन्हें देसी किस्मों की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन भी देती हैं। उन्होंने देसी बीजों के संरक्षण के लिए कलसुबाई परिसर बरियानी बियानी संवर्धन समिति इस नाम से एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया है। उनके अथक प्रयासों के लिए उन्हें बावलेश्वर स्थित कृषि ज्ञान विज्ञान केंद्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ बीज रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साल 2014-2015 में उन्हें BIF का सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान भी प्राप्त हुआ।
1: जी बिल्कुल। और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक ने उन्हें बीज माता की उपाधि दी थी। वो BBC की 100 महिलाएं 2018 की सूची में शामिल 3

0: भारतीयों में से एक हैं। उन्हें भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया।
1: उन्होंने एक बीज बैंक भी बनाया है और किसानों को इस शर्त पर उन्होंने वहां बीज दिए जाते हैं कि उधार लिए गए बीजों को दुगनी मात्रा में वो लौटा देंगे, यानी कि किसी तरह का ब्याज नहीं देना है, ब्याज के रूप में आपको दुगना बीज दे देना है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और राहीबाई को धान, हायसिंथ बीन, बाजरा, दालें और तिलहन सहित 17 अलग अलग फसलों का और फसलों की 48 स्वदेशी किस्मों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौरव प्राप्त है।
0: बिल्कुल। और हजारों किसानों और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रही राहीबाई को 2020 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: और अब सुनते हैं एक बड़ा प्यारा सा।

0: इस समय तो खेतों की हालत यही है कि धूप से वो जल रहे हैं और कहीं बादल का एक टुकड़ा आके थोड़ी सी छांव ले आता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि सुकून दे गया है।
1: सच में
0: और इन दिनों बहुत सारी नजरें बस निहार रही हैं कि वो काले बादल का कोई टुकड़ा है जो बरस जाए। हालांकि बारिश आने में थोड़ा सा भी समय बाकी है, लेकिन अगर अभी हमें सुकून चाहिए तो गर्मी में भी एक गर्म चाय की
1: गर्म
0: प्याली
1: चाय,
0: अगर
1: बिल्कुल
0: मिल जाए
1: चाय मिल जाए ना तो बस ऐसा लगता है कि नहीं, अगर चाय ना मिले ना तो ऐसा लगता है कि सर में दर्द अपने आप ही महसूस होने लगता है। मतलब ये सोच है हमारी, असल में ऐसा नहीं हो रहा होता, लेकिन अपने
0: जी।
1: दिमाग को हम ऐसे सोचने में मजबूर, चाय नहीं पिए इसीलिए सर में दर्द हो रहा है, चाय नहीं
0: और
1: पिए इसीलिए कुछ काम सही नहीं हो रहा है।
0: कुछ लोगों को आदत होती है काम करते समय बीच बीच में एक टी ब्रेक लेने की, थोड़े थोड़े
1: हाँ
0: अंतराल पे अगर उन्हें चाय ना मिले तो सच में उनका सरदर्द होने लगता है। और चाय दुनिया के सबसे पुराने पेय पदार्थों में से एक है आरती, हमारे सुनने वाले भी इस बात को जानते होंगे। पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा सेवन किया जाने वाला कोई पेय पदार्थ अगर है तो वो है चाय। और दुनिया भर में एक बात बड़ी सामान्य सी मानी जाती है, और हिंदुस्तानियों की तो चाय पीने की आदत जो
1: अरे
0: है ना
1: अगर
0: वो
1: कहीं
0: वर्ल्ड
1: गए
0: फेमस
1: आप,
0: है।
1: अगर आप किसी के घर गए, चंचल जी, अगर
0: हाँ
1: आप कहीं किसी के घर में जाते हैं तो अगर उसने पानी दे दिया, कोल्ड ड्रिंक दे दिया, आपको खाने को सब कुछ दिया, लेकिन
0: जी
1: आप घर गए, उसने मुझे चाय नहीं पिलाई, पता है,
0: भाई
1: बस चाय नहीं पिलाई, तो आपको शिकायत हो जाएगी।
0: कुछ लोग कहते हैं कि एक लत होती है, लेकिन कुछ कहते हैं ये जिंदगी की खुराक है। लेकिन बता दें कि मेहमान नवाजी का भी प्रतीक मानी जाती है चाय, और अपना इसका एक खास दिन भी आता है। जी हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 21 मई की, आज के दिन की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे के बारे के नाम से भी हम जानते हैं। और इस दिन चाय दुनिया भर में सुर्खियों में रहती है, और सभी चाय प्रेमी अपना पसंदीदा पेय चाय उसका जश्न मनाने के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं। दुनिया भर के बहुत सारे समुदाय हैं जहाँ चाय का गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। ये एक बहुत व्यापक रूप से सेवन किया जाने वाला पेय पदार्थ है। आतिथ्य, परंपरा, सामाजिक जुड़ाव, इन सब का प्रतीक भी हम इसे मानते हैं।
1: बिल्कुल
0: और चाय पर जो शोध किए जाते हैं ना वो भी बहुत हैं, जो बताते हैं कि भाई करीब हर सेकंड में 25,000 कप लोग चाय पी लेते हैं, यानी कि अगर पूरे दिन में अगर से हम जोड़ें तो 1 अरब से भी ज्यादा चाय एक दिन में पी जाती है।
1: सच में बहुत ज्यादा,
0: और
1: बहुत
0: पौराणिक कथाएं हैं ना वो बताती हैं कि चीन के सम्राट शेन होंग ने चाय की खोज तब की जब एक बार एक पेड़ से कुछ पत्तियां उड़कर उनके उबलते हुए पानी में गिर गईं, और जब उन्होंने उस उबलते हुए पानी को पिया तो वो जो गर्म पेय था ये उन्हें बहुत ही पसंद आया, और तब से बस चाय का जो है इजाद हो गया, ऐसा
1: बिल्कुल।
0: कहा जाता है।
1: और चंचल जी ऐसा है ना कि एक प्यारी चाय अगर दोस्तों के साथ हो
0: हाँ
1: तो क्या होता है, तो मतलब ऐसा समय बनता है ना कि बस लगता है कि अब ये समय जो है वो खत्म ना हो, बस चलता चला जाए।
0: जहां लगता है कि हम सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट के लिए मिले हैं
1: हाँ
0: ना, वो 10 मिनट कब आपके 1 घंटे में बदल जाएंगे
1: बिल्कुल,
0: ना।
1: और वो चाय की चुस्कियां चलती रहती हैं,
0: जी
1: चलो एक बार और हो जाए, एक एक प्याली और हो जाए। तो एक प्याली चाय अगर अपने अपनों के साथ हो तो घर मुस्कुराहटों से भर जाता है,
0: बिल्कुल सही
1: और
0: कहा।
1: एक प्याली चाय अगर रिश्तेदारों के साथ हो तो सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां, जिससे समस्याएं, लड़ाई झगड़े, सबका हल
0: जी
1: निकल आता है वहीं बैठे बैठे। और जो एक प्याली चाय ऑफिस की टेबल पर मिल जाए, या जैसे मिल जाए अगर समय, बात करते करते तो हमारी जो बातें वो और स्वादिष्ट हो जाती हैं, और फाइलें अगर हम काम कर रहे हैं फाइलों पे तो फाइलें निपट जाती हैं फटाफट।
0: और जब पुराने दोस्त मिलते हैं उनके सामने अगर एक चाय की प्याली हो तो पुराना जितना समय साथ गुजारा हुआ है उसे हम एक बार फिर से जी भर के जी लेते हैं। और जब दिन भर की पीड़ा, चिंता, थकान, इसके बाद एक चाय की प्याली मिल जाती है ना, तो उसके एक एक घूंट में जो सुकून मिलता है आरती, वो शब्दों में शायद हम बयां भी नहीं कर सकते। और चाय अभी से नहीं, सदियों से बहुत तरह तरह के स्वाद से और भीनी भीनी सुगंध से हम सबका मन लुभाती रहती है।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा बहुत से शोध कहते हैं कि चाय बनाने और पीने, खाली पीने नहीं, बनाने और पीने की प्रक्रिया मन को शांत करती है, तनाव कम करती है और आराम पाने में सहायक होती है। और भारतीय संस्कृति में चाय महज एक पेय नहीं है बल्कि एक एहसास ताजगी का प्रतीक है, सामाजिक मेल जोल का सबसे लोकप्रिय माध्यम भी है। और इतना ही नहीं, चाय में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो तनाव कम करने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं।
0: भाई चाय की बातें हम करते रहेंगे, लेकिन चाय के अलावा सुकून गीतों में भी होता है, तो एक
1: बिल्कुल
0: गीत भी सुन लेते हैं।

0: हम भी चाय जरूर पियेंगे कार्यक्रम खत्म होने के बाद में।
1: बिल्कुल, पीते ही हमेशा।
0: हाँ, और आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है, और फिर हम बैठकर
1: आज तो
0: चाय
1: बनता है,
0: लेकर थोड़ी बहुत गपशप ना करें, बातें ना करें,
1: बिल्कुल
0: तो भाई उस चाय को कहते
1: आज
0: ना तौहीन हो
1: चाय का
0: जाएगी।
1: सम्मान करना जरूरी है
0: बिल्कुल।
1: भाई।
0: और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है, ये चाय की सांस्कृतिक विरासत, स्वास्थ्य लाभ और आर्थिक महत्व का के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में है, उसके अवसर बताने के बारे में है। साथ ही इसके उत्पादन को खेत से लेकर प्याले तक टिकाऊ बनाने की दिशा में काम करने का भी एक दिन है, ताकि लोग संस्कृतियां और पर्यावरण और इसके आने वाले लाभ के बारे में पीढ़ियों तक लोगों को पता लगे। खेत से लेकर कप तक कुशल, पारदर्शी और टिकाऊ मूल्य श्रृंखलाएं और लोगों और पर्यावरण दोनों के लिए सुनिश्चित करने के लिए ये चीजें महत्वपूर्ण हैं।
1: जी, और अभी कुछ साल पहले तक दुनिया भर में 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता था, पर अब ये 21 मई को मनाया जाने लगा है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, बदला क्यों
0: बिल्कुल
1: हो गया आखिर? तो हम आपको बता देते हैं कि इसके पीछे भारत की अहम भूमिका, मतलब इसके पीछे भारत का हाथ है भाई, ये तो हम कहेंगे।
0: चाय की बात और भारत की बात ना हो ऐसे कैसे
1: बिल्कुल,
0: होगा।
1: इसमें तो हम भारत का हाथ कहेंगे, क्योंकि भारत ने ही चाय को उसका हक दिलाया है। दरअसल दुनिया भर में चाय उत्पादक देश 15 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते रहे हैं, क्योंकि तब तक इसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता नहीं दी गई थी।
0: लेकिन
1: लेकिन
0: हाँ, इसे लेकर भारत ने एक बड़ी पहल की। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया, और अच्छी बात तो ये हुई आरती कि इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया,
1: बिल्कुल
0: और इसे आधिकारिक तौर पर 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया, और पहली बार 2020 में विश्व स्तर पर इसे मनाया गया था। ये सारी जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें लिखकर पहुंचाई है।
1: हाँ, बहुत सारे उन्होंने कमेंट्स किए हैं इस पे।
0: जी
1: और चाय का उत्पादन यूं तो कई देश करते हैं, लेकिन भारत इस मामले में दूसरे पायदान पर आता है। और मजे की बात यह है कि चाय के उपभोग यानी कि इस्तेमाल के मामले में भारत पहले स्थान पर है, और
0: जी
1: रहना ही चाहिए था। वो तो भारत में चाय की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से आप आसानी से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में सबसे अधिक चाय का उत्पादन, लगभग 30% चाय की खपत जो है उत्पादन की, वो भारत में ही होती हो जाती है।
0: और दुनिया भर में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है एशिया के जो अन्य देश हैं उनमें होता है, जिसमें भारत, चीन, नेपाल, श्रीलंका और केन्या जैसे कई देश शामिल हैं। इन देशों में चाय पीना रोजाना दिनचर्या से लेकर समारोह अगर हैं तो वहां भी इनका प्रचलन बहुत है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि चाय आसानी से और बेहद कम लागत में उपलब्ध हो जाती है। अब अगर हमें भी बातचीत करनी हो तो जरूरी नहीं हम बहुत बड़े होटल या रेस्टोरेंट में जाकर बैठे, एक टपरी पर भी हम आराम

0: 5-6 रुपए की एक चाय की छोटी सी प्याली लेकर
1: बहुत स्वादिष्ट मिलती है
0: और वहाँ घंटों बैठकर बतिया सकते हैं।
1: बिल्कुल। और हालांकि चाय के भी कई रूप हैं और हर रूप में इसका स्वाद भी अलग है। अलग अलग क्षेत्रों में चाय बनाने के तरीकों में भी भिन्नताएं हैं। कोरोना महामारी के दौरान में कई ऐसे लोग जो चाय नहीं पीते थे, लेकिन वो भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अदरक, लौंग, इलायची वगैरह सब चीजें।
0: और भाई चाय के चक्कर में तुम ये ना भूल जाओ कि इस अंतराल का समय हो जाए।
1: हाँ, मैंने देख लिया आपको, आप मुझे कह रही हैं कि अब बस करो, अब बस करो।

0: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली, और आपके साथ हाजिर हैं हम सखियां, मैं चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और भाई हम बात कर रहे थे ना अदरक लौंग इलायची वाली
1: जी
0: अंदाज
1: हाँ, जवाब
0: की।
1: कहा था आरती। अंतराल का समय हो गया, चाय टी टाइम हो गया है।
0: हाँ तो अब समय है एक प्यारा सा कमेंट पढ़ने का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चाय एक तृप्त करने वाला पेय है जो भोजन के बीच भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये हृदय के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है। चाय के जो मसाले हैं उन्हें चाय के साथ मिला देने से पॉलीफेनॉल का अच्छा स्रोत मिलता है जो रक्त में वसा का स्तर नियंत्रित करता है और धमनियों में जमाव को रोक देता है।
1: बिल्कुल, बस एक बात का ध्यान रखिए कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय मत पीजिए, और चाय पीने से पहले आप एक गिलास पानी पी लेंगे तो जो अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ चाय एसिडिटी कर रही है तो वो चीज नहीं होगी। अब हम श्रोता का अपने कमेंट ले रहे हैं, तो हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि सिर्फ आज ही के दिन क्यों, हम तो चाय दिवस हर दिन हर सुबह शाम मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे, चाय पीते आए हैं और पीते रहेंगे। सखी सहेली प्रोग्राम खत्म होने के बाद आज की चाय हमारी ओर से आप सभी को पिलाई जाएगी। जो चाय से करते हैं प्यार वो इस आमंत्रण से कैसे करें इनकार। इस बात पर गुजराती मुहावरा चाय चा बाकी बीजा पीना वगड़ा नवा।
0: क्या बात है,
1: क्या बात।
0: और जैसे तुम बता रही थी ना बहुत सारे जो फ्लेवर डाले जाते हैं स्वाद डाले जाते हैं जिसमें अदरक लौंग दालचीनी काली मिर्च, तो बहुत सारे लोग इसे इम्यूनिटी बूस्टर झिंगर टी कहते हैं, कुछ मसाला टी कहते हैं, लेकिन जो थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा ध्यान देने वाले लोग हैं वो दूध वाली चाय ना पी के ब्लैक टी या ग्रीन टी हरी चाय जिसे कहते हैं उसे पीना पसंद करते हैं। लेकिन भारत में अधिकांश लोगों की जो पसंद है वो दूध वाली चाय ही होती है और कड़क चाय जिसे हम कहते हैं ना वो पीना पसंद करते हैं।
1: अगर आप चाहते हैं कि चाय जैसे हमें लगती है दूध वाली, बहुत ज्यादा दूध मत डालिए उसमें, अगर आपने एक छोटा चम्मच दूध भी डाला ना तो भी चलेगा, तो भी आपको वो नुकसान नहीं करेगी। बहुत ज्यादा दूध डालने से थोड़ा सा एसिडिटी का परेशानी कर देती है, तो आप इस तरह से बना के पी सकते हैं। भाई चाय तो चाय है। और एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि एक कप चाय का महफिलें जमा देता है और कई मसले जो है वो सुलझा देता है, और हाँ मेरे जैसे चाय के दीवाने पति से एक कप अदरक इलायची वाली चाय से धर्म पत्नी की कई फरमाइशें भी पूरी करा देता है। इस साल इंटरनेशनल टी डे का विषय है चाय की उपयोगिता बनाए रखना। मुबारक हो सबको अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। मैं तो सिर्फ चाय का दीवाना। मतलब इनकी वाइफ जो है वो इनसे सब अपने जो चीजें हैं कि भाई साड़ी लानी है, ये काम करना है, वो काम करना है, वो करवा लेती है,
0: चाय के प्याले भी करवा लिए जाते हैं
1: कप चाय मिल जाने पे।
0: अगले श्रोता का कहना है कि चाय हमें धैर्य सिखाती है, धीरे धीरे उबालना, खुशबू फैलाना, फिर दिल को सुकून देना। शायद इसीलिए कहा जाता है चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि एक भावना है। एक और बड़ा अच्छा सा संदेश है जिसपे लिखा गया है, सुनो तुम ना बड़े गजब हो, बिल्कुल चाय की तरह मेरी तलब हो, सांवला है रंग, थोड़ा कड़क मिजाज है, मेरी खुशियों की चाबी बस चाय का प्याला है।
1: ओहो, क्या बात है भाई।
0: लिखने का अंदाज ही बड़ा प्यारा है इनका।
1: एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर बशीर बद्र का, मतलब एक जो शायर है उनका एक बेहतरीन शेर है कि हंस पड़ी शाम की उदास फजा, इस तरह चाय की प्याली हंसी। सच ही तो है कि चाय की एक प्याली से उदास शाम भी हंस पड़ती है। चाय तो प्रेम है लेकिन इन दिनों वजन ज्यादा होने की वजह से चाय पीना हमने छोड़ दिया है, सारा दोष भयंकर पड़ रही गर्मी पर डाल दिया है।
0: तो वही चलिए गर्मी में सुकून देते हैं, राहत देते हैं एक प्यारे से गीत के द्वारा।

0: हर दर्द की दवा होती है एक कप चाय का प्याला। और हमारे साथी क्या लिख रहे हैं कि सुबह की शुरुआत हो या दोस्तों की महफिल, चाय भारतीय जीवन शैली का सबसे पसंदीदा हिस्सा बन चुकी है। हर घूंट ताजगी और स्वाद का एहसास कराती है।
1: बिल्कुल। और हमारे दीक्षित श्रोता जो लिखते हैं कि अभी भी हम चाय पीते पीते ही मैसेज लिख रहे हैं, मीठे नीम पुदीना और तुलसी पत्ती वाली चाय बनाती श्रीमती जी ने आप दोनों बहनों को 2 कप चाय भेजी है, हमने बहुत टेस्टी और शरीर के फायदेमंद ये जो चाय है वो भयंकर गर्मी में वो भेजी है उन्होंने। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो इतनी गर्मी में हमारे लिए चाय बना रही है।
0: हमारे श्रोता साथी लिखते हैं कि हर घूंट में घुला अपनेपन का प्यार, चाय की खुशबू से महके हर घर द्वार, थकी हुई सुबह को देती नई मुस्कान, चाय दिवस पर सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। तो
1: वाह,
0: आपको भी नमस्कार और आपको भी चाय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे घर में, मेरे घर में सुबह की जो पहली चाय होती है वो मैं ही बनाता हूँ, और इस बहाने मेरी वाइफ को सब्जी बनाने का थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है और हेल्प हो जाती है, और धीरे से पढ़ना उन्होंने कहा है, मीठी मीठी बातें और शरारतें भी हो जाती हैं। अरे क्या बात है।

0: है, इस गर्मी में कोई चाय नहीं छोड़ता।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि चाय सिर्फ एक पेय नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है, जो सुकून, गहरी बातचीत और नए रिश्तों की शुरुआत का प्रतीक है। चाय के साथ लोगों के गहरे जज्बात जुड़े होते हैं। एक हाथ में मेरी चाय का कप है, एक हाथ में मेरे हाथ में मेरे हाथ तेरा हाथ है, हाथों को तलब है हाथों की और दिल को तलब है साथ की।
0: देखो भाई, संदेश बहुत सारे हैं लेकिन चाय विषय ही ऐसा है कि चाय छोड़ना तो छोड़, हम उस विषय को ही नहीं छोड़ पा रहे। हम आगे बढ़ते हैं और फोबिया कैसे कैसे होते हैं इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। फोबिया किसी चीज या स्थिति के प्रति एक अत्यधिक तर्कहीन डर होता है जो अक्सर वास्तविक खतरे से कहीं ज्यादा होता है। ये एक प्रकार की एंजाइटी डिसऑर्डर या चिंता विकार कहा जा सकता है। जैसे कि एक्रोफोबिया, ऊंचाई से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, ये भी एक फोबिया हो सकता है। और बताओ कौन कौन से फोबिया होते हैं।
1: फोबिया होते हैं जैसे कि किसी को किसी जैसे किसी जगह बंद हो गया, जैसे लिफ्ट में नहीं जाना चाहता कोई,
0: हाँ।
1: तो एक छोटी सी जगह में बंद हो जाने का डर होता है,
0: हाँ।
1: है ना, ये भी फोबिया होता है। किसी को भूतों का डर होता है, तो बहुत से सारे फोबिया ही होते हैं। आपको अगर किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लग रहा है
0: जी,
1: अनावश्यक तौर पर, तो वो फोबिया ही है।
0: जैसे साइनोफोबिया, कुत्तों का डर होता है। ग्लासोफोबिया, सार्वजनिक रूप से पब्लिकली जो बात करने का, यानी कि सबके बीच में आकर बात करने का, उन्हें कुछ कहने का जो डर है, उसे कहा जाता है।
1: बिल्कुल।
0: हीमोफोबिया होता है खून देखने से डर। कई बार लोगों को होता है ना कि कहीं अपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, अस्पताल में गए, हमारे कोई परिचित है, यहां तक कि अगर आप सिर्फ ब्लड देने भी गए जांच के लिए, तो वो इतना सा खून भी कई लोगों से देखा नहीं जाता, वो फोबिया होता है सिर्फ उनका।
1: बिल्कुल। और एक होता है ट्राइपैनोफोबिया, जो कि सुई या इंजेक्शन से डर लगता है जिसमें आपको। और सोशल फोबिया, जैसे कि सोशल, जो भी आप बाहर जाते हैं तो सोशल जो एंजाइटी होती है आपको, वो होता है। और बहुत से लोगों को लोगों के बीच में शर्मिंदगी महसूस होती है, तो वो भी एक तरीके का फोबिया है। और एगोराफोबिया होता है, वो उस स्थानों या स्थितियों का डर होता है जिनसे बचना मुश्किल हो सकता है या जहां फंस जाने पर मदद नहीं मिल सकती है। तो इसमें पीड़ित जो होते हैं वो खुली जगहों पर, या हम जैसे अगर इसमें हमारा फोबिया है ऐसा, तो हम भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहेंगे, बचना चाहते हैं वहां पर जाने से। तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं, ये अपने मन का जो डर है जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो फोबिया कहलाता है।
0: तो फोबिया पर हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है, इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं।

0: भी देखो, हमारे श्रोता लिखते हैं कि फोबिया एक ऐसा डर होता है जो सामान्य डर से बहुत ज्यादा होता है। किसी चीज, जगह, जानवर या किसी परिस्थिति को देखकर मन में घबराहट होने लगती है। जब हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तब डरते भी हैं। फोबिया अक्सर पुराने बुरे अनुभव, तनाव या मन में चिंता के कारण हो सकता है, लेकिन इसका इलाज भी संभव है। सही सलाह, काउंसलिंग, सकारात्मक सोच और धीरे धीरे डर का सामना।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि फोबिया मतलब एक भय है जिसकी कोई सीमा तय नहीं, किसी विशिष्ट वस्तु, जानवर या स्थिति के प्रति अत्यधिक तर्कहीन तीव्र भय है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। इसके 3 प्रकार होते हैं, विशिष्ट फोबिया, सोशल फोबिया और एगोराफोबिया। किसी को कोई विशेष जानवर से डर लगता है तो किसी को मौसम की स्थिति या प्राकृतिक तत्वों का डर लगता है। मेरा एक सहकर्मी था, अब वो भी मेरे साथ में सेवानिवृत्त हो चुका है, उसे कुत्तों का डर सेवा काल के दौरान लगता था और आज भी लग रहा है। मतलब वो जो डर है,
0: सारे लोग तो सिर्फ बिजली जब कड़कती है उसी से डर जाते हैं। अभी हमारी श्रोता सखी लिखती हैं कि मेरी बेटी छिपकली को देखकर बहुत डर जाती है और सिर्फ देख लेने भर से ही उसकी चीख निकल जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है, मुझे सफाई का बहुत फोबिया है।
1: सफाई का बहुत लोगों का होता है कि ये फोबिया, कि मतलब मुझे भी है कि जरा सा भी कुछ गंदा होगा ये क्यों ऐसा हो रखा है, फिर उसे उसमें लग जाएंगे।
0: हाँ बिल्कुल, उनको हर जगह साफ सुथरापन चाहिए होता है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि फोबिया 2 प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को अंधेरे से फोबिया होता है, किसी को स्टेज से डर लगता है। बहुत लोगों को स्टेज पर जाने से बहुत फोबिया होता है, इतना बर्फ हो जाते हैं वो। और मुझे बचपन में फोबिया था, गुब्बारे से मुझे बहुत डर लगा करता था और तब मैं उसको देख भी नहीं पाता था।
1: एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे मुझे सिर्फ भूत प्रेतों से डर लगता है, ये जानते हुए भी कि ये सब कपोल कल्पित है, फिर भी अंधेरा होते ही सारी भूत प्रेत की कहानियां या फिल्में जाने कहाँ से याद आने लगती हैं और फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए रात गुजरती है। तो मतलब ये है कि भूतों का भी उनको, ये अधिकतर लोगों को होता है कि तब तक दिन में नहीं लगता है, रात होते अंधेरा होते लगते रहता है डर।
0: तो चलिए अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं आरती। और गर्मियों में आंखों की देखभाल किस तरह कर सकते हैं इसके बारे में बताते हैं कि आप पर्याप्त पानी पीजिए ताकि आंखों में सूखापन ना आए, क्योंकि आंखों में सूखापन, जलन और बेचैनी ये सभी पानी की कमी के लक्षण होते हैं। और दिन भर पानी का सेवन करने से आंखों में भी नमी बनी रहती है और सूखापन दूर हो जाता है। तैराकी या साइकिलिंग अगर करने वाले कुछ लोग हैं तो उनके उचित जो चश्मे होते हैं वो पहनकर आंखों की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और चश्मे के रूप में आंखों की सुरक्षा क्लोरीन और खारे पानी के संपर्क के साथ साथ तैरते समय बैक्टीरिया से भी बचाती है। और स्पोर्ट्स ग्लासेस और रैप राउंड जो सनग्लासेस होते हैं जो पूरे अपने आंखों, आपके पूरी आंखों को कवर करते हैं, उससे धूल के कणों, मलबे और जो भी आप उससे सीधी धूप से आंखों की रक्षा करते हैं। और अपने दैनिक भोजन में आप पत्तेदार सब्जियां, गाजर और खट्टे फल शामिल कर लीजिए तो ये बेहतर होगा आपके लिए।
0: और बातें आगे बढ़ाएंगे पर एक गीत सुन लेते हैं।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: इस आयोजन की जिसकी चर्चा भी हो रही थी,
2: बिल्कुल जाना है, शुरू होने वाला है
1: और कुछ ही समय बाकी है, तो जो मुंबई में रहने वाले हमारे श्रोता हैं वो जरूर ही इसका हिस्सा बनेंगे।
2: पहुंचिए फटाफट।
1: और हम बात कर रहे थे आंखों की।
2: तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि तेज गर्मी और एसी वगैरह में अगर बैठे हैं आप बहुत ज्यादा, तो वहां आंखें जल्दी सूखती हैं। और आंखों के प्राकृतिक आंसू के स्तर को बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए आप आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: इसके अलावा हमारे श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में पिंक आई यानी कंजक्टिवाइज का जो है संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। और अपनी आंखों को ऐसे में बार बार ना रगड़ें। घर अगर आप लौटते हैं कहीं बाहर से धूप से, तो साथ साथ आंखों को भी साफ पानी से जरूर धोया करें।
2: बिल्कुल, और धूल प्रदूषण से बचें। और साथ ही हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि गर्मियों में आंखों की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है, तेज धूप और गर्म हवा और धूल से आंखों में जलन या खुश्की हो सकती है, तो आप धूप का चश्मा जरूर पहनिए।
1: बिल्कुल। और हम सुन लें गाना और है ये कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: और देखो आरती, कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं हमारे सुनने वालों से
1: येलो में
0: इजाजत। हाँ
1: चलिए
0: हाँ बिल्कुल, चंचल वर्मा
1: और आदि श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: नमस्कार।

आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूं संगीता श्रीवास्तव लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश। मौसम बेशक करवटें ले चुका है श्रोताओं, और हमारे श्रोता भी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। ऐसे में विविध भारती से आपके रेडियो तक पहुंचते गीत है ना किसी शीतल छाया की तरह। इन्हीं गीतों की झनकार लिए आ चुका है आपका पसंदीदा प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जो सज रहा है हमारे श्रोताओं की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों से और उनके

0: पसंदीदा गीतों से। तो चलिए शुरू करते हैं बातों का सिलसिला और ये बजी टेलीफोन की घंटी। चलिए देखते हैं ये पहला कॉल किसका है। ध्यान से सुनिए, कहीं ये आपका कॉल तो नहीं। हेलो फरमाइश। हाँ जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है?
1: मेरा नाम पूरन वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंजनल बुगला से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: तो विविध भारती में आपकी बात हो रही है, बताइए अपने जयपुर शहर के बारे में कुछ।
1: जी मैडम, बहुत खुशी हो रही है विविध भारती में मेरा कॉल लग गया। तो यहाँ मौसम बढ़िया है मैडम, गर्मी पड़ने लगी। आपके वहाँ बम्बई में कैसा हो रहा है मौसम मैडम?
0: बम्बई का तो मौसम इस समय थोड़ा बहुत गर्म है, वैसे तो मौसम यहाँ का खुशगवार ही रहता है। राजस्थान के बारे में कुछ बताइए, पिंक सिटी कहा जाता है इसे?
1: पिंक सिटी कहा जाता है और यहाँ जयपुर में ना दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं मैडम। यहाँ घूमने के लिए जगह है बहुत सारी, जैसे रामनिवास बाग हो गया और आमेर किला हो गया, आमेर की माता हो गई।
0: अच्छा, तो यहाँ का तो खान पान भी बड़ा प्रसिद्ध है?
1: हाँ जी, यहाँ खान पान बड़ा दाल बाटी चूरमा होता है मैडम।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि विविध भारती सुनते रहते हैं?
1: जी मैडम, मैं विविध भारती सुन रहा हूँ, 2011 से मैं विविध भारती के साथ जुड़ा हूँ मैडम।
0: अच्छा, कार्यक्रम कौन कौन से अच्छे लगते हैं आपको?
1: मेरे को सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मैं सुबह से लेकर शाम तक सुनता रहता हूँ। ये हेलो फरमाइश हो गया, आज के पनकार हो गए और ये सखी सहेली में खासकर मेरे बहुत फेवरेट है। उसमें सचिव की बात होती है और सकाव की बात होती है, फेसबुक पे कमेंट पड़े जाते हैं मैडम, बचपन से लेकर हमारे जो भी बातचीत होती है तो बताया जाता है मैडम।
0: अच्छा, अब ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं?
1: जी मैडम, हम खेती बाड़ी करते हैं और इस टाइम तो खेत खाली है।
0: अच्छा, चावल की तैयारियां हो रही होंगी या क्या लगेगा गर्मी के बाद फिर?
1: जी अभी से बाजरा की फसल लगाएंगे मैडम, 1-1.5 महीने बाद बाजरा बोएंगे।
0: अच्छा, तो चलिए अब आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी मैडम, आज फिल्म का नाम रहेगा सलाटे और इसमें गाने के बोले धक धक वाला ऐसा कुछ गाना है, वो सुनना चाहूंगा मैडम मैं।
0: तो चलिए आपके रेडियो सेट पर आ रहा है ये गीत आपकी पसंद का, सुनिए।

0: हेलो फरमाइश, बताइए कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: मेरा इंटरेस्ट आर्यन प्रयाग से बात कर रहा हूँ
0: अच्छा, क्या करते हैं?
1: जी। अभी पढ़ाई कर रहे हैं,
0: अच्छा, कौन से क्लास में हैं?
1: 9th में जी।
0: 9th में? तब तो बड़ी सारी
1: मैं
0: जिम्मेदारियां आ रही हैं। 9th का एग्जाम
1: जी
0: तो बहुत सावधानी से देना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद तो 10th आ जाता है, तो जिम्मेदारियां 9th से बढ़ जाती हैं। तो बताइए तैयारियां कैसे चल रही हैं आपकी, और अभी तो वैसे रिजल्ट आ गया होगा।
1: जी
0: अच्छा, तो आप 10वीं क्लास में चले गए,
1: जी आपके
0: तो
1: कार्यक्रम सारे सुनते हैं
0: अच्छा, कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे
1: जी।
0: लगते हैं?
1: आज के फनकार, गीतों भरी कहानी, आज के मेहमान सारे कार्यक्रम सुनते हैं
0: तो आप तो पढ़ाई भी साथ साथ करते हैं और रेडियो भी साथ साथ सुनते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो रेडियो से आपका जुड़ाव कैसे हो गया?
1: रेडियो जुड़ा बचपने से सुन रहे हैं रेडियो को
0: क्योंकि देखिए आजकल जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर तो मोबाइल देखते हैं और ज्यादातर टीवी देखते हैं, रेडियो की तरफ तो झुकाव होना बहुत अलग बात है। लेकिन आप रेडियो सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है?
1: हमें जो सखी सहेलियां जो विषय रखते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: अच्छा, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारियां होती हैं।
1: हाँ, हमें मोबाइल ज्यादा नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसमें आंखों में रोशनी भी जा सकती है।
0: तो आप अपने आप को मोबाइल से कैसे दूर रखते हैं?
1: क्योंकि हम रेडियो सुबह से शाम तक सुनते रहते हैं, हमारी पढ़ाई भी चलती रहती है।
0: तो बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आप अपने साथ के जो बच्चे हैं जो आपको सुन रहे हैं इस समय रेडियो पर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके लिए मैं ही कहेंगे कि आप भी पढ़ाई करें, रेडियो सुनिए, मोबाइल से ज्यादा से ज्यादा दूर रहिए।
0: और अपने शहर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, यहाँ संगम है, बहुत ही अच्छा संगम है।
0: तो ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अभी से हम दे देते हैं, क्योंकि आप 10वीं में आ गए हैं। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: चंदना में फिर तेरी कहानी याद आई, काले बोलने दिल में सनम की सूरत, आंखों में आके दे मेरे खुदा मुझे एक और जिंदगी दे।
0: और अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा गांव गुरपुरी से गोल्डी बात कर रहा हूँ।
0: हिमाचल प्रदेश कांगड़ा, ये तो बहुत सुंदर जगह है गोल्डी जी।
1: जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल
0: जी। तो आजकल क्या मौसम है वहाँ?
1: जी मैम बहुत गर्मी है इधर, आजकल तो पक्षे की भी मतलब पता नहीं लग रहा, पक्खा लगाया हुआ कि नहीं लगाया हुआ, लगाया दो पक्खे लगाएंगे वो भी काम पड़ जाएंगे।
0: मतलब अभी गर्मी पड़ रही है वहाँ?
1: जी बहुत गर्मी है मैम।
0: अच्छा, काम क्या करते हैं?
1: मैं दृष्टिहीन हूँ, ऐसे घर का ही काम करता हूँ थोड़ा बहुत।
0: अच्छा अच्छा, तो विविध भारती सुनते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनते रहते हैं मैम कुछ प्रोग्राम।
0: बताइए कि विविध भारती के कौन से प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं?
1: मैम हेलो फरमाइश।
0: तो अपने काम काज के साथ कैसे समय निकालते हैं रेडियो सुनने का?
1: मैम रेडियो सुनते रहते हैं काम काज, क्योंकि रेडियो तो ऐसा मनोरंजन साधन है कि इसमें तो काम काज में कोई रुकावट आ ही नहीं सकती, क्योंकि रेडियो तो हमने सिर्फ कानों से सुनना होता है।
0: हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बताइए।
1: जी मैम हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा है, इसमें देवी देवताओं के स्थान है, ज्वाला जी माता का मंदिर है, चिंतपूर्णी माता है, नैना देवी है, और भी बहुत है, ड्योल स्थित बाबा भारतनाथ जी है।
0: और हमारे सुनने वाले अगर हिमाचल प्रदेश जाना चाहें तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा रहेगा?
1: मैम आजकल का जो मौसम है बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर मई जून में बरसात आ जाएगी, तो बरसात में थोड़ा फिर मुश्किल हो जाती है ना, नवंबर से लेकर आज मई तक आ जाए, और थोड़े दो तीन महीने में जून जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ना आए, क्योंकि बरसात पड़ती है तो फिर कोई क्या होता है, कभी रास्ते खराब हो जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है जी।
0: अच्छा देखिए, हिमाचल की जो संस्कृति है वो बड़ी अलग सी है, यानी कि वहाँ के अगर हम पोशाकों के बारे में बात करें, पारंपरिक पोशाक के बारे में बात करें, वहाँ की संस्कृति के बारे में बात करें, तो इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे?
1: मैम संस्कृति तो हर राज्य की अलग अलग ही होती है मैम अपनी अपनी।
0: बिल्कुल
1: मैम, यहाँ हमारी ये कि हमारे जो कांगड़ा की जो धान है वो कुछ अलग ही है, वो पूरे शायद हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होगी जो हमारे कांगड़ा में, हिमाचल में है, हमारे कांगड़ा की जो धान बनती है फंक्शनों में, शादी वगैरह में।
0: अच्छा, और कांगड़ा की मैं आपको एक खास बात बताती हूँ कि वहाँ की जो टोपी बनाई जाती है, वहाँ की जो पोशाक होती है जो लोग पहनते हैं वो बड़ी खास होती है, और उसमें जो कढ़ाई वगैरह की जाती है वो बड़ी अलग सी होती है।
1: बिल्कुल मैम।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मूवी का नाम है उपकार और गाने के बोल है कसमें बादे प्यार सब बातें हैं बातों का क्या।
0: बहुत सुंदर गीत है, तो लीजिए आपको आपके प्रदेश हिमाचल में हम सुनवा रहे हैं उपकार फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: क्या करती हैं हसीना जी?
1: सिलाई करती हूँ मैडम।
0: अच्छा, तो इंदौर के क्या हाल हैं?
1: अच्छा हाल है, मगर गर्मी तो सब दूरी है मैम।
0: तो गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या खास है, क्या खान पान है, या किस तरह से गर्मी से निजात पाने की कोशिश की जा रही है?
1: गर्मी के लिए तो एक शायरी कर देती हूँ आपके लिए। इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो ये तो विविध भारती की आवाज है, और इसका जब आगाज होता है तो फिर हर तरफ शीतलता ही शीतलता होती है, और बहुत हमारे श्रोता
1: ठंडक पहुँचाते हैं आपके गाने। जो मुंबई से आते हैं ना मैडम, बहुत ठंडक पहुँचाते हैं।
0: हाँ,
1: चलता रहते हैं।
0: जी जी जी। हसीना जी, अपने काम काज के बारे में बताइए।
1: मैं घनी बेग का काम करती हूँ, जूट का होता है मैडम। सुबह हम 9:30 बजे चले जाते हैं और 6 बजे वापस आते हैं। मतलब घर का भी काम करना पड़ता है, बाहर का भी करना पड़ता है।
0: तो जूट का काम, क्या काम, कुछ बनाती हैं उसका?
1: इसका रिपेयरिंग होता है मैडम, हाथ से रफू होता है।
0: अच्छा अच्छा, और क्या करती हैं?
1: इसके अलावा तो बस अभी कहीं पर भी कॉल रहते तो लगाती रहती हूँ मैं, आप लोगों को सुनती रहती हूँ। हेलो सहेली में भी और विविध भारती के जितने भी कार्यक्रम आते हैं, अभी जब मंच आएगी तो आपने शुरू करा, इसके लिए भी शुक्रिया।
0: अच्छा हसीना जी, एक बात बताइए कि आप काम करने भी जाती हैं, घर भी संभालती हैं, तो इस बीच रेडियो कैसे सुनती हैं?
1: मैडम दुकान पे भी रेडियो रहता है दिन भर, और घर पे भी रहता है,
0: तो काम भी चलता रहता है, रेडियो भी चलता रहता है। तो हसीना जी, अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम इम्तिहान और गाने के बोल है।

0: हेलो फरमाइश,
1: कैसे हो आप?
0: हाँ मैं अच्छी हूँ, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: कच्छ गुजरात से, गांव का नाम नया अंजार कच्छ, खत्री कॉलोनी एरिया से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है अब्दुल कादिर खत्री।
0: तो अब्दुल कादिर जी, अपने शहर के बारे में, गुजरात के बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ, हमारे कच्छ जिले के बारे में बात करें तो कच्छ तो एक बड़ा जिला है।
0: क्या करते हैं?
1: बंदेज साड़ी आता है ना, बांधनी, वही साड़ी बनाने का काम है हमारा।
0: अच्छा, तो ये तो बड़ी ही क्या कहते हैं ना कि समृद्ध कला।
1: मतलब
0: के
1: जटिल कला है, जटिल कला है जो तो कोई नहीं कर सकता। सीखने में टाइम लग जाता है और बारीक धागे से इसे राई की दाने के बराबर बांधा जाता है और बांधने के बाद इसे डाइंग किया जाता है कोई भी कलर में। जैसे कि कपड़ा सिल्क है तो सिल्क का कलर चलेगा, कॉटन है तो कॉटन का चलेगा कलर, और अगर दूसरा कोई दुतियान है या कोई टसर है कपड़ा, दूसरा कोई भी कपड़ा जॉर्जेट, तो उसके हिसाब से दूसरा कलर चढ़ेगा। मगर कलर करने के बाद इसका जो गेटअप आता है ना, वो बहुत बढ़िया आता है गेटअप।
0: लेकिन अक्सर करके देखते हैं कादिर जी कि जो बंदेज साड़ियां होती हैं या जो इसके शलवार कुर्ते बनते हैं, इनमें रंग बहुत जल्दी निकल जाता है, तो ऐसा क्यों होता है?
1: क्या है कि सिल्क में तो कलर की गारंटी बिल्कुल नहीं आती, हेवी साड़ी होती भी तो भी नहीं आती, क्योंकि इसमें एसिड कलर का यूज किया जाता है और ये सब भारी साड़ी आती है ना, ड्राई क्लीन भी होती है। मगर कॉटन में आप लेंगे ना कहीं से भी, तो कॉटन में शायद इसमें बहुत कम कलर निकलते हैं। कॉटन में, कॉटन आता है ना कपड़ा, वो वेट कलर चढ़ता है, तो इसमें कलर निकलने का कोई शिकायत नहीं आता।
0: जी जी, तो उस पर जो काम किया जाता है, जो आप बनारसी काम बता रहे हैं, तो वो क्या पहले के समय में तो सोने और चांदी के तारों से होता था, तो अब ये किस तरह से होता है जो आप बता रहे हैं?
1: वो तो आता है, वो तो रेडी आता है ना, वो सफेद कपड़ा है ना, वो तो बनारस से रेडी आता है। वो जैसा भी धागा होता है ना सोने चांदी का डिजाइन किया हुआ, उसके ऊपर हमारा काम तो बंदेज करना है। देखो व्हाइट साड़ी है तो इसमें हमने सफेद दाना निकाला, येलो दाना निकाला, उसके बाद उसे डाइंग कर दिया, ग्रीन किया, फाइनल। फाइनल ग्रीन करने के बाद दो तरह के दाने निकलेंगे, येलो भी निकलेगा और व्हाइट भी निकलेगा, इस तरह से।
0: जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि कादिर जी, ये जो आप बंदेज की साड़ियों का काम करते हैं, ये मुझे ये बताइए कि ये आपके परिवार में सभी लोग करते हैं और इसको आपको आगे बढ़ाना है, या फिर ये सिर्फ आप ही करते हैं?
1: ना, मैं करता हूँ, मेरा वाइफ ही करता है, मेरा लड़का ही, हम तीनों इस काम में लगे हुए रहते हैं।
0: तो इस काम के साथ साथ विविध भारती भी आप सुनते रहते हैं?
1: ना बिल्कुल सुनते रहते, क्यों नहीं। विविध भारती में आपको एक नया कार्यक्रम भी शुरू हुआ, उसके लिए हम बधाई देते हैं आपको, मन चाहे गीत पत्रों के ऊपर आधारित।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप बताइए कादिर जी, अपनी पसंद का गीत।
1: खानदान फिल्म से है, जितेंद्र अभिनीत फिल्म है ना खानदान, उसका है, लता मंगेशकर की आवाज में है ये। मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है।
0: और अब आपके रेडियो सेट पर आ रहा है

0: हेलो फरमाइश।
1: हम भी रमेश साहब बोल रहे हैं बिहार बांका जिला गांव झिकुरिया से।
0: तो बिहार में तो इस समय बहुत गर्मी पड़ रही होगी कमलेश जी।
1: हाँ जी, ये तो 2-3 दिन पहले बारिश हुआ था जी।
0: बताइए काम क्या करते हैं कमलेश जी?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: खेती का काम जो होता है अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि सर्वोपरि है, क्योंकि आप न सिर्फ अपने लिए मेहनत करते हैं बल्कि जो खेतों से अनाज आता है उससे हम सब भी जो है वो पोषित होते हैं, है ना? तो कमलेश जी ये बताइए कि आजकल क्या चल रहा है खेतों में, यानी कि जो अगली फसल है। देखिए अभी तो आम का मौसम है।
1: हाँ जी, मौसम तो अभी आम का है और खेतों में अभी मूंग लगा हुआ है और सब्जी भी लगा हुआ है।
0: सब्जियां और मूंग तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो आम की खेती है वो इस समय तो पूरी तरह से अच्छी होगी।
1: हाँ जी, अच्छी है।
0: अच्छा, तो ये बताइए कमलेश जी कि जो खेत हैं, जैसे आपने मूंग की बात करी, तो इसमें जो आजकल खाद इस्तेमाल की जाती है वो क्या आप जैविक खाद इस्तेमाल करते हैं?
1: ये खाद एक यूरिया पड़ता है, वो पड़ता है जी।
0: अच्छा अच्छा, कमलेश जी बताइए फिर खेती का काम करते हैं तो रेडियो कैसे सुनते हैं, मेड़ पे रख के सुनते हैं?
1: रेडियो तो मैम जी पहले चलता था, अब तो हम मोबाइल ऐप पे न्यूज ऑन ऐप पे सुनते हैं।
0: तो मोबाइल ऐप तो बहुत अच्छा है, लेकिन बस वो है कि सिग्नल आना चाहिए, है ना?
1: हाँ जी, सिग्नल बहुत अच्छा पकड़ता है कहीं से भी, हर जगह, जहाँ भी खेतों में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं वहाँ मोबाइल पास में और न्यूज ऑन ऐप पे चलते रहता है आपका हेलो फरमाइश का कार्यक्रम। पंचायत गीत भी चालू हो चुका है आपका।
0: तो आप कौन कौन से कार्यक्रम पसंद करते हैं विविध भारती के?
1: कार्यक्रम तो हमको हेलो फरमाइश सबसे फेवरेट है, और शाम को जो 7 बजे आता है
0: शाम को
1: कार्यक्रम।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, तो आप बताएं अब अपनी पसंद का गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
1: बेटा फिल्म का गाने का बोले कोयल सितेरी बोले कू कू वाला गाना सुना दीजिए।
0: तो आप लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
2: कोयल सितेरी बोली कू कू कू कू कू कू कू।

0: हेलो फरमाइश, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार,
1: मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ जी, शरण भल्ला जी।
0: अच्छा,
1: महाराष्ट्र आमची मुंबई सुंदर मुंबई। मैं बॉम्बे में रहा हूँ 18 साल जी।
0: मुंबई में किसी कामकाज के सिलसिले में रहते थे?
1: हेल्पर था मैं नेवी, जब ये त्रिशूल और विजय बनते थे ना, विक्रांत चालू हुआ था, मैं उस टाइम बॉम्बे में ही था जी।
0: अच्छा अच्छा,
1: मैं अभी मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं फिर अमृतसर आ गया जी। मेरे को हो गया 20-22 साल अमृतसर में जी।
0: अच्छा अच्छा, तो अमृतसर के क्या हाल है बताइए?
1: अमृतसर में इस टाइम गर्मी बहुत है मैडम जी, फसल तो कट गई है, खेत खाली पड़े हैं बस।
0: जी जी जी, और वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी हो तो थोड़ा घर में ही रहना ज्यादा दोपहर के समय अच्छा होता है।
1: जी, आप लोग बताते रहते हैं ना कि गर्मी में 12 बजे से लेके 4 बजे तक बाहर मत निकलो, सुन के अमर भी करते हैं। अमृतसर तो खाने पीने वाला शहर है जी मेरा। वैसे अमृतसर के बाजू में अटारी गाँव है, वाघा बॉर्डर।
0: तो अमृतसर तो बड़ी सुंदर जगह है।
1: बहुत सुंदर है जी, बहुत सुंदर, गोल्डन टेम्पल, दुर्गियाना मंदिर, जलियांवाला बाग है, घूमने लायक जगह है जी।
0: जी जी जी,
1: बॉर्डर जो हमारा अटारी है वहाँ शाम को रोज 25

0: हैं तो वहाँ की जो खेती बाड़ी है, वहाँ की परंपरा जो है और वहाँ का खान पान बड़ा ही। तो अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, और बताइए कि विविध भारती आप ही सुनते हैं या आपके परिवार
1: मैं अकेला ही सुनता हूँ बहुत। मैं तो ना जी जब बड़े बड़े रेडियो होते थे ना जी, पनाका गीत माला आता था सैलून से, मैं तभी से जुड़ा हुआ हूँ।
0: तो अब आप बताइए कि आप कौन सा अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं।
1: फिल्म मनोज कुमार की पत्थर के सनम है जी, वहीदा रहमान मुमताज, तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल।
0: तो सुनिए लीजिए अपनी पसंद का ये गीत,
2: तौबा ये मतवाली चाल।

0: हेलो फरमाइश
1: मैम, नमस्ते
0: नमस्कार, बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं
1: जी। मैम मैं ग्राम अलीनगर बरेली उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैम मेरा नाम है मोहम्मद उमर रैना।
0: रैना जी बताइए क्या हालचाल हैं आपके, क्या करते हैं
1: जी। मैम बहुत बढ़िया हालचाल है मैम, आज बहुत दिनों में कॉल लगी मैम, बहुत खुशी हो रही है मैम जी। मैम मैं कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री उसमें काम करता हूँ मैम।
0: तो कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं क्या?
1: जी मैम पीना पसंद करते हैं गर्मी में मैम।
0: अच्छा तो कोल्ड ड्रिंक के बारे में हमें कुछ बताइए कि वहाँ फैक्ट्री में क्या काम करते हैं आप?
1: जी मैम मैं वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम देखता हूँ मैम, जो है डिस्पैच का काम देखता हूँ, सुपरवाइजर हूँ मैम वहाँ में। ये तो मैम जो है लोड कराते हैं कंपनी मैम, जो है बढ़िया से बनती है मैम, ये चीनी से और इसकी जो होती है वगैरह वगैरह उससे बनती है मैम।
0: अच्छा तो ये कोल्ड ड्रिंक बच्चे भी बहुत पीते हैं और सबको भी बहुत पसंद है।
1: जी जी मैम ये चीनी से बनती है मैम।
0: तो

0: कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं कि भाई इसको कम पिए?
1: जी मैम, कोल्ड ड्रिंक है, जैसे सोटनर की कोल्ड ड्रिंक होती है मैम, ये बच्चों को भी बच्चों को कम पिलाना चाहिए सोटनर की कोल्ड ड्रिंक मैम। ये कहना चाहता हूँ सोटनर के माल से बच्चे रहे मैम, चीनी का माल पिए और कंपनी का माल पिए, अच्छा माल पिए मैम, उससे कुछ नहीं होता मैम। सोटनर का माल पीने से थोड़ी बीमारी होती है।
0: और इसके अलावा और क्या काम करते हैं? यही है आपका मेन काम?
1: जी मैम यही काम है, गाँव में दुकान है मैम अपनी।
0: अच्छा, रेडियो विविध भारती भी आप सुनते रहते हैं?
1: जी मैम मैं ये सब बहुत सुनता हूँ मैम, मेरा बचपन से शौक रहा रेडियो सुनना मैम, और विविध भारती तो बहुत समय सुनता हूँ मैम। इससे पहले एक प्रोग्राम आता था ऐसे में इसके बहाने बीबीएस के तराने, ये मैम तो बहुत पसंद था मैम।
0: तो ठीक है, अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है आई मिलन की रात और गाने के बोल है कितने दिनों के बाद आई सजना रात मिलन की।
0: तो हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार भाई।
0: नमस्कार, बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है?
1: मैं सुरेश रामू साबले ग्राम सामनापर तालुका कागल जिला कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ।
0: क्या हालचाल है कोल्हापुर के?

0: सुरेश जी,
1: गर्मी साधारण है और हमारे करवांदा का मौसम है, धान मेवा है। वैसे पिछले साल में बंद रहता हो, घर में रहता हो, बासी के सर्वो कार्यक्रम सुनता हो।
0: और सुरेश जी ये बताइए कि कोल्हापुर में गर्मी कैसे पड़ रही है?
1: गर्मी बहुत है।
0: तो फिर दिनचर्या कैसी रहती है?
1: दिनचर्या क्या है, कभी उठता हो, रेडियो सुनता हो, भजन सुनता हो, भजन गाता हो, भजन मंडल है, ये भजन मंडल में भजन गाता हो।
0: अच्छा, तो भजन भी गाते हैं, तो कुछ सुनाइए भजन।
1: दक्कनचा राजा जोशी बमाजा बोलूया चांगे भले, दक्कनचा राजा जोशी बमाजा बोलूया चांगे भले, सासन काठी डुले जोशीबाची सासन काठी डुले, सासन काठी डुले जोशीबाची सासन काठी डुले, सासन काठी डुले
0: बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आप गाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इसको ढोल मंजीरे के साथ गाते होंगे तो ये भजन और भी अच्छा और भी सुंदर लगता होगा, है ना? तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैंने तैयार किया लता मंगेशकर, SB बालसुब्रमण्यम, और गीत है देव कोहली, संगीतकार का नाम है राम लक्ष्मण। बोल भाई दिल दीवाना दिल सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना।
0: ठीक है सुरेश जी, आपकी पसंद का ये गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, लीजिए सुनिए।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे थे अपनी पसंद के गीत। आपको याद दिला दें श्रोताओं कि आज इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं के कॉल हमने शामिल किए हैं वो कृपया हमें 2 महीने बाद ही दोबारा फोन करें, जिससे हमारे दूसरे श्रोताओं को भी कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल सके। हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कीजिए हमारा फोन नंबर 4002466 2। मुंबई का STD कोड है 022। हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 2867-0288। एक बार फिर आपको बता दें हमारा फोन नंबर आप नोट करें 4002466 2। मुंबई का STD कोड है 022। हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 2867-0288। मुंबई का STD कोड 022। इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है प्रत्येक गुरुवार शाम 4 बजे से। श्रोताओं आज के कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुरलेकर का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। तो अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात और फिर होंगी ढेर सारी बातें। तब तक के लिए संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू। और
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण अभी आप विविध भारती मुंबई से सुन रहे थे। FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। सायं के 5 बजने को हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।

खोकर पाने का ही मज़ा कुछ और होता है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और होता है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा होती है मेरे दोस्त, हार के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और होता है। हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी वेरी लवली गुड इवनिंग। दोस्तों, आपने ट्यून किया 103.7 MHz पर। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा दिलों की धड़कन युवाणी में, अपनी रेडियो दोस्त और होस्ट गरिमा सोनी के साथ। दोस्तों, आज है गुरुवार और गुरुवार को, जैसे कि आपको पता है, कार्यक्रम होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम। तो अगर आप भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं youthexpress@gmail.com पर, और सुन सकते हैं प्रत्येक गुरुवार को अपनी पसंद की फरमाइश का गीत। दोस्तों, आज की बात में हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस, जो कि हर साल 21 मई को भारत में मनाया जाता है। बात करें दोस्तों इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ जन जागरूकता फैलाना, शांति, मानवता और एकता का संदेश देना, युवाओं को हिंसा और चरमपंथ के रास्ते से दूर रखना, राष्ट्रीय अखंडता और भाईचारे को मजबूत बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों, यह दिन जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुबंदूर में आत्मघाती बम विस्फोट में हुई थी। राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस पहली बार 21 मई 1992 को मनाया गया। दोस्तों, बात करें आतंकवाद की या टेररिज्म की, तो यह एक ऐसा कृत्य है

जिसमें हिंसा या भय का उपयोग करके किसी खास राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक या वैचारिक उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। यह न केवल मानव जीवन के लिए खतरा है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और विकास को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसीलिए हम हर वर्ष 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाते हैं, जिससे कि हम आतंकवाद के खिलाफ जन जागरूकता फैला सकें और शांति, मानवता और एकता का संदेश दे सकें। तो दोस्तों, ये चर्चा कर रहे थे हम राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस की। दोस्तों, हमें आज हम बात कर रहे थे कि ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम है, तो पहला मेल हम शामिल कर रहे हैं आज के कार्यक्रम में। मेल कर रहे हैं हमें मॉरस जंगेल जी, आर्य नगर भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मॉरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष नंदिनी और शगुन आरुषि, आदित्य और अंजलि। इनकी फरमाइश है फिल्म प्यार ही प्यार का ये गीत।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: दोस्तों, अगली फरमाइश हमें मिली है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजलि वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा और मुरली खूबचंद वर्मा। इनकी फरमाइश है फिल्म बाजीगर का ये गीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम ईमेल आधारित फरमाइश में हमें अगला मेल प्राप्त हुआ है। पटेल नगर मलोद से मेल कर रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया। इनकी फरमाइश है फिल्म दीदार का ये गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: दोस्तों अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है कुरवाली से, और फरमाइश करता है राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरनी अंसारी।

अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, और ये हमें मैसेज कर रहे हैं कि युवाणी कार्यक्रम आपका बहुत ही अच्छा होता है और हम सभी को नमस्कार कर रहे हैं। तो राशिद हुसैन जी, आपको भी पूरी आकाशवाणी नागौर की तरफ से नमस्कार, और ये हम भी दुआ करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें और खैरियत से रहें। इनकी फरमाइश है फिल्म रफू चक्कर का ये गीत।

दोस्तों अगली फरमाइश देवरी भाटा पर ऐसे कर रहे हैं कि अरसाहू आकाश कमलेश गन्नूलाल रजक मुरली क्षत्रिय है। इनकी फरमाइश है फिल्म आप आए बाहर आई का ये गीत।

दोस्तों अगली फरमाइश दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमें प्राप्त हुई है। हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा, इनकी फरमाइश है फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत।

दोस्तों, समय अभाव के कारण कुछ मेल हम शामिल नहीं कर पाए, जिसमें कालका से शुभचंद्र बजाज, शाहिल बजाज, बिट्टा बजाज, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर ठाकुर और डॉक्टर अमनदीप, इनकी फरमाइश को हम शामिल नहीं कर पाए। इसके साथ ही नितिन पाटिल और महाराष्ट्र से ही हमें मैसेज कर रहे थे, इनकी फरमाइश को भी हम शामिल नहीं कर पाए। तो आप अगले गुरुवार को हमें मेल कर सकते हैं, मेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। दीजिए अपनी दोस्त गरिमा को इजाज़त। नमस्कार।

युवा साथियों भी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 बजने को हैं। अब आप आकाशवाणी जयपुर से सुनेंगे कार्यक्रम धीणेरी बाता।

0: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीनेरी बात।
1: काकी साहब छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, पर आज मुंडा उठा किया बैठे हो।
2: का ही करूँ दापू बेटा, भैंस पूरा दूध भी कौन दियो और विरोध जी सौ भी कौन।
1: आप सुनो आकाशवाणी सु कार्यक्रम धीरे नहीं बातिया। काकी सा ई कार्यक्रम सुनन सु मिलसी पशुपालन सु जुड़ी हो रही सबली समस्या रो समाधान।
3: इस कार्यक्रम की प्रायोजित है राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
4: धीनेरी बातिया, धीनेरी बातिया कार्यक्रम सुनन वाला सगला पशुपालक भाई ने हरखू भाई और
5: साथे साथे बंशी भाई रा भी
4: मोकड़ा मोकड़ा
5: राम राम
4: राम राम बंशी भाई
5: राम राम हरखू भाई राम राम
4: और राम राम सगला महाराज का भाई सुनन वाला है और हमारे सामने जिका चौपाल में बैठा है वे सगला भाई ने भी राम राम सा। और देखो सा गर्मी है बात तो देखो
5: जही चेत की है भाई।
4: हाँ और देखो दिनों दिन आज की गर्मी बढ़ रही है नी, मेरे पीछे विशेषज्ञ भी कहवे और अपना जिका बुजुर्ग है माई थे वे भी आप कहवे है के हरा जिका वृक्ष है भी कटन सु भी ओ तापमान है वो वृद्धि हुआ इरमाने तापमान तेज हो गया है, तो क्यों ना आपा भया एक एक पेड़ लगावा आपा।
5: बहुत ही अच्छा विचार है ओ
4: है नी। हाँ देखो अब टाबरिया कह के सोशल मीडिया पर से इंगला समाचार भी आवे के जे हमकी बिरखा वे नी तो एक एक दो दो पेड़ आपा लगावा और हर मान को जे एक एक दो दो पेड़ लगाए नी तो देखो राजस्थान है नी ओ हरो भरो हो जैसी और आज की तापमान की समस्या है जी आप आने वाली पीढ़ी है वह थोड़ा कम भुगत सी।
5: सच्ची बात कहो कि भाई एक पेड़ है नी वो अनेक लोगों ने जीवन दिया करे।
4: बिल्कुल
5: है नी, तो फिर तो ई पेड़ रो जो महत्व आप सोचा नी उनको कितो बढ़ जावे।
4: बिल्कुल सर, जिका पेड़ आप महित लगाया बियारो कहन के लाभ आपने मिल रही है और आप अगर लगा सा पीढ़ी ने मिल सी है नी, तो ये वास्ते आप निस्वार्थ हो प्रार ओ काम कर सा तो देखो जगत रो भलो है और आप भी भलो है, तो पेड़ तो आपने लगावनी है और जिगा पेड़ खाली लगावनी को नहीं ऐसा के
5: खासो ध्यान भी रखना
4: ध्यान भी रखना है के पेड़ लगाए एक फोटो खींची और सोशल मीडिया पर आज हमने एक वृक्ष लगाया है नहीं सा लगाया नहीं भी पूरी जिम्मेदारी भी आप नहीं उठावनी है। जब आप जिम्मेदार बन सा नहीं जद ये देखो जो पेड़ है नी वो पूरो पनपसी
5: भाई आज रो जो पेड़ है लगेड़ो वो आपने आने वाले टाइम रे मायने वो जीवन देसी।
4: बिल्कुल जीवन देसी सा और साथे साथे जो तापमान जो बढ़ रहे हैं तो जे काम नहीं है ना आवश्यक घर से निकलिया ना और जे काम है निकलना ही पड़े तो देखो कि खा पीर पानी पीर माथो ढकर ही आपने निकलनो है।
5: यार खूब भाई
4: हाँ छोटो सा काम है क्या आपा आपरो ध्यान रखा सा। देखो चौपाल में बैठा जाने आपा हथाई तो कराई हाँ और चौपाल में आप विशेषज्ञ भी पधारे
5: हाँ।
4: तो देखो आज बात कर ला आपा भेड़ व बकरियां री प्रमुख बीमारियां बचाव और रोकथाम। हाँ तब देखो आज विशेषज्ञ के बारे में बता दूं आज राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से पधारे हैं सहायक आचार्य डॉक्टर मनोहर सेन। डॉक्टर मनोहर जी आप रो चौपाल में घनो घनो स्वागत है और आपने भी करा राम राम सा
6: राम राम सा राम राम सा।
5: सेऊ पहली डॉक्टर साहब महाराज पशुपालक के उन्होंने आप आ बताओ कि भेड़ और बकरियां रा होड़ वाला प्रमुख रोग है बे किसे किसा है।
6: हरको भाई है बंसी भाई, भेड़ और बकरियों में बहुत सारे रोग होते हैं और उन रोगों के होने के कारण कई बार पशुपालकों को आर्थिक हानि भी होती है, पशु मर जाता है। तो एक तो रोग होता है फड़किया रोग, एक होता है गलगोटू रोग, खुर गलन रोग है, एंथ्रेक्स है और ब्रुसेलोसिस रोग है। इसके साथ साथ जैसे बकरी का प्लेग रोग है जिसे पीपीआर भी कहते हैं, चेचक रोग है, खुरपका मुंहपका रोग है, ब्लू टंग रोग है, ऐसे बहुत सारे और भी रोग हैं जो पशुओं में होते हैं, भेड़ बकरियों में होते हैं और कई बार अगर ध्यान नहीं देंगे तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है।
4: तो सेऊ पहले डॉक्टर साहब हमने बताओ कि फड़किया रोग कहीं है किया हुए और पशुपालक आपकी भेड़ और बकरियां ने इनसु किया बचावे।
6: हरको भाई और बंसी भाई ये भेड़ बकरियों में जीवाणुओं से होने वाला बहुत ही खतरनाक रोग है जो क्लोस्ट्रिडियम नामक जीवाणु से होता है। यह जीवाणु भेड़ बकरियों के आंतों में और ग्रास नल में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जैसे ही इस जीवाणु को अनुकूल परिस्थितियां मिलती है यह है वहां पर वृद्धि कर लेता है और वहां पर जहर स्रावित करता है, उस जहर से भेड़ बकरियों की कई बार मृत्यु हो जाती है। यह रोग मुख्य रूप से तब होता है जब पशु को अचानक से चारे में परिवर्तन कर दें, उसके खान पान में अचानक से परिवर्तन कर दें, या पशुओं को जो बरसात फसल कटाई के बाद में पशुओं को अपन खेतों में चरने के लेके जाते हैं वहां पर उसके चराई का समय अगर ज्यादा हो जाता है तो पशु ज्यादा खा लेता है, या बरसात के बाद में जैसे बरसात होती है उसके बाद में हरी हरी घास उगती है, प्रोटीन युक्त घास उगती है, उसको अगर ज्यादा खा लेता है तो इस रोग के होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। और इस रोग में प्रमुख रूप से पहले अचानक से पशु को आफरा आता है, पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है, पशु के मांसपेशियों में ऐंठन हो जाता है और कई बार पशु की मृत्यु भी हो जाती है। और इस रोग में मुख्य रूप से जो स्वस्थ पशु होते हैं और जो मेमने होते हैं वो प्रभावित होते हैं
7: जी।
6: और अचानक से हरे हरे दस्त भी लग जाते हैं। तो इस रोग को पहचानने के लिए ये जो प्रमुख लक्षण बताए हैं मैंने उनका ध्यान रखें और साथ में ही जो पशु बीमार हुआ है उसको अलग करके पशु चिकित्सक से उसका तुरंत उपचार करवाना चाहिए। साथ में ही 3 महीने से जो भी बड़े पशु हैं उन सबका बरसात से पहले टीकाकरण अवश्य करवा लेना चाहिए और जो पशु जहां रहते हैं वहां की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रख करके आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं क्योंकि ये रोग ऐसा रोग है एक बार आपके अगर फार्म पे आ गया है तो लगभग सभी पशुओं में होने की संभावनाएं रहती है। अच्छा। इसलिए विशेष ध्यान रख करके इसको इस रोग से अपने पशुओं भेड़ बकरियों को बचाया जा सकता है।
7: जी सर, ये छोटी छोटी बातें हैं पर महत्वपूर्ण बातें हैं।
5: बिल्कुल सर, डॉक्टर साहब गलघोंटू रोग है वो कहीं होया करे, इन रोग का ही मतलब है भेड़ बकरियां में भी और रोग होया करे क्या, और जे हुए तो पशुपालक आप पशुआ ने इन रोग से क्या बचा सके?
6: बंसी भाई, जैसे फड़किया रोग है जो बरसात के समय होता है वैसे ही गलघोंटू रोग भी बरसात के समय होता है।
5: अच्छा।
6: यह भी एक जीवाणु से होने वाला रोग है जो पास्चुरेला माल्टोसिडा नामक जीवाणु से होता है। यह जीवाणु भी श्वास नली में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जैसे ही इस जीवाणुओं को भी अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, जैसे ही पशु को तनाव मिलता है, जैसे पशु को तनाव देते हैं तो ये रोग अचानक से हो जाता है। तनाव कैसे मिलता है? जैसे पशु को अपन ने लगातार पैदल चलाया या एक जगह से दूसरे स्थान पर किसी गाड़ी में उसको ट्रांसपोर्ट किया या पशुओं के चारे में अचानक से परिवर्तन हुआ या मौसम में अचानक परिवर्तन हुआ तो ये जीवाणु जो श्वास नली में उपस्थित है अचानक से वृद्धि कर जाता है और ये रोग कर देता है। इस रोग में सबसे पहले पशु को बुखार आता है, नाक से स्राव आने लग जाता है, गले पे और छाती पे सूजन आ जाती है, सूजन का हाथ लगाते हैं तो दर्द होता है और सूजन आने से सांस नली पे जोर पड़ता है, उस जोर पड़ने के कारण से पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है और उसके सांस के समय घर घर की आवाज आती है। इसलिए इस रोग को गलघोंटू रोग भी कहते हैं और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए रोग से बचने के लिए सबसे पहले आपको जो बीमार पशु है उनको अपने बाकी स्वस्थ पशुओं से अलग करके उसका पशु चिकित्सक से उपचार करवाना चाहिए। यह रोग भी बरसात में होता है तो बरसात शुरू होने से पहले, मानसून शुरू होने से पहले इसका टीकाकरण करवाना चाहिए सभी पशुओं में जो 3 महीने से बड़े पशु हैं, और जो बीमार पशु हैं उनको अलग करके इलाज करवाएं और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। मैं बार बार कह रहा हूं साफ सफाई ध्यान रखेंगे तो इस रोगों से बचा जा सकता है। और एक टीकाकरण जो पशु स्वस्थ है उन सभी पशुओं में बरसात शुरू होने से पहले अप्रैल और मई में पशुओं का टीकाकरण अवश्य करवा लेना चाहिए।
5: भाई क्या उन्होंने मतलब वही अर्खो भाई कि भाई साफ सफाई री सावधानी और टीकाकरण की सजगता जरूरी बात है।
7: बिल्कुल सर, गलघोंटू के बाद में डॉक्टर साहब अब मैं आपसे जानकारी चाहूंगा कि ब्रुसेलोसिस रोग क्या फैलिया करे और पशुपालक भाई किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ये रोग के प्रति।
6: ब्रुसेलोसिस एक बहुत ही खतरनाक रोग है। यह एक जूनोटिक रोग है। जूनोटिक का मतलब होता है कि ये पशुओं से मनुष्य में भी आता है और ये एक जीवाणु है जो बकरियों और भेड़ों में होता है। ये मुख्य रूप से ब्रुसेला मेलिटेंसिस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में पशु की गर्भावस्था के अंतिम समय में जो अंतिम महीने होते हैं 3 महीने उनमें अबोर्शन हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, छता जो जेर होती है जिसको अपरा भी बोलते हैं वो गिरता नहीं है और बच्चा जाने से बदबूदार स्राव होता रहता है। जो नर पशु होते हैं उनमें अंडकोश में सूजन आ जाती है और जोड़ों में सूजन आ जाती है। ये जो तरल पदार्थ बाहर निकलता है या जो मरा हुआ बच्चा बाहर आया है और जो उसका प्लेसेंटा बाहर आया है उसके संपर्क में आने पे दूसरे पशुओं में भी ये रोग हो जाता है। उसके संपर्क में अगर कोई मनुष्य आता है या कोई जो पशुपालक उसको हैंडल करता है वो उसके संपर्क में आएगा उनमें भी ये रोग हो जाता है। तो इसमें विशेष सावधानी ये रखनी है कि जो भी जिस पशु में ये रोग होता है उस पशु को अलग कर दें, उसका उपचार करवाएं और साथ में ही जो उसका बच्चा मरा हुआ है, जो उसका प्लेसेंटा बाहर आया है और जो भी उसके आसपास जो भी खाद्य पदार्थ वगैरह जो उससे संक्रमित हुए हैं उन सबको गड्ढा खोद करके दबा देना चाहिए। और जो 4 से 6 महीने के जो बछड़ियां जो बकरियां होती हैं जो भेड़ होती हैं उनमें टीकाकरण अवश्य करवा लेना चाहिए। इस प्रकार से बचा जा सकता है। और मनुष्य में भी विशेष रूप से जो इस भेड़ों के और बकरियों के संपर्क में आते हैं उनको अपने हाथ अच्छे तरह से पानी और साबुन से धो करके फिर दूसरे काम करने चाहिए।
7: बहुत ही बढ़िया जानकारी दी सर।
5: डॉक्टर साहब बकरियां रो प्लेग और पीपीआर रोग कहीं हुआ करे, इनसे बचाव रा उपाय भी आप महाराज जगह पशुपालक भाई हैं उन्होंने बताओ सर।
6: पीपीआर रोग एक जीवाणुओं से होने वाला अत्यधिक संक्रामक रोग है। इसको बकरी का प्लेग भी कहते हैं। इस रोग में पशु को अचानक से तेज बुखार आता है, जीभ पे, मसूड़ों पे और होठों पर छाले हो जाते हैं तथा मुंह से अत्यधिक लार गिरती रहती है और मुंह से बदबू भी आती रहती है और नाक से गाढ़ा स्राव आता है। वो स्राव पपड़े के रूप में जम जाता है तो पशुओं को सांस लेने में भी दिक्कत होती है और बदबूदार दस्त भी लग जाते हैं। अच्छा। तो इसमें डिहाइड्रेशन से पशु की मृत्यु भी हो जाती है। अगर समय पर इसका उपचार नहीं किया गया तो ये रोग खतरनाक हो सकता है। इस रोग से बचाव के लिए सबसे पहले जो बीमार पशु हैं उनको अलग करके अलग से उसका पशु चिकित्सक से इलाज करवाना चाहिए और 3 से 4 माह के बीच के जो पशु हैं या 3 महीने से जो बड़े पशु हैं उन सब में उसका टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। मैं बार बार टीकाकरण पे जोर दे रहा हूं क्योंकि ये रोग जो है पीपीआर रोग है ये सर्दियों में होता है। अच्छा। तो सर्दी शुरू होने से पहले सितंबर अक्टूबर में इसके टीकाकरण अवश्य करवा लेना चाहिए और टीकाकरण से ही अपन रोग से पशुओं को बचा सकते हैं क्योंकि जब पशु बीमार हो गया है उसके बाद उसका इलाज करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है क्योंकि उपचार में भी पैसा लगता है। इसलिए टीकाकरण के द्वारा इन रोगों से पशुओं को या भेड़ बकरियों को अपन बचा सकते हैं। तो समय पर इसका टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए।
5: केवल मतलब वही है कि भाई सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो सावधानी से पहली रखनी जरूरी है।
7: बिल्कुल सा। और अब जी को बखत है वो है गीतड़ ले रो।
5: बिल्कुल सा, जरूरत है गीतड़।
7: बिल्कुल, तो आपसे सुन सा एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो।

0: भया बार आप सुनियो ओ एक मीठो मीठो सो गीतड़लो।
1: मैं प्रोफेसर राजेश कुमार धूड़िया, निदेशक प्रसार शिक्षा, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, आप सभी किसानों व पशुपालक भाइयों से निवेदन करता हूं कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा प्रायोजित धीणेरी बाता कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के विशेषज्ञों के द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में नवीन जानकारी, नवीन तकनीकें आप तक पहुंचाई जाती है। इसे सुने, इसका लाभ उठाएं और अपने पशुधन का उत्पादन बढ़ाएं।
0: इड़बेड़ा आपसे सुन रहे हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति धीणेरी बातियां। और आज चौपाल में जानकर देवन सर उपाध्याय है राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर सु सहायक आचार्य डॉक्टर मनोहर सैन। और आज आप बातचीत करिया भेड़ और बकरिया री प्रमुख बीमारियां, बचाव और रोकथाम।
2: और खूब भाई जिज्ञासा जी की इनी बात जीवन ने कही है कि गति दिया करे।
0: बिल्कुल।
2: तो भाई देखो सर, जिज्ञासा ने बढ़ावन सारू डॉक्टर साहब सु आगलो सवाल में कर रहे हैं, खुरपका मुंहपका रोग किया फैले और पशुपालक इन रोग सु पशुआ ने किन भात बचा सके।
3: खुरपका और मुंहपका भेड़ बकरियों में होने वाला प्रमुख रोग है और अत्यधिक संक्रामक रोग है और ये एक विषाणु से होता है। यह बीमारी मुख्य रूप से जो दो खुर वाले पशु होते हैं जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इनमें ज्यादातर होती है। इस रोग में सबसे पहले तेज बुखार आता है, मुंह पे, खुर पे और थनों पर और अयन पर और खुरों के बीच वाली जगह पर छोटे छोटे छाले हो जाते हैं जो फिर अगर खतरनाक होने पर घाव का रूप भी ले लेते हैं। पशु लंगड़ा करके चलता रहता है, मुंह से अत्यधिक लार गिरती रहती है और बकरियां व भेड़ लंगड़ा कर चलती है और मेमनों में इस रोग से मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी पशु बीमार हो तुरंत पशु चिकित्सक को बुला करके उसको अलग करके उसका इलाज करवाएं। दूसरा, साल में 2 बार इस रोग के टीके लगते हैं, एक तो अप्रैल मई में तथा दूसरा सितंबर अक्टूबर में, वो टीके अवश्य लगवाएं। और इसमें गवर्नमेंट की एक स्कीम चल रही है FMDCP प्रोग्राम जिसमें साल में 2-2 बार ये टीके फ्री में लगाए जाते हैं। और साथ में जो पशु बीमार है उसको दलिया और मुलायम हरा चारा खिलाना चाहिए जिससे पशु उसको आराम से खा सके। साथ में प्रतिवर्ष सभी पशुओं का टीकाकरण अवश्य करवाएं और ये भी ध्यान रखें जो घाव हो रखे हैं उन पे मक्खियां नहीं बैठने देवें, एंटीसेप्टिक क्रीम उस पे लगाएं और लाल दवा का हल्का घोल बना करके उसको धो करके एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं और मक्खियों पर नहीं बैठे ये विशेष ध्यान रखे, नहीं तो वहां पर कीड़े पड़ जाते हैं और घाव अत्यधिक खतरनाक हो जाता है और फिर ज्यादा नुकसान होने की संभावनाएं रहती है।

0: बिल्कुल सर, और मक्खियां जिद ही बैठ सी जिद बाड़े रे मायने गंदगी वे साफ सफाई नहीं वे, साफ सफाई नहीं वे जने ए देखो कीट पतंगा जी कहने ए बहुत फैलिया करे और ए पशुओं वास्ते बहुत ही नुकसानदायक है। और साथ ही साथ अब डॉक्टर साहब मैं आपसे ओ जानना चाहवा हां कि भेड़ बकरियां में संक्रामक रोग सु किया बच सका हां और इन बाबत पशुपालक ने कई कई सावधानियां रखनी चाहिए।
1: संक्रामक रोग काफी घातक होते हैं और कुछ पशुओं को बीमार होने पर यह फार्म के लगभग सभी पशुओं में होने की संभावना भी रहती है, तो कई बार पशु की इसमें मृत्यु भी हो जाती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही पता लगे कि पशु बीमार हो रहा है उस पशु को अन्य पशुओं से अलग कर देना चाहिए, उसका खान पान, उसका पानी जो भी है सारा अलग करें। साथ में ही जो कुछ ऐसे रोग होते हैं जो मानसून में होते हैं और कुछ ऐसे रोग होते हैं जो सर्दियों में होते हैं, तो मानसून में जैसे मैंने बताया फड़किया रोग होता है, गलगोटू रोग होता है, तो इनके टीके लगते हैं। वो टीके मानसून शुरू होने से पहले अप्रैल मई में अवश्य लगाने चाहिए, जिससे ये रोग होने की संभावनाएं कम हो जाती है, क्योंकि फड़किया रोग और गलगोटू रोग अगर आपके फार्म पे आ जाते हैं तो काफी नुकसान होने की संभावना रहती है। ऐसे ही कुछ रोग ऐसे होते हैं जो सर्दियों में होते हैं, जैसे चेचक रोग बताया मैंने, पीपीआर रोग बताया, एफएमडी बताया, खुरपका मुंहपका है, तो ये जो सर्दियों में होते हैं ज्यादातर होते हैं, लेकिन अभी आजकल मौसम परिवर्तन हो रहा है तो कभी भी होने की संभावना रहती है, इसलिए इनका भी सर्दियां शुरू होने से पहले सितंबर अक्टूबर में हमेशा टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। कुछ टीके गवर्नमेंट से फ्री भी अवेलेबल कराए जाते हैं, तो वो टीके आप जब भी आपके गांव में कोई पशु चिकित्सक आता है या कोई कंपाउंडर आता है तो उनसे टीके अवश्य लगवाने चाहिए। साथ में फार्म पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, साफ सफाई रखेंगे तो ये बीमारी दूसरे पशुओं में फैलने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। पशुओं को संतुलित और सुपाच्य भोजन देना चाहिए, आहार हमेशा उनको संतुलित देना चाहिए जो रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगा। और अन्य फार्म से जो खरीदकर पशु लाते हैं या अन्य जगह से कहीं से पशु खरीद कर लाते हैं, उनको सीधा अपने पशुओं के साथ, पुराने पशुओं के साथ मिक्स नहीं करना है, मिलाना नहीं है, उनको अलग से रखें, एक महीने तक उनकी निगरानी करें और जब एक महीना हो जाए उसके बाद उसको अपने अन्य पशुओं के साथ मिलाना चाहिए। तो ये विशेष ध्यान रखें और अपने पशुओं को सर्दी से, गर्मी से और प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाना चाहिए, जिससे पशुओं में रोग होने की संभावनाएं कम रहती है। तो इस प्रकार से इन बातों का ध्यान रख करके पशुपालक अपने पशुओं को बचा सकते हैं और अपनी आर्थिक नुकसान होने से बचा सकते हैं।
0: बहुत ही बढ़िया जानकारी दी सर।
2: सौ बात रही एक बात के भी बचाव ही उपचार है।
0: बिल्कुल,
2: आप बताओ डॉक्टर साहब के भी बचाव ही उपचार होया करे और इन बाबत साफ सफाई रे साथ साथ है टीकाकरण है वो जरूरी होया करे। तो टीकाकरण सारू महाराज का पशुपालक भाई है, उन्होंने किसी किसी जरूरी बात का ध्यान रखना चाहिए, इन बाबत भी आप जानकारी दो सा।
1: अभी मैंने बताया कि बचाव ही उपचार है, बचाव का मतलब यह है कि रोग आना ही नहीं चाहिए अपने फार्म पे। इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अपना समय पर जो शेड्यूल है उसके अनुसार पशुपालकों को अपने भेड़ बकरियों का टीकाकरण करवाना चाहिए। टीकाकरण करवाते समय विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आप ये पशुपालक शिकायत करते हैं कि मैंने टीका लगवाए थे लेकिन फिर भी ये बीमारियां आ गई हैं। तो सबसे पहले जब भी टीकाकरण करें हमेशा स्वस्थ पशुओं में करना चाहिए।
2: अच्छा,
1: दूसरा, टीकाकरण से पहले पशुओं को कृमिनाशक दवा अवश्य पिलानी चाहिए, जिससे जो टीके लगाते हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है।
2: अच्छा,
1: टीका अच्छी तरह से काम करेगा। तीसरा, टीकों का रख रखाव हमेशा ठंडे तापमान 2 से 8 डिग्री पर ही करना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर टीके को आपने गर्मी में रख दिया या बाहर रख दिया तो टीके खराब हो जाते हैं, वो काम ही नहीं करेंगे। और हमेशा उचित शीत श्रृंखला का पालन करना चाहिए, अर्थात टीकों को जब आप लगाएं और लगाने से पहले उनका अच्छी तरह से ठंडे तापमान पर रखना चाहिए, उसके बाद ही टीकों को लगाना चाहिए। और हमेशा पशुपालक को अपने जो टीके लगाते हैं उनका रिकॉर्ड रखना चाहिए कि मैंने ये टीका कब लगवाया था, दूसरा टीका मेरे को कब लगवाना है। ये जब याद रखेंगे तो ये जो बीमारियां मैंने बताई हैं वो आने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। और टीकाकरण भी आप जब करवाएंगे अगर इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो टीकाकरण भी फेल नहीं होगा, टीकाकरण भी काम करेगा और अपने पशुओं को आप बचा सकते हैं। टीका अगर समय पर नहीं लगवा पा रहे हैं फिर भी टीकों को लगवाना चाहिए, क्योंकि बीमारी आने की संभावना आजकल कभी भी हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि कुछ दो रोग मानसून में होते हैं, अगर आप मानसून में अप्रैल मई में नहीं लगवा पाए तो अगर जून में या जुलाई में लगवाना तो लगवा लेना चाहिए, क्योंकि टीकों जब भी लगाते हैं तो उसके 21 दिन के बाद में टीका काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमेशा टीकाकरण अगर आप थोड़ा समय इधर उधर भी हो जाता है तो करवाना चाहिए।
2: पहली बात तो आई है कि भाई समय से लगा होना चाहिए और जो नहीं लगा पावा तो भाई देखो सा 2-4 दिन ऊपर हो जाए तो चिंता की बात को नहीं, तुरंत लगा लेना चाहिए,
0: टीको लगवाना है,
2: जरूरी है।
0: बिल्कुल सा। और अब थाने एक अच्छी बात और बताऊं कि देखो 18 मई 2026 राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय आप 17वां स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम से मनायो और डॉक्टर साहब भी कार्यक्रम में शामिल आ।
1: हाँ हाँ, मैं भी इस प्रोग्राम का साक्षी बना हूँ और धूमधाम से हमारे विश्वविद्यालय ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है।
0: इन अवसर पर डॉक्टर सुमंत व्यास आप बहुत ही अच्छी अच्छी बातें

0: तय थी। अब थारो मन उसी के हूं भी सुनना चाहूं
1: हां बिल्कुल बताओ सर।
0: नहीं सर, तो आपने और अपर जिता भी श्रोता है, अपर पशुपालक भाई है, बियाने भी मैं बियाने जगह अंश है, वे सुनावना चाहूं तो आपसे सुनो सा मेरा अंश।
2: जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सोचा गया था तब वो अकल्पनीय लगता था। उससे पहले शायद एक या दो विश्वविद्यालय ही पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविश्वविद्यालय के नाम पर अलग से स्थापित हुए थे और बहुत मुश्किल था कृषि के पारंपरिक क्षेत्र से अपने आप को अलग स्थापित करना। इस तथ्य के बावजूद कि कृषि के समग्र जो जीडीपी में योगदान है उसमें सबसे अहम योगदान पशुपालन का होता था और इस पश्चिमी राजस्थान में पशुपालन का योगदान कृषि से भी ज्यादा होता था। मैं उन सभी को जिन्होंने प्रोफेसर गहलोत के नेतृत्व में संघर्ष किया, जिनमें प्रोफेसर टीके गहलोत, प्रोफेसर तंवर, प्रोफेसर कश्यप, प्रोफेसर मेहता, प्रोफेसर सिंह, प्रोफेसर राव, प्रोफेसर पुरोहित, ये सभी जो पीढ़ी थी इन्होंने उस वक्त जिस तरीके से काम किया तभी ये परिकल्पना साकार हो पाई। किसी भी अगर उच्च अधिकारी को अगर हम लेकर आए फार्म्स पे तो एक बड़े अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ एक बेसिक प्रोडक्टिविटी का काम हो रहा है। बहुत कुछ और करने की जरूरत है फार्म्स पे। हमारे कंट्रोलर साहब की टीम जो है बड़ी अच्छी रही और कुछ पैसा इस विकट स्थिति में भी हम लाने में कामयाब हुए हमारे फार्म्स को सुदृढ़ करने में, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में और बेहतर होगा। ये चीज़ हम हमेशा ध्यान रखें कि जो हमारा क्लाइंट है उसी के कारण ही हमें टीम्स ने मेहनत करी तो ICR का जो प्रोजेक्ट है वो भी वापस आया, रिवाइव हुआ। दूसरा प्रोजेक्ट भी जो बंद होने वाला था वापस आया प्रोजेक्ट। एक और डिसहार्टेंड टीम थी उनकी भी स्पिरिट कुछ बढ़ी है और एक नया प्रोजेक्ट फार्म मशीनरी का भी सबमिट किया है। उम्मीद है कि वॉलंटरी सेंटर आना चाहिए। कुछ और रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी हमने सबमिट किए हैं NLM में और टीम ने जयपुर में भी बड़ा प्रयास किया उसमें और आगे भी प्रयास जारी है। अगर वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी आते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का तो मैं नहीं कहता पर कंटिजेंसी में हमें काफ़ी फायदा हो जाएगा और कुछ अच्छे रिसर्च आउटकम हमारे आएंगे। इस विश्वविद्यालय की जो टीम है उसने जो LST पे सर्वे करके जो रिजल्ट दिया मेरे को भी लगता था कि ठीक है हम लोगों ने काम किया और भेज दिया और कर दिया, पर उसका इम्पैक्ट जब अब वहाँ से सुनने को मिलता है तो उसका इम्पैक्ट जो है ये हुआ है कि जो वाइड स्प्रेड उसकी जो परमिशन थी LSD वैक्सीन की उसके लिए वो स्टडी बहुत सहायक हुई है। मैं नहीं जानता कि वो क्रेडिट उस तरह का उस जो उसमें काफ़ी लंबी चौड़ी टीम थी जिसने उस कार्य को संपादित किया वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा एग्जैक्ट क्रेडिट, पर अघोषित रूप से मुझे बहुत से लोगों ने उसका क्रेडिट इस विश्वविद्यालय को दिया और उसी का नतीजा है कि इस साल राजस्थान सरकार ने 22 करोड़ रुपए की LSD वैक्सीन खरीदने की अनुशंसा जारी की है। ये एक विश्वविद्यालय को हमारी टीम को बहुत बड़ा क्रेडिट मेरी नज़रों में है। जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है बहुत से बच्चों को TOEFL GRE क्या होता है ये भी पता नहीं होता। कोशिश है मेरी प्रयास है कि आप लोगों में से भी लोग स्कॉलरशिप्स लेकर बाहर जाएं। क्लिनिक्स हमारी इस विश्वविद्यालय की शुरू से रीढ़ की हड्डी रही है। इस जो झंडा ने हमेशा हमारे विश्वविद्यालय को एक नई और अच्छी ऊंचाइयां प्रोफेसर रतन सिंह से लेकर आज तक हमेशा इस क्लिनिक का जो है बड़ा नाम रहा है। एक चीज जरूर साथ में रखें कि हसरतें ख्वाहिशें बहुत हों पर जरूरतें कम रखें। अगर आपको बिना AC के भी रहने दिया जाए तो आपको एक क्षण भी परेशानी ना महसूस हो। इस तरह की अगर जिंदगी अपन बना सकें तभी हम सही मायने में पशु चिकित्सक कहला सकेंगे। धन्यवाद।
1: वाह भाई अरखू भाई देखो सा सुमंत व्यास जी रा जका उद्बोधन सुना नी मैं इया लागे कि भाई देखो सा जन जन सु जरूरी बातें बता रिया था
0: बिल्कुल सर अबे देखो सा वक्त इशारो करण लाग गया है
1: और उन इशारे ने तो भाई देखो सा समझते थका समय री कदर सगला ने करनी चाहिए
0: करनी चाहिए तो मैं आपने बता दूं सा आज चौपाल रे मायने राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से पधार्या सहायक आचार्य डॉक्टर मनोहर सेन और आज आप बातचीत करी भेड़ और

0: आकाशवाणी जयपुर से अभी आप धीनेरी बाता कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। अब आप हिंदी में समाचार सुनेंगे जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा, ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के

0: शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। महाराष्ट्र में कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग ने दक्षिण कोरिया के शैक्षणिक संस्थानों के साथ आज 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के साथ महाराष्ट्र की साझेदारी से राज्य के युवाओं के लिए वैश्विक अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अब आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत। हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश का गाया। फिल्म का नाम है पूर्णिमा।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले और डैनी के स्वर में, काला सोना फिल्म से ही।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम माटी के स्वर। इसमें पहले आप सुनेंगे गौरी शंकर का गाए लोक भजन, और उसके बाद में आप सुनेंगे संतोष राव की गाई लोक रचना।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: आइए अब सुनते हैं संतोष राव की गाई ये लोक रचना।

0: गौरी शंकर और संतोष राव की गई लोक रचनाएं अभी आप माटी के स्वर के इस कार्यक्रम में सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 बजने को हैं। अब आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर के आमेर चैनल से रिले करेंगे।
1: वाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल से प्रदेश दौरे पर, राजस्थान को कई नई रेल सुविधाओं की सौगात देंगे। राज्य में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर वार्डों के पुनर्गठन और मतदाता सूची का काम पूरा हुआ। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का दौर जारी, लोगों के साथ साथ पशु पक्षी भी बेहाल। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए मनाए गए गोडावण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित और कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी का कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में चयन। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल से 2 दिन के प्रदेश दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और प्रदेश को नई रेल सुविधाओं की सौगात देंगे। रेल मंत्री कल सुबह जोधपुर पहुंचेंगे, जहां वे विभिन्न रेल सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: रेल मंत्री के इस दौरे की एक बड़ी सौगात जोधपुर दिल्ली वंदे भारत की क्षमता में होने वाला रिकॉर्ड बढ़ोतरी के रूप में मिलने वाली है। 22 मई से ये ट्रेन 20 कोच के साथ दौड़ेगी, जिससे इसकी क्षमता लगभग 3 गुना बढ़कर 1440 सीटें हो जाएगी। भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए मेंटेनेंस डिपो के फेज 2 और लगभग 400 करोड़ की लागत से नए मेगा कोचिंग टर्मिनल की स्थापना की घोषणा की जाएगी। समारोह में साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को जैसलमेर तक विस्तार किया जाएगा। ट्रेन के जैसलमेर तक विस्तार से पर्यटन नगरी को गुजरात से सीधी सुपरफास्ट ट्रेन सुविधा मिलेगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: जोधपुर से श्री वैष्णव जालौर जाएंगे, वहां वे भुज नई दिल्ली ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। ये रेलगाड़ी राज्य के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरेगी। इसके बाद उनका पाली जाने का कार्यक्रम है, जहां वे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे पुनर्विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। साथ ही वे लघु उद्योग भारती के नए भवन का लोकार्पण भी करेंगे। रेल मंत्री शनिवार को जयपुर में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके बाद वे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम के तहत डूंगरपुर की धम्बोला ग्राम पंचायत में ग्रामीणों से संवाद का कार्यक्रम है। इससे पहले उन्होंने बांसवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र जनों तक पहुंचाने के लिए समर्पित भाव से काम करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अवैध धर्मांतरण करवाने वाले तथा राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने नहरों और तालाबों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने और पानी का सदुपयोग करने का आह्वान किया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कुशलगढ़ के खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गिरीश भाभोर और बांसवाड़ा नगर परिषद के आयुक्त दुर्गेश सिंह रावल को तत्काल एपीओ करने के आदेश जारी किए। राज्य में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर वार्डों के पुनर्गठन और मतदाता सूची का काम पूरा कर लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आज झुंझुनू के नारनोद गांव में पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्री पटेल ने अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर ही राजनीतिक आरक्षण दिया जाएगा।
3: हमारी सरकार आने के बाद आयोग का गठन किया, आयोग अपनी कार्रवाई तीव्र गति से कर रही है और जो आयोग की रिपोर्ट आएगी सरकार चुनाव कराने को तैयार है। संवैधानिक बाध्यता के तहत जब तक ओबीसी वर्ग के संबंध में आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक चुनाव कराया जाना शायद चुनाव आयोग।
1: राज्य मानवाधिकार आयोग ने नागौर जिले में खनन श्रमिकों में सिलिकोसिस बीमारी और समुचित चिकित्सा सुविधाओं के अभाव पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जी आर मूलचंदानी ने नागौर के जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य खनन अभियंता को नोटिस जारी कर अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने अधिकारियों को सभी खनन क्षेत्रों का भौतिक निरीक्षण करने, श्रमिकों की सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने और गीली खनन प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा है। आयोग ने सिलिकोसिस रोगियों के इलाज के लिए हर महीने विशेष चिकित्सा शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने आज लोक भवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। राज्यपाल ने अधिकारियों से आम जनता के प्रति संवेदनशील होकर काम करने का आह्वान किया। श्री बागड़े ने जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता से लेने की बात कही, साथ ही गरीब तथा वंचित लोगों के कल्याण के लिए काम करने को कहा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का कहर जारी है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं से हाल बेहाल है। लगातार पड़ रही गर्मी से आम जीवन के साथ ही पशु पक्षी भी परेशान नजर आ रहे हैं। बाड़मेर में दिन भर धूल भरी आंधी चलने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। श्रीगंगानगर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से तेज गर्मी के मद्देनजर आमजन से विशेष एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में ज्यादातर स्थानों पर तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। 45.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। इस बीच विभाग ने कल से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना जताई है। इससे तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए राज्य सरकार की ओर से पहली बार आज गोडावण दिवस मनाया गया। जैसलमेर में आयोजित कार्यक्रम में वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वन विभाग और स्थानीय निवासियों की कोशिशों से इस विलुप्त प्राय पक्षी इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि इन साझा प्रयासों और गोडावण प्रजनन केंद्रों के माध्यम से इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
4: और जो मुझे जानकारी दी गई है, इस अपने नेचुरल सोर्स में लगभग 130 गोडावण पक्षी हमारे पास हैं और 87 गोडावण पक्षियों को हमने चूजे पैदा करके कृत्रिम तरीके से तैयार किए हैं। आने वाले समय में जो हमारा राजकीय पक्षी है गोडावण, उसके संरक्षण में वन विभाग मुस्तैदी से काम करेगा। गोडावण की संख्या में वृद्धि होगी और पर्यावरण के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका वन विभाग और हमारा गोडावण पक्षी और वन विभाग देने का।
1: वन मंत्री ने गोडावण प्रतिमाओं का अनावरण भी किया, साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम के बाद श्री शर्मा ने समस्थित गोडावण ब्रीडिंग सेंटर और डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र का दौरा कर गोडावण संरक्षण के लिए चल रहे प्रयासों का जायजा लिया। कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी का चयन आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में किया गया है। वे स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित होने वाले इन खेलों में 70 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अरुंधति कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाली राजस्थान की पहली महिला मुक्केबाज बन गई हैं। इससे पहले वे बॉक्सिंग वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके लिए अरुंधति को बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया संदेश में श्री शर्मा ने कहा कि उनकी ये उपलब्धि युवा शक्ति के लिए प्रेरणा है। राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ की ओर से दृष्टि बाधित शतरंज प्रतियोगिता कल से शुरू होगी। जयपुर स्थित कल्याण संघ परिसर में होने वाली इस प्रतियोगिता में वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्ग दो वर्गों में होगी। 3 दिन की स्पर्धा में लगभग 65 दृष्टि बाधित खिलाड़ी भाग लेंगे। जयपुर के बिचून औद्योगिक क्षेत्र में माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। श्री यादे माटी कला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने आज जयपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से माटी कलाकारों के लिए आधुनिक तकनीक के माध्यम से नए रोजगार के द्वार खुलेंगे। राज्य में माटी कला के सभी कलाकारों कामगारों के लिए शिविर लगाकर आर्टिजन कार्ड बनाए जाएंगे। श्री टाक ने बताया कि बजट घोषणा के तहत 5,000 बिजली से चलने वाले चाक और मिट्टी गूंधने की मशीनों का वितरण किया जाएगा। राज्य सरकार और गूगल इंडिया की ओर से आज जयपुर में बिल्ड विथ एआई कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 100 से अधिक स्टार्टअप संस्थापकों छात्रों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिन्हें गूगल के अत्याधुनिक एआई टूल्स का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के शासन सचिव डॉ. रवि कुमार सुरपुर ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं और स्टार्टअप्स को विश्व स्तरीय तकनीकी मंच उपलब्ध कराना है। उन्होंने सरकारी सेवाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं की आमजन तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एआई तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल से प्रदेश दौरे पर राजस्थान को नई रेल सुविधाओं की सौगात देंगे। राज्य में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर वार्डों के पुनर्गठन और मतदाता सूची का काम पूरा हुआ। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का दौर जारी, लोगों के साथ साथ पशु पक्षी भी बेहाल। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए मनाए गए गोडावण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित और कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी का कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में चयन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से दौसा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। जिले में राष्ट्रीय डिजिटल जनगणना प्रक्रिया के पहले चरण में मकानों का सूचीकरण किया जा रहा है। 1 मई से 15 मई तक नागरिकों ने ऑनलाइन स्वगणना की, वहीं 16 मई से जनगणना कर्मियों ने

0: पासों के निर्माण से दौसा शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैफिक दबाव कम होगा, साथ ही रेलवे फाटकों पर रोजाना लगने वाले जाम से भी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। शहर के सबसे व्यस्त मंडी फाटक, जड़ाव फाटक और छतरी वाली ढाणी फाटक पर अंडरपास निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा खोर्रा, निमाली, जोपाड़ा, कोलवा, मानोता, भजड़ा दुब्बी, दयालपुरा बस्सी, हंसमहल बस्सी और थानागाजी के टहला बाईपास रोड फाटक सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों को भी योजना में शामिल किया गया है। क्षेत्र में आरयूबी बनने से स्कूल कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों सहित आमजन को फायदा मिलेगा। लंबे समय से स्थानीय लोग रेलवे फाटकों पर जाम की समस्या से परेशान थे, जिसके कारण कई बार एम्बुलेंस और जरूरी सेवाएं भी प्रभावित होती थीं। रेलवे के इस फैसले को क्षेत्र के विकास और यातायात सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से जिले में भी ग्राम रथ अभियान चलाया गया। पिछले दिनों ये ग्राम रथ जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे। इनके जरिए किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही कला जत्थे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए भी जागरूकता की अलख जगाई गई। जिले की लालसोट कृषि उपज मंडी इन दिनों सौंफ की खुशबू से महक रही है। मंडी में सौंफ की आवक अपने पूरे परवान पर पहुंच चुकी है। इन दिनों लालसोट कृषि उपज मंडी में सौंफ की 3000 से अधिक बोरी की आवक बनी हुई है। इसके चलते पूरी मंडी में दिन भर जगह जगह सौंफ की ढेरियां लगी हुई दिखाई देती हैं और पूरा मंडी क्षेत्र सौंफ की खुशबू से महकता रहता है। लालसोट मंडी की सौंफ की खुशबू और क्वालिटी ने देश के साथ विदेशों तक में भी अपनी पहचान बना ली है और विदेशों से भी लगातार डिमांड होने के चलते मंडी का कारोबार काफी फल फूल रहा है। कुल मिलाकर ये मंडी सौंफ व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र बन चुकी है और अब इसका विस्तार अन्य बड़े व्यापारिक केंद्रों के समकक्ष माना जा रहा है, जिससे इसका महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है। हालांकि मौसम में पिछले दिनों उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जिले भर में धूल भरी आंधी चली, वहीं कुछ गांवों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई और ओले गिरे। कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई। हालांकि थोड़ी राहत के बाद उमस और तेज गर्मी का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। तेज गर्मी को देखते हुए लोगों को लू और तापघात से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। चिकित्सकों ने ठंडे पेय पदार्थों का सेवन अधिक करने की सलाह दी है। उन्होंने डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए सर ढककर ही बाहर निकलने और प्रचंड गर्मी में बच्चों, बुजुर्गों तथा गर्भवती महिलाओं से विशेष सावधानी बरतने को कहा है। भीषण गर्मी के कारण सड़कों और बाजारों में आवाजाही कम देखी जा रही है। दिन के समय पैदल राहगीर पेड़ों और टीन शीट के नीचे छाया तलाशते नजर आ रहे हैं। प्रचंड गर्मी के कारण विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से लोगों की सुविधा के लिए कई स्थानों पर प्याऊ भी लगाई गई है। पिछले दिनों जिले में विश्व पृथ्वी दिवस पर विभिन्न संस्थाओं, संगठन, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक समूहों द्वारा कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के अवसर पर जिले में अनेक स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रम रखे गए। वहीं पुलिस प्रशासन ने संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए निरंतर निगरानी भी रखी। इसके साथ ही दौसा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव काल प्रदेश रा दौरा सारू पधारेला। राज्य ने नुवी रेला री सौगात देवेला। प्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव जुड़ियो वार्ड पुनर्गठन और वोटर लिस्टानो काम पूरो फियो। राज्य में जबरदस्त तावड़ो लोगों सागर जिनावर और परिंदाई बेहाल। राज्य पक्षी गोडावण ने बचावण सारू आज गोडावण दिवस मनाई चियो। और कोटारी मुक्केबाज अरुंधति चौधरी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 सारू भारत री टीम में चुनी जी। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रो प्रदेश रा दो दिन रा दौरा सारू काल पधारण रो कार्यक्रम है। वह काल समारोह जोधपुर में न्यारी न्यारी रेलगाड़ियां री शुरुआत करेला। पेश है माना खबर नवी श्री रपट।
2: रेल मंत्री के इस दौरे की एक बड़ी सौगात जोधपुर दिल्ली वंदे

0: भारत की क्षमता में होने वाला रिकॉर्ड बढ़ोतरी के रूप में मिलने वाली है। 22 मई से ये ट्रेन 20 कोच के साथ दौड़ेगी, जिससे इसकी क्षमता लगभग 3 गुना बढ़कर 1440 सीटें हो जाएगी। भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए मेंटेनेंस डिपो के फेज 2 और लगभग 400 करोड़ की लागत से नए मेगा कोचिंग टर्मिनल की स्थापना की घोषणा की जाएगी। समारोह में साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को जैसलमेर तक विस्तार किया जाएगा। ट्रेन के जैसलमेर तक विस्तार से पर्यटन नगरी को गुजरात से सीधी सुपरफास्ट ट्रेन सुविधा मिलेगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: जोधपुर रेल मंत्री रो जालौर जावन रो कार्यक्रम है, वह भुज नई दिल्ली रेलगाड़ी ने रवाना करेला। आ गाड़ी प्रदेश का कई स्टेशनों वहती निकलेला। ई पाछा श्री वैष्णव पाली माए अमृत भारत स्टेशन योजना रा तेज चाल रहा कामा रो जायजो लेवेला। रेल मंत्री रो थावर ने जयपुर माए राख्या जावन वाला रोजगार मेला माए केंद्र सरकार रा न्यारा न्यारा दफ्तरा माए नुवी नौकरी लाग्या कर्मचारियां ने नौकरी लागण रा कागजात देवन रो कार्यक्रम है। ई पाछे व इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमी कंडक्टर उद्योग जुड़िया नुमाइंदा सा गई बातचीत करेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रो ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम रा तहत आज डूंगरपुर जिला री धम्बोला ग्राम पंचायत माए गांव वाला सागे बातचीत रो कार्यक्रम है। इनु पहली वे बांसवाड़ा माए अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। श्री शर्मा गैर कानूनी तरीकाओं धर्म बदली करावन वाला और सियासी हलचल माए शामिल हुए वाला सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई रा हुक्म दीना। मुख्यमंत्री नहरा और तलावां री साफ सफाई सागे माही नदी रा पानी री हर एक बूंद काम लेवन सारू कहो। वे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान माथे जोर देता थका पानी रा हलका माए खुद रे पान उबो वेवन न सब ऊंचो बतायो। मुख्यमंत्री कुशलगढ़ रा खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गिरीश भाभोर और बांसवाड़ा नगर परिषद रा कमिश्नर दुर्गेश सिंह रावल ने तुरंत एपीओ करण रा हुकम ही दीना। राज्य में स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थावां रा चुनाव सारू वार्डा रा पुनर्गठन और वोटर लिस्ट तैयार करण रो काम पूरो फेंक्यो है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल आज झुंझुनू जिला रा नारनोद गांव माए खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका आ जानकारी दीनी। वे कहो कि चुनाव री तैयारी पूरी कर ली रीची है। श्री पटेल अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण रा बारा माए कहो कि सुप्रीम कोर्ट रा हुकम रा मुजब ट्रिपल टेस्ट रपट रा आधारों राजनीतिक आरक्षण दियो जावेला।
2: हमारी सरकार ने अनेक बार आयोग का गठन किया है, आयोग अपनी कार्रवाई तीव्र गति से कर रही है और जो आयोग की रिपोर्ट आएगी सरकार चुनाव कराने को तैयार है। संवैधानिक बाध्यता के तहत जब तक ओबीसी वर्ग के संबंध में आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक चुनाव कराया जाना शायद चुनाव आयोग।
1: राज्य मानवाधिकार आयोग नागौर जिला माए खुदाई रा काम जुड़िया मजूरा माए सिलिकोसिस री बीमारी अरवारा इलाज सारू जरूरी सुविधा री कमी माथे खुद संज्ञान लीनो है। आयोग रा अध्यक्ष जस्टिस जी आर मूलचंदानी नागौर रा कलेक्टर और चीफ माइनिंग इंजीनियर ने नोटिस जारी कर गैर कानूनी तरीकाओं खुदाई रा खिलाफ कड़ी कार्रवाई रा हुक्म दीना। आयोग अहलकारा ने सगला खनन हलका री भौतिक जांच करण और मजूरा ने हिफाजत जुड़िया साजो सामान मुहैया कराउण तय करण और सिलिकोसिस रा मरीजा रा इलाज सारू हर महीना खास शिविर लगावण बाबत ही कहो। भारतीय प्रशासनिक सेवा रा साल 2025 बैच रा सिखावण ले रिया अहलकार आज जयपुर रा लोक भवन माए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मुलाकात कीनी। ई मौके राज्यपाल आ अहलकाराओं जनतारा प्रति संवेदनशील भैर काम करण सारू कहो। श्री बागड़े जनताओं जुड़िया मुद्दा माथे खास ध्यान देवन री राय दीनी। राज्यपाल केंद्र और राज्य सरकार का नियम चलाई जावन वाली विकास री योजनावां ने असरदार तरीकाओं लागू करण माथे ही जोर दीनो। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश माए पड़ रहा जबरदस्त तावड़ा सागे उन्नो बायरो बाजनो मिनखा जिनावरा और परिंदा रा हाल बेहाल है। बाड़मेर माए आखा दिन आंधी चालनो परेशानी रो सामो करनो पड़ियो। राज्य माए लारला 24 घंटा माए सब बत्तो तापमान श्री गंगानगर माए 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज करीचियो। वठे तेज गर्मी ने ध्यान रखता था।

0: चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग री ओरों जनताओं एहतियात राखण री अपील करी ची है। फलौदी माए 44.8 और अलवर और पिलानी माए 44 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान नापी चियो। मौसम विभाग रे मुजब आवता एक सप्ताह ताई प्रदेश रा घनखर हलका माए मौसम साफ रहवेला, हालांकि काल राज्य रा उत्तराद आतुणी हलका माए 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तारों आंधी चालन रा आसार है। वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा कहो है कि जनता री भेड़ी कोशिशां और गोडावण प्रजनन केंद्रां रे जरिए राज्य पक्षी गोडावण री तादाद माए लगातार बढ़ोतरी फै रही है। वे आज जैसलमेर माए राखी जिया राज्य रा पहला गोडावण दिवस कार्यक्रम माए बोल रहा है।
1: और जो मुझे जानकारी दी गई है, इस अपने नेचुरल सोर्स में लगभग 130 गोडावन पक्षी हमारे पास हैं और 87 गोडावन पक्षियों को हमने चूजे पैदा करके कृत्रिम तरीके से तैयार किए हैं। आने वाले समय में जो हमारा राजकीय पक्षी है गोडावन, उसके संरक्षण में वन विभाग मुस्तैदी से काम करेगा। गोडावन की संख्या में वृद्धि होगी और पर्यावरण के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका वन विभाग और हमारा गोडावन पक्षी और वन विभाग देने का।
0: ई मौके वन मंत्री गोडावण री मूरत रो अनावरण कीनो और पर्यावरण न बचावण रे बारा माए स्कूलां माए राखी जी होणा जीतण वाला रो मान कीनो। ई पाछे वे समरा गोडावण ब्रीडिंग सेंटर और डेजर्ट नेशनल पार्क रा सुदासरी हलका रो दौरो कीनो। श्री शर्मा वठे अहलकाराओं गोडावण न बचावण सारू करी जा रही कोशिशां री जानकारी लीनी। स्कॉटलैंड रा ग्लासगो माए 23 जुलाई और 2 अगस्त ताई होवण वाला कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 माए शिरकत करण सारू भारत रा खिलाड़ियां रा नाम रो ऐलान करत्यो चियो है। आमाए कोटारी मुक्केबाज अरुंधति चौधरी शामिल है। वा 70 किलोग्राम भार वर्ग माए भारत री ओरों रिंग माए उतरेला। अरुंधति राष्ट्रमंडल खेला माए शामिल होवण वाली राजस्थान री पहली महिला मुक्केबाज वेला। वे बॉक्सिंग विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप माई तमगा जीतर देश और प्रदेश रो नाम रोशन कीनो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अरुंधति ने सोशल मीडिया संदेश रे जरिए बधाई देता थका कहो कि हमारी आ उपलब्धि नौजवाना सारू सीख देवन वाली है। अरुंधति फिलहाल भारतीय खेल प्राधिकरण साई रा पटियाला केंद्र माए सिखावन ले रही है। राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ री ओरों दृष्टि बाधित शतरंज होड़ काल सरू फैला। जयपुर रा कल्याण संघ परिसर माए फेवन वाली 3 दिन री ई होड़ माए दृष्टि बाधित 65 खिलाड़ी शामिल फैला। आ होड़ वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्ग माए फैला। जयपुर रा बिचून औद्योगिक हलका माए माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनायो जावेला। श्री यादे माटी कला बोर्ड रा अध्यक्ष प्रहलाद राय टांक आज जयपुर माए खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका आ जानकारी दीनी। वे कहो कि इनु माटी कलाकारा सारू नुवी तकनीक रे जरिए नुआ काम धंधा रा मौका बनेला। श्री टांक कहो कि राज्य माए माटी कला रा सगला कलाकारा और कामगारा रा आर्टिजन कार्ड बनावण सारू बोर्ड री ओरू शिविर लगाया जावेला। वे बतायो कि प्रदेश माए बिजली चालन वाला 5000 चाक और मिट्टी गूंदवारी मशीना दी जावेला। इस आगे मौजूदा साल माए माटी कलारा 100 प्रशिक्षक तैयार करावण तय करी चियो है। राज्य सरकार और गूगल इंडिया री ओरों आज जयपुर माए बिल्ड विद एआई कार्यशाला राखी जी। इन माए नुआ एआई टूल्स री सिखावण दीरी जी। ई मौके सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग रा शासन सचिव डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर सरकारी सेवावां और जनता रा भलारी योजनावां री पात्र लोगां ताई बेहतर पहुंच तय करण सारू एआई तकनीक रा इस्तेमाल माथे जोर दीनो। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में आए उम्मीद नेटवर्क देश ने सौंपियो। ई मौके वे कहो कि जनता सारू स्वास्थ्य और जुड़ी सेवावां सस्ती और आसान बनावण माथे केंद्र सरकार रो खास ध्यान है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहो कि उम्मीद पहल हाल ताई 3 लाख लोगों ने फायदो मिल चुकी है। आ पीढ़ी दर पीढ़ी वेवन वाली बीमारियां आगे करण सारू जैव प्रौद्योगिकी विभाग री राष्ट्रीय पहल है। इन तहत आम बीमारियां रा इलाज राय रोकथाम

0: अर जनता रा स्वास्थ्य रे बारा माई जाग जगावण माथे खास ध्यान दियो जा रियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 31 मई ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 29 मई तई राय दे सको हो। नंबर ओजू सुन ली राव सा 1800117800। आखिर माय खास समाचार एक कर फिर सुन ली राव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव काल प्रदेश रा दौरा सारू पधारेला। राज्य ने नुवी रेला री सौगात देवेला। प्रदेश माय स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव जुड़ियो वार्ड पुनर्गठन और वोटर लिस्टा रो काम पूरो भयो। राज्य माय जबरदस्त तावड़ो लोगा सागे जिनावर और परिंदाई बेहाल। राज्य पक्षी गोडावण ने बचावण सारू आज गोडावण दिवस मनाईचियो। और कोटारी मुक्केबाज अरुंधति चौधरी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 सारू भारत री टीम माय चुनी ची। इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजा हिंदी माय प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: एफएम 103.7 मेगाहर्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। अब किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
2: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर।
0: किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनन वाला सगड़ा भया भया और नैना टावरा ने आपके मनोज भाई का घना हेतु घना कोडू राम राम। देखो भया कार्यक्रम में चौपाल माता वहाँ जने राम राम तो कर ही हाँ, पर आप अगर खेत खलिहान संबंधी बात हैं, कृषि संबंधी बात हैं, मौसम संबंधी बात हैं, वे भी क्रिया करा। पर आज अपन ठा है वार है गुरुवार, आज अपन गेट है किसान वाणी कार्यक्रम में चौपाल माता हूँ फोन के माते किसान बाया बाया को आप खेती संबंधी कोई समस्या है तो भी को समाधान आप स्टूडियो में आज पधारिया है डॉक्टर सोनाली मीणा जी का सहायक आचार्य है कृषि महाविद्यालय नागौर में। तो डॉक्टर सोनाली जी नमस्कार,
4: नमस्कार सर,
3: चौपाल में हार्दिक अभिनंदन स्वागत। तो बयां आपा सोनाली जी आपा की जी की खेती बाड़ी संबंधी कोई समस्या हुए तो पूछना है, परंतु विशेष रूप में अपन मौसम के बारे में भी ध्यान रखना है। बदलतो मौसम है, गर्मी खूब है, ये गर्मी के मायने आपा को परिवार के सदस्य को साथ साथ दाव डांडा को ध्यान रखाला, बे निरोगा रहे वाला आपा का शरीर सोर हो रहे वाला तो आपा खेती बाड़ी को काम आसानी को कर पावाला, क्योंकि आपा को मेहनत को काम है। तो ये चीज माते ध्यान रख लो। आज आपा को जी को मुख्य विषय है चौपालों में जी का सोनाली जी बातचीत करा।

0: पोषक तत्व प्रबंधन और उर्वरक नवाचार। तो सोनाली जी, पोषक तत्व क्या होते हैं?
1: सब पोषक तत्व जो हैं पौधों के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक तत्व हैं, जैसे कि जो प्राथमिक तत्व होते हैं अपने कार्बन हो गया और हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जो कि हमें हवा से भी मिल जाते हैं, हवा से, मिट्टी से। इसके अलावा सब प्राथमिक और द्वितीयक कुल मिला के 17 तत्व होते हैं, ये 17 आवश्यक तत्व, जिसमें अपने NPK वगैरह आता है, जो कि अपन कंपोस्ट की सहायता से या फर्टिलाइजर की सहायता से पौधों को पहुँचाते हैं और मिट्टी के थ्रू जो है पौधे इसको अवशोषित करते हैं। इससे क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन है पौधे के जो है विकास के लिए, बढ़वार के लिए, पत्तियों के लिए, मतलब जो इसकी वानस्पतिक वृद्धि है इसके लिए जरूरी होता है। और फास्फोरस जो है, जो पौधों के अंदर जो क्रोमोसोम या जीन बन रहे होते हैं जिससे वो अपनी विशेषताएं प्रकट करता है।
0: हाँ मैडम जी, देखो एक फोन आ रही है कोई भैया को, आप अभी बात ना रोका। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हो और क्या नाम है?
2: हम रोल से बोल रहे हैं।
0: कहाँ से बोल रहे हो?
2: रोल से।
0: ठीक है, तो क्या प्रश्न है आपका मैडम जी से, पूछो।
2: हमारा नींबू का पौधा है, वो बढ़ नहीं रहा है।
0: तो मैडम जी, नींबू की बढ़वार के लिए इनको बताओ।
1: हाँ जी, कितने साल का पौधा है साहब?
2: 2 साल का।
1: 2 साल का पौधा है। तो पहली बात तो नींबू जो है आपने कहाँ से, बीज से लगाया था या नर्सरी से पौधा लेके लगाया था?
2: पौधा लेके लगाया था।
1: पौधा लेके लगाया था, तो आप कुछ नहीं उसमें जो है धीरे धीरे देखो वृद्धि होगी। कई किस्में ऐसी होती हैं, किस्मों का पता है कौन सी किस्म है उसकी?
2: ये तो नहीं,
1: नहीं पता ना, तो कोई बात नहीं। आप जो है अपने पौधे के चारों तरफ अच्छे से थाला बनाओ, थाला बना के उसमें जो अपने ये वर्मी कंपोस्ट होती है, गोबर की अच्छे से सड़ी हुई खाद उसमें मिला के बराबर पानी देते रहो। धीरे धीरे उसकी बढ़वार अच्छी होगी, उसको पोषक तत्व जब मिलेंगे तो उसकी बढ़वार अच्छी होगी और बढ़वार के बाद में जो है वो फल देना आपको चालू कर देगा।
0: तो मैडम जी के कहने का मतलब था कि जो नींबू का पौधा था उसके चारों तरफ गड्ढा खोद के उसमें गोबर की खाद डालें तो वृद्धि हो जाएगी। हाँ तो मैडम जी, अपनी बातचीत चल रही थी कि पोषक तत्व से कौन कौन से होते हैं, इससे आप प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
1: बिल्कुल, जैसे कि अपन बात कर रहे थे नाइट्रोजन का, मैंने आपको बताया कि पौधे की बढ़वार के लिए ये बहुत जरूरी होता है। फास्फोरस की बात हुई तो फास्फोरस जो पौधे जो हैं सूर्य की गर्मी प्राप्त करके प्रकाश संश्लेषण करते हैं और बीज और फल बनाते हैं, उसके लिए फास्फोरस जो है बहुत जरूरी है। पोटेशियम जो रहा अपना, वो जो है पौधे के अंदर जो एंजाइमों की क्रियाशीलता होती है उसकी जो दैनिक दिनचर्या गतिविधियां चलती हैं, क्योंकि पौधा भी एक जीव है, उसके लिए बहुत आवश्यक होता है। इसके अलावा अन्य तत्व हैं जो पौधे को जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता देते हैं, उसकी बढ़वार बढ़ाते हैं, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये अलग अलग तरीके से सहायता करते हैं। मैग्नीशियम जैसे प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, तो जैसे हमें जो है विटामिंस, मल्टीविटामिंस की और इनकी जरूरत होती है खाना दाना पानी की, वैसे ही पौधा भी एक जीव है, उसको भी ये आवश्यक 17 तत्व हैं जिनकी जरूरत अपने जीवन में पड़ती है।
0: बिल्कुल सही है। तो मैडम जी कहना मतलब है 17 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से है नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है और खनिज लवण है, जिप्सम है, जिंक है, बहुत से प्रकार के। जैसे अपन लोगों को दवाई लेने से ठीक होते हैं मानव शरीर, वैसे ही मिट्टी में भी सब कुछ होता है। तो इसका प्रबंधन कैसे किया जाए?
1: प्रबंधन देखो साहब ऐसा है कि
0: तो देखो एक फोन आ रही है। हेलो, कौन
3: सा
0: गाय नाम, कैसा गाँव?
3: गोरेरा
0: गाँव बाबूलाल जी, आपकी कहीं समस्या है, पूछो सा।
3: अरे मारे नींबू लागे थोड़ थोड़ और झड़ जाओ, ये कहीं है
0: बताओ सा मैडम जी।
1: राम राम जी।
3: राम राम।
1: नींबू के लिए देखो अभी ही पहला कॉल आया था जब मैंने बताया कि सबसे पहले तो आप उसका उपाय ये कीजिए कि उसमें जो है थाला बना के और गोबर की सड़ी हुई खाद मिलाइए, या वर्मी कंपोस्ट जो अपने आता है कैंचुए की खाद, वो कैंचुआ की खाद मिलाइए और पानी प्रॉपर दीजिए, क्योंकि अभी क्या है गर्मी भी ज्यादा पड़ रही है, तो गर्मी की वजह से भी अगर अपन उसमें प्रॉपर पानी वगैरह नहीं देंगे और खाद वगैरह नहीं देंगे तो पत्तियां पीली पड़ के झड़ेंगी ही सही। हाँ तो वो फल भी झड़ेगा और नींबू भी झड़ेगा। और अब इसमें क्या होता है, नींबू वर्गीय जो फसलें होती है, अनार हो गया, अमरूद हो गया, इनमें बहार सिस्टम चलता है सब। बहार सिस्टम में क्या होता है कि जो ये मृग बहार वाला मॉनसून वाला जो सीजन होता है, इस टाइम पे आप पत्तियां और फल दोनों ही झड़ने दोगे तो आपको सर्दियों का जो फ्रूटिंग मिलेगी, फल मिलेगा, उसका प्रोडक्शन और वो अच्छा मिलेगा, तो वो अच्छी चीज है, उसके लिए टेंशन मत कीजिए।

0: ठीक है, तो आपकी समस्या का समाधान हो गया ला। जिंक है, सल्फर है, आयरन है, बोरान है, सूक्ष्म पोषक तत्व तो भी है। तो मैडम जी, ए को काई पत्तो क्या लगावा अपन के मिट्टी के मायने कितनी कमी है कितनी नहीं है, एक बार अपन गाड़ी करना चाहिए।
1: देखो सरकार की भी सॉइल हेल्थ कार्ड योजना
0: देखो एक फोन और आ रही है। राम राम सा,
2: राम साह, राम साह,
0: कौन बोलो सा, किसा गाँव बोलो।
2: योगेश गहलोत बोलो, नागौर में रह जाऊं।
0: अच्छा सा, योगेश जी बोलो, आपकी काई प्रश्न है।
2: मारा प्रश्न है कि मैं मार खेत के माते मेड के माते खाए लगाऊं, किसी पौधा लगाऊं जिसको फल पौधा भी हो जावे और छायादार भी हो जावे, कोई बैंगो इनकम भी हो जावे,
0: ठीक बात है, बताओ सर।
1: हाँ जी साहब, आप जो है अपने खेत की मेड़ के लिए, देखो यहाँ पे जो यहाँ की नागौर की शुष्क परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से आप बील के पेड़ लगा सकते हो, लसोड़ा लगा सकते हो, अपने बेर लगा सकते हो, ये आपको छाया भी देंगे साथ ही साथ फल देके आपकी इनकम को भी इंक्रीज करेंगे। और जो
2: देखो
1: तेज आंधियां चलती हैं, आंधियों से जो हमें फसलों में भी नुकसान होता है वो भी कम होगा और पानी की जरूरत भी इन पौधों को कम पड़ती है, तो ये कुल मिला के आपके लिए हर तरह से फायदेमंद रहेगा।
2: एक बार मैडम जी बैठे ना, कदे कदे खेजड़ी आवे जिसके में सांगरिया ज्यादा आवे, बा का नाम के आवे कद मिल जाना।
1: देखो खेजड़ी में अगर जैसे सांगरिया, एक तो अपने देसी खेजड़ी जो है वो लगी रही है यहाँ पे, वैसे थार शोभा
2: हाँ
1: एक अच्छी वैरायटी है जो आपको बीकानेर में एक CIH संस्थान है वहां से आपको इजीली मिल जाएगी।
2: नागौर में नहीं मिलते क्या वो?
1: नागौर में साहब हमारे ही जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर है वहां पे अभी तो नहीं, लेकिन हाँ सर्दियों तक जो है उसका हो सकता है मिलना चालू हो जाए, तो वो आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो अभी हाल फिलहाल तो नहीं
0: तो योगेश जी, आप थार सोबा खेचड़ी लगो, आ कहीं 6 फीट की भी हुए और 3 साल के
2: जी।
0: मायने सांगरिया देवनी शुरू कर दे, ताको इनकम को सोर्स भी बढ़ जाए और ध्यान रखने की भी घनी जरूरत कौन पड़े और ज्यादा पानी की जरूरत भी कौन पड़े। तो डॉक्टर साहब सोनाली जी जी को बताए और थार सोबा को विकल्प बहुत अच्छा विकल्प है। तो मैडम जी, अपनी बातचीत चल रही है पोषक तत्व प्रबंधन, तो आप मिट्टी की ओर की कहीं जांच करावा क्या करावा ताकि अपन ठाम बढ़ जाए। एक फोन और आ रही है मैडम जी। हेलो,
3: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हो?
3: हाँ नमस्कार जी,
0: हाँ नमस्कार, राम राम, कौन बोल रहे हो आप, क्या नाम है?
3: भेरू राम चौधरी बोल रहा हूँ नागौर से। ये
0: हाँ भेरू राम जी, आपका क्या सवाल है?
3: कृषि विज्ञान कहाँ है केंद्र?
0: अच्छा, अभी वो ही बता देंगे, आपका प्रश्न क्या है?
3: पशुओं में दुग्ध उत्पादन कैसे बढ़ाएं?
0: चलो
1: राम राम भैरू राम जी, पहला जो आपका सवाल है कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है अपना अथियासन में है सर, मुंडवा से आगे जब अपन अजमेर रोड की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ अपना कृषि विज्ञान केंद्र बना हुआ है। और रही दुग्ध उत्पादन की बात, तो इसके लिए जो है आप पशु जो है
0: चिकित्सक,
1: विशेषज्ञ होते हैं तो वो आपको इस बारे में ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, मैं पौधों के रोगों के बारे में आपको बताऊंगी।
0: हाँ। तो मैडम जी, वापस अपन उसी चर्चा पे आते हैं,
1: हाँ
0: पोषक तत्व प्रबंधन, मिट्टी की जांच करा के अपन कैसे प्रबंधन करें।
1: हाँ तो देखो जैसे है सरकार की भी योजना है सॉइल हेल्थ कार्ड योजना है, और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स वगैरह पे भी जो है मिट्टी की जांच होती है, मोबाइल वैन भी चलती है, उसके थ्रू सबसे पहले हम अपने मिट्टी की जांच कराएं, मिट्टी का नमूना लें, खेत में जो है आप 3, 4, 5 रेंडम जगह जो है डिसाइड कर लें, वहां से जो है आप मुट्ठी मुट्ठी भर नमूना लें।
0: हाँ मैडम जी, 1 मिनट और आपको बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि भाइयों की जो साथी है। राम राम सा,
2: राम राम सा,
0: कौन बोलो सा, किसा गाँव बोलो सा।
2: जुजंडाऊ कालू राम बोलूं सा
0: कालू राम जी, जुजंडाऊ,
2: जी।
0: तो कहीं सवाल है आपको मैडम जी पूछना?
2: मारो और सवाल है कि मूंग और गमार के मायने DAP बीज नो जरूरी है कि नहीं है?
0: बताओ सा।
1: मूंग और ग्वार में DAP, देखो मूंग में जो है अपने और इसमें ग्वार में जब अपन बुवाई करते हैं तो उससे पहले ही अपन लोग इसमें नाइट्रोजन की जो आधी डोज देते हैं और फास्फोरस की बाद में देते हैं, तो इस
2: अच्छा,
1: हिसाब से तो देखो DAP जरूरी है कि फर्टिलाइजर जो है देना, लेकिन उसकी डोज कितनी देनी है इसके लिए आप पहले अपनी मृदा का परीक्षण कराइए, उसके हिसाब से उसकी जो है मात्रा डिसाइड कीजिए, बाकी जो अपने POP वगैरह रिलीज करती है गवर्नमेंट, अपने राजस्थान गवर्नमेंट, उसके अकॉर्डिंग जो है आप
2: अच्छा
1: अपनी डोज डिसाइड कर सकते हैं।
0: तो
2: तो
0: ठीक है।
2: DAP अभी तो मिला है, मिल ही नहीं रहा है फिलहाल?
1: ये तो साहब आपको बाहर ही पता करना पड़ेगा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।
2: नहीं मिल रहा है।
1: हाँ
0: ठीक है सर, तो पोषक तत्व वास्ते अभी मैडम जी आपने बताया था खेत में 5-7 जगह से मिट्टी इकट्ठी कर लें।
1: हाँ, 5-7 जगह से मिट्टी इकट्ठी कर लें, उसके अलग अलग जो है ढेर बना लें, उसको फिर जो है उनमें से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेके, हर नमूने में से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेके एक जो है मिक्स जो है नमूना बना लें, और उसको ले जाके जो है फिर आप पास के ही जो लेबोरेटरी है उसमें जमा कीजिए। जैसे हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज में भी मृदा का परीक्षण किया जाता है, तो आप वहां पे भी वो लेके आ सकते हैं। उसके हिसाब से आपको पता लग जाए कि आपके मृदा में कितने कौन से पोषक तत्व हैं और किन की जरूरत है। इससे क्या होगा कि हम अपने पैसे की भी बचत कर सकते हैं और हमारे पौधों की बढ़वार और ये भी अच्छी होगी, क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिल रहे होंगे, तो आपको अल्टीमेटली प्रोडक्शन भी अच्छा ही प्राप्त होगा।
0: बिल्कुल बढ़िया फूट रही बात है मैडम जी। तो पोषक तत्व तो वास्ते एक फोन आ रही है भाइयों बात करा। राम राम सा,
4: राम राम सा।
0: काय नाम है सर, कैसा गाँव बोलो सा।
4: बोलो
0: हेलो,
4: बोलो। गोविंद राम मैया,
0: गोविंद राम जी मैया, कैसा गाँव बोलो सा।
4: सुड़ियो
0: आपको बोलो, काय प्रश्न है।
4: सर यहाँ केरुंद लगेड़ा है,
0: हाँ
4: दिन फूल लाग रहा, फल कौन मने पाता।
0: ठीक है।
1: नमस्कार जी, आपके
4: हाँ
1: करोंदे
4: नमस्कार
1: में,
4: दीदी।
1: हाँ करोंदे में फूल लग के फल नहीं बन रहा है।
4: हाँ फल नहीं बन रहा मैं दीदी।
1: देखो वही सिमिलर बात है ये। वैसे तो ये क्या है कि जंगली वो है फल देने वाला पौधा, इसमें ज्यादा अपने रख रखाव की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप ही जो है अच्छा प्रोडक्शन देता है। लेकिन फिर भी आप
4: हाँ
1: इसके लिए जो है वही आप थाला बनाओ पौधे के आसपास, थाला बना के उसमें जो है गोबर की खाद, अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाओ, और साथ ही
4: हाँ
1: साथ उसको पानी टाइम से दो, तो उसमें फल जो
4: ऐसा
1: है जरूर आपके लगने लग जाएंगे साहब।
4: है।
1: हाँ
0: ठीक है, तो आपके केरंदा को समस्या के समाधान हो गया। और मैडम जी आप पोषक तत्व तो प्रबंधन बता रिया, तो एक मायने मिट्टी की जांच करा पर आपा की मिट्टी की काई स्थिति है, वो सोयल कार्ड के माध्यम से आपा की खेत खलियान का नंबर है, किसान का नंबर है, आपा खसरा नंबर है, सब जोड़ा रहे और मिट्टी के हेतु लेर जावेर भी की जांच कर फिर आप बताओ। कई बार किसान भाई पूछा करे मिट्टी जांच करना तो भी की फीस भी लगेगी आपके बेटा।
1: हाँ बिल्कुल साहब, अगर आप सरकारी संस्थान जो अपने सॉइल हेल्थ कार्ड योजना है उसके अंतर्गत अगर आप मिट्टी की जांच कराते हैं, तो मात्र 5 रुपए में जो है वो आपका सॉइल सैंपल जो है जांच करके आपको रिजल्ट्स देते हैं।
0: देखो मैडम जी बहुत बढ़िया, एक फोन आ रही है भाई को। राम राम सा,
4: हेलो।
0: हाँ राम राम सा,
4: राम राम सा, राम राम सा।
0: कौन बोलो सर, कैसा गाँव बोलो सा।
4: मैं अनोप सिंह बोल रहा हूँ, सड़ा आई हूँ।
0: अच्छा सा अनोप सिंह जी, अड़ा हूँ, कहीं प्रश्न आपको पूछो मैडम जी।
4: कम एक नीम लगा हो जाने आगे 3 साल हो गया, दे हाथ एक फुट वीडियो बड़े कौन कहीं करूँ।
0: नीम नीम लगे हो।
4: हाँ सर जाने आगे
0: बताओ सा।
1: नमस्कार जी,
4: नमस्कार साहब।
1: नीम तो देखो बहुत ही हार्डी प्लांट है, शुष्क परिस्थितियों में अपने आप ग्रो कर जाता है, ऐसा सच उसके लिए कोई आपको रख रखाव की और ये जरूरत नहीं है। मैं दोबारा वही बात रिपीट करूंगी, जिस भी पौधे की बढ़वार रुक रही है वो पोषक तत्व की
4: अच्छा
1: कमी या किसी पानी की कमी उस वजह से हो सकती है, तो आप वही उसमें थाला बनाओ और प्रॉपर उसमें खाद वगैरह डालो, जिससे क्या होगा पौधे को पोषक तत्व मिलेंगे और उसकी वृद्धि, वानस्पतिक वृद्धि जो है वो बढ़वार में आएगी।
4: अच्छा खाद किस लेवाए माए, गोबर की खाद दूं।
1: हाँ जी गोबर की खाद, उसमें ज्यादा आपको कुछ पैसा लगाने की कोई जरूरत नहीं, अपने घर पे गाय भैंस होती है, थोड़ी गोबर की खाद,
4: अच्छा
1: थोड़े दिन तक उसको छायादार उसमें सड़ा के मिट्टी मिला के और वैसे रखा, भुरभुरी वो हो जाएगी, उसको तब आप मिलाओ और मिट्टी में मिला के पानी डालो, सब सही हो
0: तो
1: जाना
0: बिल्कुल सर, आपके नीम के पौधों है जी को अगर गोबर की खाद
4: है।
0: डालो और थोड़ा पानी दो और नीचे की थोड़ी जमीन ने सारे सारे खोद पूरी साफ कर दो तो भी की जल्दी बढ़वार शुरू हो जाए, तो ये को थोड़ा अपन ने ध्यान देना है। अब मैडम जी आप बातचीत करता पहले पोषक तत्व की करी, प्रबंधन की करी, अब उर्वरक का चीज है एम का नवा चार लवा।
1: उर्वरक, उर्वरक देखो साहब
4: हेलो
1: यही,
0: हेलो।
4: हेलो
0: हाँ जी,
4: नमस्कार जी।
0: हाँ नमस्कार जी, बोलो क्या सवाल है आपका।
4: हमारा सवाल है, हमारे कैटस का पौधा लगाया हुआ है, कैटस।
0: किसका? कैटस
4: कैटस।
0: अच्छा चेटक का, ठीक है।
1: कैक्टस।
4: कैटस है
0: कैक्टस,
4: मतलब
0: कैक्टस यूकलिप्टस जी।
4: बढ़वार नहीं करे।
0: ठीक है बताओ जी।
1: कैक्टस का पौधा किस चीज के लिए लगाया हुआ है साहब आपने?
4: हमने लगाया बकरी के चारा।
1: जी साहब दोबारा बोलेंगे, आवाज कट गई।
4: कैटस है, बकरी के चारे वास्ते लगाया।
1: बकरी के चारे वास्ते लगाया है सब, तो आप जो है उसमें प्रॉपर उसमें पानी वगैरह और ये दीजिए, खाद डालिए, तो वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको बढ़ नहीं रहा है इसकी। तो ऐसी कोई आपके वहां पे क्या पानी का ड्रेनेज और ये सही है, पानी
4: पानी
1: की
4: सही है,
1: निकासी की व्यवस्था सही है?
4: खाद भी दी, गोबर की और
1: हाँ,
4: पानी भी दिया, वो क्या
1: आपकी
4: पड़ रहा है?
1: जमीन हो सकता है नीचे से पथरीली जमीन हो, इस वजह से पौधा ज्यादा बढ़वार नहीं ले पा रहा हो।
4: हो सकता है नीचे कंकरा है।
1: हाँ, तो कंकर या पथरीली जमीन हो तो ये वजह हो सकती है एक के पौधे की बढ़वार जो है सही नहीं हो पा रही हो। तो इसके लिए तो वो है, देखो जमीन का तो वो है, आपको वहां से पौधा कहीं और लगाना पड़ेगा, इसका तो कोई इलाज है नहीं।
0: ठीक
4: कोई
0: है,
4: इलाज नहीं
0: तो
1: है। हाँ
0: भाई साहब आपके जो समस्या थी उनका समाधान मैडम जी ने बताया। मैडम जी, उर्वरक देने से फसलों में क्या क्या फायदे होते हैं?
1: देखो, उर्वरक इन्हीं पोषक तत्वों को किसी भी करियर मटेरियल के साथ, मिश्रित मटेरियल के साथ मिलाकर जो है उर्वरक के रूप में हम जो है पौधों को देते हैं। वही इससे क्या होगा, पौधे की बढ़वार वगैरह अच्छी होती है, वृद्धि अच्छी होती है, विकास अच्छा होता है, वो प्रकाश संश्लेषण और अपनी दैनिक गतिविधियां अच्छी करेगा, जिससे कि उसमें फूल और फल जो है वो अच्छे बनेंगे, अच्छी क्वालिटी के बनेंगे और उपज भी हमें ज्यादा मिलेगी। साथ
0: बिल्कुल।
1: ही साथ क्या है, कई प्रकार के रोग होते हैं।
0: देखो एक प्रश्न पूछा, भाई को फोन आ रही है। हेलो,
4: अच्छा,
0: राम राम सा। कौन बोलो सर, किसा गाँव बोलो सा?
4: बोलो खेजड़ी बताई वो कौन सी 6 फीट वाली
0: अच्छा, खेजरी बताओ सा, पाची
1: सब
0: थार।
1: थार शोभा वैरायटी है, थार शोभा जो कि लमसम 6 फीट के हाइट की बढ़ती है, और उससे जो है आपको
4: थार शोभा,
1: थार शोभा,
0: थार राजस्थान ना, पर थार के माने मिट्टी ना, थार थार शोभा खेजरी।
1: ये अपने बीकानेर सीआईएच से निकली हुई वैरायटी है, तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है बीकानेर में, तो वहां से आपको बीचवाल रोड पे वहां से आपको मिल जाएगी सर।
0: ठीक है, तो आपने खेजरी को उपचार मिल गया, किसी खरीदनी है काई लगानी है, कम मेहनत कमाई ने 3 साल बाद अपना आय की प्राप्ति हो जाए। तो मैडम जी, उर्वरक देने से विशेष रूप से क्या क्या फायदे हैं और कौन कौन से उर्वरक देने चाहिए?
1: बिल्कुल सब, देखो उर्वरक पौधे की जरूरत के अकॉर्डिंग होता है, जैसे एनपीके है ये तो प्राथमिक तत्व ही है। इसके अलावा जैसे हम बात करें कि कैल्शियम की जरूरत होती है, कैल्शियम जो है पौधों की वृद्धि और विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है, जैसे अमरूद का अगर बाग है तो उसमें कैल्शियम आपको देना है, अनार का बाग आपने लगाया हुआ है तो उसमें आपको बोरोन की जो है जरूर देना होगा उर्वरक के रूप में, क्योंकि उससे क्या होगा, फल जो बनने के बाद में, पकने के बाद में फटेगा नहीं, फटेगा नहीं तो उसकी क्वालिटी खराब नहीं होगी। तो इस तरह से बहुत सारे तत्व हैं, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है अपने ये पत्तीदार जो सब्जियां हैं इनमें बढ़वार अच्छी करता है, जिससे कि मार्केट वैल्यू आपको अच्छी मिलेगी। तो इस तरह से कई पोषक तत्व हैं जो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपको पौधे को देंगे, जिससे क्या होगा, रोग निरोधी अगर पौधा रहेगा तो वो अच्छी उपज आपको देगा और अच्छी कमाई करके आपको जो है रिटर्न्स आपको उपलब्ध कराएगा।
0: बिल्कुल बढ़िया बात है। मैडम जी कह रहा है कि उर्वरक देवण सु आपा की फसला की पैदावार बढ़ी। एक फोन आ रही है, भाइयों बातचीत करना। राम राम साहब।
3: हेलो, राम राम साहब। सर जी,
0: कौन बोलो साहब?
3: ओम प्रकाश भाकल बोलो, जनाना गांव।
0: जनाना ओम प्रकाश जी, बोलो साहब, आपको कहीं प्रश्न है?
3: प्रश्न ये है कि पिछली साल गंवार की खेती थी, क्या इस बार भी गंवार की खेती लगा सकता हूँ दूसरी बार? और
0: बताओ मैडम जी।
1: नमस्कार ओम प्रकाश जी।
3: नमस्कार।
1: पिछली बार जो आपने ग्वार किया वो उसका ठीक था, मतलब कोई रोग कीट ऐसी तो समस्या उसमें नहीं आई थी?
3: नहीं, बहुत अच्छा था, तीन
1: और
3: क्विंटल हुआ था पर बीघे का।
1: हाँ, तो अगर ऐसा है आप पहले अपने मिट्टी की जांच कराइए, मिट्टी में क्या पोषक तत्व हैं क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग भी फसल हम अपनी डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी करनी चाहिए। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि पिछली बार आपकी बड़ी अच्छी उपज हुई थी, तो डेफिनेटली आप जो है ग्वार लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज होती है कि मिट्टी को भी क्या है, फसल विविधीकरण करते हैं ना, तो उसमें पोषक तत्व, आज जैसे कोई कुपोषित आदमी है तो उसको आयरन की जरूरत ज्यादा होगी, वहीं पे कोई के
3: जी
1: जोड़ों
3: जी
1: का दर्द है तो उसको कैल्शियम की जरूरत ज्यादा होगी। हम
3: बिल्कुल सही बात है।
1: हाँ, हम आयरन ही आयरन लेते जाएंगे तो आयरन का जो हमारे पास भंडार है वो खत्म हो जाएगा।
3: जी,
1: तो उस तरीके,
3: बीच में जीरा की फसल लगाई थी मैंने सर्दी के मौसम में,
1: हाँ
3: फिर
1: हाँ
3: गुवार लगाना था।
1: हाँ तो आप बिल्कुल ग्वार लगा सकते हैं सब।
3: और गंवार के बाद अगली फसल कौन सी लगाएं ताकि अच्छी हो सर्दी के मौसम में?
1: सर्दी के मौसम में ग्वार के बाद में सब, यहाँ नागौर के उसमें,
3: हाँ जनाना गांव है
0: जनना,
3: नागौर से
0: जनना, जनना।
3: 35 किलोमीटर।
1: हाँ, तो सर सर्दी के टाइम पे आप मूंग वगैरह और ये चीजें ले सक मूंग तो सॉरी अभी लेंगे आप, उस
0: गेहूं
1: गेहूं वगैरह यहाँ ले सकते हैं। हाँ
0: तो क्यों और
5: वापस सरसों लगाएं तो फायदा होता क्या गवार की फसल?
1: सरसों देखो सर, आपके पास अगर यहाँ पे पानी की अच्छी सुविधा है तो आप लगा सकते हैं गेहूँ और
5: अच्छी सुविधा है।
1: बिल्कुल सर, तो आप गेहूँ और सरसों बिल्कुल लगा सकते हैं।
0: ठीक है, अच्छी बात है। फसल चक्र भी अपनाना एक बढ़िया बात हुआ आपने मैडम जी, अच्छा सवाल करे हो। पर अभी आपकी सर्दी और दोनों फसलें लेते हो ना, तो इसलिए काफी हद तक आपके फसल चक्र का काम हो जाता है, तो आप गंवारी वापस लगा सकते हैं। और मैडम जी आजकल आप आधुनिक खेती घना करा, तो कहीं आखिर आधुनिक खेती की चीजें?
1: आधुनिक खेती में देखो वैज्ञानिक तरीके से खेती करना होता है, जिसमें कि हम कम से कम पैसा लगा के और ज्यादा से ज्यादा हमारी बचत प्राप्त कर लें। ये मेन कंसेप्ट है कि जो मोदी जी का भी अभियान है कि हम किसानों की आय जो है दुगनी करेंगे, ये उस पे बेस्ड है, जिसके लिए कई तरीके की वैज्ञानिक जो है फार्म मशीनरीज को डेवलप कर रहे हैं। जैसे जीरो टिलेज मशीन होती है, उसमें क्या होता है कि आपको खेत में हल चलाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके की मशीन आती है कि आप डायरेक्ट जो है हल के थ्रू, उस मशीन के थ्रू बुवाई करो और मिट्टी भी जो है साथ ही साथ पलटती जाएगी और जो खड़ी फसल है वो उसी में रह जाएगी, तो उससे क्या होगा मल्चिंग का
0: मैडम जी एक बार बीच में रखूं, एक फोन आ रही है। हेलो, राम राम सा, कौन बोलो सा?
6: कैलाश राम मोंडवा से, मारवाड़।
0: हाँ सर, कहा तिलोक राम जी, कहा नाम बोले?
6: कैलाश राम।
0: हाँ कैलाश राम जी, बोलो हुक्म करो।
6: मैं पिछली बार मूंग था उसमें मूंग लगा सका?
1: हाँ नमस्कार कैलाश राम जी, मूंग।
6: नमस्कार।
1: हाँ जी, आपने पिछली बार मूंग लगाया था?
6: जी।
1: अच्छा, फसल सही हुई थी? कोई उसमें रोग का कोई प्रकोप या ऐसी स्थिति तो नहीं थी?
6: नहीं नहीं, बिल्कुल रोग नहीं था।
1: हाँ, इसके बीच में आपने और कोई फसल भी ली है?
6: हाँ लगाई ना चने की।
1: बिल्कुल, तो साहब आप मूंग जरूर लगा सकते हैं, दोनों ही आपने जो है फसलें बढ़िया लगाई हैं। चना लगाया है तो नाइट्रोजन तो वैसे भी बढ़ी गया है मिट्टी में, क्योंकि चने से क्या है जड़ों में राइजोबियम जीवाणु बढ़ता है जो नाइट्रोजन की जो है वृद्धि करता है जमीन में, तो आप इस बार मूंग ले सकते हैं साहब।
0: तो ठीक है सोनाली जी, डॉक्टर सोनाली जी अपने कार्यक्रम का जो मुख्य फोन इन कार्यक्रम का जो बातें हैं वो अपन यही रोकते हैं। और पिछले सप्ताह आप अगर प्रश्न करी जो चौपाल हूँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार आज तक कितनी किस्त जारी कर चुके हैं, तो पड़ोतर है 22 किस्त जारी हो चुकी है। लगता आती आज को सवाल है कि फसलों की वृद्धि के लिए किसी एक पोषक तत्व का नाम बताओ। अब आराबाजी की बातचीत करी मेरे सब पोषक तत्व आए रहा, तो बातचीत ने अपन गड़ी का जीवा तो किसान वाले के तेवड़ो टाइम उरिये पूरा पूरा पड़ भी रूं पहले था ने एक बार बाजार भाव की बात भी कर ला। बाजार भाव के मायने आज मूंग बिकिया 5,000 लगा 8,000, तिल काला 8,000 लगा 9,000, सफेद तिल 9,000 10,000, ज्वार की बोली लगी 3,000 4,600, गवार बिकियो 5,000 5,650, तारा मीरो बिकियो 4,900 5,000, और जीरा की बोली लगी 14,000 20,000, दाना मेथी बिकी 5,000 5,800, सौंफ की बोली लगी 7,000 16,000, और ये सब गोल बिकी 11,000 14,200, असाड़िया की बोली लगी 5,000 6,100, सिंधी सुहा बिकी 6,000 लगा 7,100। तो यह तो आज की बोली का भाव है। और आज का कार्यक्रम का प्रस्तुतकरण वाला प्रस्तुतकर्ता अधिकार संजय दत्त जी, और तकनीकी सहयोग रियो जितेंद्र कुमार जी, और इसके साथ ही घड़ी का देखा तो अपन तेवड़ो टाइम अठे वे पूरा करा। राम राम मने और डॉक्टर सोनाली जी ने दिलो सिख। राम राम।
1: राम राम सर।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: इस कार्य
1: किसान वाणी कार्यक्रम अभी किसान भाई सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम के 7:30 बजे हैं। अब आप NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का एपिसोड नंबर 1299 सुनेंगे।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
0: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
2: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
0: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग NCERT सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
2: उमंग NCERT के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
0: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
2: जी,
0: अगला संदेश हमें मिला है
2: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश, कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग,
0: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
2: NCERT के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
2: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में, और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
2: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
2: जी,
0: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
2: जी,
0: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
2: जी,
0: तो शुरू करें?
2: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
0: जी
2: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
2: जी,
0: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
2: जी हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
0: जी, शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
2: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
0: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
2: श्रोताओ, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
0: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: जी,
0: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
2: जी,
0: अद्भुत बात ये है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
2: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरिंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
0: श्रोताओं, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊँचे नहीं होते।
2: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
0: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओ, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं।
2: जी।
0: कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
2: इसीलिए शोलावनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
0: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
2: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं, और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृ वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं, लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: मातृवृक्ष किसे कहते हैं।
0: 8800-440-559 यानी हमारे IVRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
2: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये

0: कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है।
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया, चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की चीं चीं की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन

0: चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है, लो सुनो।

0: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
1: हाँ सुनाती हूँ दीपू। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
0: दादी माँ एक हिरन।
1: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
0: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
1: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
2: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
1: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
0: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
1: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
0: हरी हरी वो घास था खाता।
1: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
0: अरे ये क्या, ये तो

0: भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरण जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा? क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
1: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
0: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
2: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ, दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना। क्या हुआ?
1: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
1: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
1: शाबाश, छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
2: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ, दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
1: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
0: खरगोश, हिरन और मोर।
1: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
1: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
0: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
2: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते, और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
3: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
4: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी। फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
3: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
4: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
3: हाँ। अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़। इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
4: बिल्कुल सही कहा अटकू।
5: इसे काट।
6: भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
4: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल।
2: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
7: रुको, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
3: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
4: हाँ अटकू, चल आगे चलते हैं।
2: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
4: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
3: अरे वाह क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
2: वो उसे काटने लगे।
6: काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
3: अच्छा ठीक है,
4: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
2: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
7: ना, क्या मिलेगा काट कर मुझे? अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ न होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें?
4: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
2: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।

0: लाड कुमट को।
1: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
2: पेड़ हमारे
3: दोस्त हैं।
2: जीवन में हरियाली लाओ,
3: पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ।
4: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार, नमस्कार। उमंग।

एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का अभी आप 1290वां भाग सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: दोस्तों हम लेकर आए हैं आपके पसंदीदा गानों को हेलो फरमाइश के कुछ सुनहरे पलों के साथ। जी हाँ, आप और हम हैं चिरमी चैनल के साथ। दोस्तों किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि महत्व इंसान का नहीं उसके अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है तो कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। दोस्तों अब आपको इंतजार होगा आपको अपने फरमाइशी गानों का, तो देखते हैं कौन है हमारे आज के हेलो फरमाइश के पहले कॉलर। हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर, राम राम सा।
0: हाँ राम राम सा, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: शिवलाल बोल रहा हूँ सा,
0: शिवलाल जी बात कर रहे हैं। सर कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: कुमारवाड़ा से है।
0: कुम्हारवाड़ा नागौर से ही बात कर रहे हैं।
1: हाँ सा,
0: शिवलाल जी रेडियो कब सुनते हैं आप?
1: मैं तो फोन ऐप बैंड चला रहा हूँ सा।
0: जी, हेलो फरमाइश कैसा लगता है आपको?
1: बढ़िया लाग रही है सा।
0: शिवलाल जी चिरमी चैनल के कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं?
1: सगड़े सुनो सा, समाचार ही सुनो, और आमने बोर बंधन ना लवे सुनो, भजन नहीं आवे जगह पे सुनो, सगड़े सुनो सा।
0: शिवलाल जी आज कौन सा गीत सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप?
1: संतोषी माँ, आंका बांका मत पूछो, कांका जय संतोषी माँ,
0: जी
1: अपने
0: बहुत
1: संतोषी माँ।
0: हम सुनवा रहे
1: आता
0: हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो वर्माइस, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: हाँ सर, मैं आप नीमे सरता निजामुद्दीन दिल्ली बात कर रहा हूँ, कुचेरा से। हाँ
0: निजामुद्दीन जी, सर क्या करते हैं आप?
1: सर, अभी खेती बाड़ी का कार्य चल रहा है, कपास की बोई चल रही है, खेतों
0: जी
1: में अंदर हूँ, लू बहुत चल रही है।
0: गर्मी बहुत है अभी। निजामुद्दीन जी, गर्मी से बचने के क्या उपाय हैं बताएंगे आप?
1: हाँ सर, उपाय तो वैसे है कि एक तो ये मफलर बांध के रखना पड़ता है और हाथ पैर सावधानी रखनी चाहिए, हाथ
0: जी
1: पैर को ढक के रखना चाहिए, मुंह बांध के रखना चाहिए और ठंडा पानी पीना चाहिए बार बार।
0: सही बात है। निजामुद्दीन जी, चिरमी चैनल के कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको?
1: अरे बीर चैनल कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, मिश्री जैसे मीठे।
0: जी, कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: हाँ सर, विशेषकर तो हेलो फरमाइश है, हेलो गौरबंदर किसान वाणी,
0: हेलो फरमाइश कैसा लगता है आपको?
1: हेलो फरमाइश बहुत बढ़िया लगता है सर। मैं नाम ले लूँ 4-5 दोस्तों का?
0: जी बताइए सर।
1: हाँ सर, एक आर्यकला से है मेरे मेरे दोस्त, वो ठीक एक है रामदेव खोकर, फरीद खोकर, और रूण से मेरे भाई अयुब अली।
0: बताइए क्या सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप?
1: हाँ सर, एक वो गाना नहीं आज, वो फिरकी वाली तू कल फिर आना।
0: जी, मोहम्मद रफी की आवाज है। हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार जी। सर,
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: मैं शौकीन अली बोल रहा हूँ, गांव रूण से मैं आपका नियमित होता हूँ।
0: जी सर, आपसे पहले भी हमारी बात हो रखी है।
1: हाँ जी
0: जी शौकीन अली जी, क्या करते हैं आप?
1: सर, मैं तो आऊँ और बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जिसको कभी से जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ, घूमे कर रहा हूँ बच्चों के
0: जी
1: लिए।
0: जी जी पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ तक की है सर?
1: सर, मैंने तो बहुत पढ़ी लिखी थी
0: जी शौकीन अली जी, रेडियो कब सुनते हैं आप?
1: सर, ये आकाशवाणी शुरुआत नहीं, 99 से अभी तक सुन रहा हूँ। मेरे पास अभी तक रेडियो अभी तक मौजूद है मेरे पास में।
0: जी कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: लागू का तो डेली सुनता हूँ,
0: जी
1: हेलो फरमाइश है, हेलो गोरबंद है, विविध भारती है। सर,
0: हेलो फरमाइश, कैसा लगता है आपको?
1: इसकी तो मैं तारीफ करूँ जितनी कम है।
0: जी जी सर बताइए, क्या सुनेंगे इस कार्यक्रम?
1: सर, वो फिल्म मनी, एक फूल दो माली,
0: जी
1: उसे चांद को या सूरा सूरज
0: जी
1: गाना नहीं।
0: ठीक है सर, हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: मेरा नाम सर मोहन सिंह है, गांव है अड़गुड़। मेरा
0: जी मोहन सिंह जी, आपका गांव नागौर से कितना दूर है?
1: नागौर से है 32 किलोमीटर।
0: रेडियो साफ सुनाई देता है आपको?
1: बिल्कुल देता सर।
0: मोहन सिंह जी, रेडियो कैसे सुनते हैं आप, मोबाइल से या फिर रेडियो लगा रखा है आपने?
1: नहीं, मेरे पास तो पुराना रेडियो है, रेडियो सुनता हूँ, मोबाइल से मुझे आता ही नहीं है।
0: जी कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: हेलो फरमाइश सर, काका का सुनते हैं, कृषि विज्ञान सुनते हैं, हेलो फरमाइश भी सुनता हूँ मैं।
0: हेलो फरमाइश, कैसा लगता है आपको?
1: नहीं अच्छा लगता है।
0: मोहन सिंह जी, अड़वड़ का मौसम कैसा है, गर्मी कैसी है गांव में आपके?
1: मैं तो साहब बाहर भी निकलता हूँ, मेरी एज भी थोड़ा ज्यादा है,
0: जी
1: सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ, इसलिए मैं ज्यादा बाहर नहीं निकलता
0: गर्मी से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, आप आपकी कोई सलाह
1: हूँ।
0: है?
1: हमारी सलाह यही है, हम तो हल्का भोजन करते हैं, छाछ राबड़ी का उपयोग ज्यादा करते हैं, यही है अभी गर्मी का बचाव। छाछ
0: सही,
1: राबड़ी गांव के अंदर बैठे हैं, ठंडा पेय जल रही है, नहीं खाते पीते हैं, छाछ राबड़ी का उपयोग ज्यादा करते हैं।
0: चलिए मोहन सिंह जी बताइए क्या सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप?
1: आज सुना दो साहब भरोसा फिल्म की मुलाकात।
0: ठीक है सर, हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ हेलो फरमाइश सर, नमस्कार
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: जी। सर मैं इकबाल खान सिंधल बोल रहा हूँ, नागौर अजमेर गैस सिलो मोइलर। सर
0: जी सर, क्या करते हैं आप?
1: पहले तो मैं कमठा काम करता था, अभी ये ट्रांसफार्म का काम करता हूँ, हेल्पर का।
0: काम काज अच्छा चल रहा है आपका?
1: हाँ काम चल रहा है सर, बहुत अच्छा चल रहा है।
0: अभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती काम करने में?
1: सर ऐसा है कि गर्मी को बेचारे बाहर करने वाले, समझा काम करने वाले, उनको दिक्कत ज्यादा है। बाकी
0: जी
1: हमारा तो अंदर काम है का, जो पंखे वगैरह लगे हुए हैं।
0: इक
1: बाकी बहुत से लोगों बाहर बाहर काम करें उनके तक।
0: इकबाल जी, फिर रेडियो कब सुनते हैं आप?
1: सर वैसे तो मोबाइल है मेरे पास में और घर पे रेडियो है। सर
0: कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: कार्यक्रम तो आलो फरमाई तो सुनते ही है, बाकी गोरबन है और पणियारी है, ये अच्छे लगते हैं।
0: सभी कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: जी सर, गाना
0: इकबाल भाई बताइए, आज कौन सा गीत सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप?
1: है खलनायक का,
0: जी
1: मैं तो चल रही पालकी में बैठ के ससुराल गया, खलनायक
0: जी जी बहुत ही प्यारा
1: का।
0: गीत है, हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ हेलो फरमाइश। मैं
0: हाँ
1: आरजी फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ सर।
0: जी, आपको गाना सुनवाएंगे, पहले बताइए कौन बात कर रहे हैं आप।
1: मैं अनवर हुसैन बोल रहा हूँ, बी आर मिर्जा कॉलेज सागर से। मैंने 8 बार एमए किया सर।
0: क्या बात है सर, 8 बार एमए किया आपने।
1: हाँ, और एक कोटि की इज्जत नहीं है सर यहाँ।
0: सर सर सर सर क्या काम करते हैं सर आप।
1: मैं चपरासी हूँ, कच्चे में 8 साल हो गए।
0: रेडियो सुनने का वक्त मिल जाता है आपको।
1: बिल्कुल मिलता है सर।
0: कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप।
1: युवानी के प्रोग्राम सब सुनता हूँ, दोपहर गाने सब सुनता हूँ
0: सभी
1: और
0: कार्यक्रम सुनते हैं
1: काम करता रहता हूँ।
0: जी। हेलो फरमाइश, कैसा लगता है।
1: बहुत अच्छा लगता है सर,
0: बहुत बढ़िया
1: जितनी
0: लगता है
1: तारीफ की जाए कम है सर।
0: जी। अनवर भाई, आज कौन सा गीत सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप।
1: आरजू आरजू फिल्म आरजू
0: कौन सा गाना।
1: आरजू अजी रूठ के कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा मुझे पाइएगा।
0: बहुत ही प्यारा गीत है, हम
1: लता
0: सुनवा रहे हैं
1: मंगेशकर की आवाज है।
0: जी, हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर,
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: मैं पंचीराम शर्मा बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर जिला डोडा तहसील ठाकुर से। आपके साथ मेरा सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। कश्मीर से बात कर रहे हैं आप?
1: जी जी बिल्कुल सर,
0: बहुत ही सुंदर जगह से बात कर रहे हैं सर। मौसम कैसा है कश्मीर का अभी?
1: अभी सर बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और 5 मिनट पहले हल्की बल्की बारिश भी हो गई।
0: जी जी शर्मा जी, क्या करते हैं आप?
1: सर हमारा तो खेती बाड़ी का काम है, जैसे राजमा मक्कियां वगैरह, हम ये आज की उनकी बुआई चल रही है।
0: शर्मा जी, आप इतनी दूर से बात कर रहे हैं, फिर हमारा चिरमी चैनल कैसे सुनते हैं आप?
1: सर ये आजकल बहुत आसान हो चला है, क्योंकि मोबाइल ऐप के माध्यम से हम हर एक चैनल सुन सकते हैं। तो बहुत अच्छे लगते हैं और आपके केंद्र से हमें बहुत सारी ज्ञान वर्ग बातें मिलती है, जानकारियां प्राप्त होती है।
0: जी बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बताइए क्या सुनेंगे इस कार्यक्रम में आप?
1: सर आज मैं देशभक्ति का सुनूंगा, ये देश है वीर जवानों का फिल्म का नाम है नया दौर।
0: ठीक है सर, हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

तो दोस्तों, ये था हमारा आज का हेलो फरमाइश। आप चाहें तो आप भी बन सकते हैं हमारे हेलो फरमाइश के इन यादगार पलों के साथी। दोस्तों, हमारे हेलो फरमाइश की रिकॉर्डिंग की जाती है हर गुरुवार दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। साथ में इसका प्रसारण भी इसी दिन यानी गुरुवार को रात्रि 8 बजे से और शनिवार को रात्रि 8 बजे से किया जाता है। दोस्तों, हमारे आज के हेलो फरमाइश में आज हमारे साथ है तकनीकी सहयोग दिया जितेंद्र कुमार ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अशोक कुमार गोयल। दोस्तों, हमारे उन श्रोताओं से निवेदन है जिन्होंने आज हमें कॉल किया, कृपया वो हमें 2 महीने के बाद कॉल करें।

0: सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे समाचार संध्या।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
3: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
1: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।

0: अमेरिका एंड इंडिया।
1: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
0: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
2: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
5: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2-3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन होजमार्क कजल्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने

0: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं चंद गजलें। फनकार है तलत अजीज।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

0: प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।
1: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल तलत अजीत के ही फन से।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप तलत अजीज की गाई चंद गजलें सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, रात्रि के 9:15 बजे हैं। अब आप विविध भारती मुंबई से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

फिल्म वक्त से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। रवि का संगीत था और साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए।

जैसे कि आप जानते हैं, आदित्य चोपड़ा जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा के सुपुत्र हैं। उनकी प्रतिभा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उनकी शख्सियत तीन आयामों वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि वे एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, दूसरी बात ये कि वे एक बहुत अच्छे लेखक हैं, और तीसरी बात वे एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम रोशनी डालेंगे आदित्य चोपड़ा की शख्सियत के इन तीनों पहलुओं पर।

आदित्य चोपड़ा होश संभालने के बाद अपने पिता को असिस्ट करते रहे, यानी उनके सहायक रहे। जाहिर है यश चोपड़ा के बेटे होने के नाते फिल्म संसार में ही उन्होंने अपनी आंखें खोली।

लेकिन युवा पीढ़ी का होने के कारण उनका अपना एक विजन था और वे अपनी तरह की फिल्में बनाना चाहते थे। इसीलिए जब उन्होंने कई सालों पहले फिल्म संसार में कदम रखा तो एक बड़ी ही अनूठी फिल्म बनाई जिसका नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

फिल्म वीर जारा आदित्य चोपड़ा ने ही लिखी थी। और इसे निर्देशित किया उनके पिता यश चोपड़ा ने।

0: आदित्य चोपड़ा की कुशल लेखनी इस फिल्म में झलक झलक पड़ी थी।
1: एक दिन जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेर की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं।
0: जिस तरह से इस फिल्म में नाटकीय परिस्थितियां दिखाई गई थीं और ये दर्शाया

गया था कि प्यार सरहदों का मोहताज नहीं होता, न ही उम्र का मोहताज होता है। प्यार सर्वकालिक होता है, सर्वयुगीन होता है। फिल्म वीर ज़ारा की एक खासियत और थी कि इस फिल्म में जाने माने संगीतकार मदन मोहन की धुनों को पुनर्जीवित किया गया था, यानी वो धुनें जो मदन मोहन बना गए थे और उनके खजाने में पड़ी थीं, उनके बेटे संजीव कोहली ने दोबारा से तैयार की और उनके जरिए आए ये नाम।

0: आदित्य चोपड़ा ने अपने प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स को कॉर्पोरेटाइज किया है, यानी उसके ढांचे में परिवर्तन किया है और अब सिर्फ आदित्य चोपड़ा या उनके पिता यश चोपड़ा ही इस बैनर के तले फिल्में नहीं बनाते।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं।
0: बल्कि इस बैनर में नई प्रतिभाओं को भी मौका दिया जाता है।
2: Are you ready? Sit down. Let me tell you a little story about two cool cats. Yeah, Bunty or Bubbly. Coming in at an angle that they better than the rest. When you're looking in their hearts, they're gonna pass the test.
0: ऐसी ही एक प्रतिभा थे निर्देशक संजय गढ़वी।

0: जिन्हें मौका दिया गया। फिल्म थी
1: मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी।

0: उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने पहचाना कुणाल कोहली की प्रतिभा को और आई फिल्म हम तुम। आदित्य चोपड़ा ने जाने माने फिल्मकार मुजफ्फर अली के बेटे शाद अली सहगल को भी मौका दिया।
1: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

और उनकी दूसरी फिल्म बंटी और बबली पेशकश थी यश चोपड़ा फिल्म्स की। निर्माता थे आदित्य चोपड़ा। ये फिल्म भी बड़ी कामयाब रही।

हमने संजय गढ़वी की पहली फिल्म मेरे यार की शादी है का जिक्र किया, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म का जिक्र किए बिना आदित्य चोपड़ा पर बनाया गया ये कार्यक्रम अधूरा होगा। ये फिल्म है धूम।

आज के जमाने में मोटर गाड़ियों वाली और टेक्नो फिल्म रफ्तार भरी फिल्में लाने का श्रेय जाता है आदित्य चोपड़ा को फिल्म धूम के जरिए। ये एक अलग ही जॉनर, अलग ही माहौल की फिल्म थी, अलग ही पीढ़ी की फिल्म थी, चाहे इसका संगीत हो, चाहे इसकी कहानी हो।

साल 2011 में उनके दो बड़े प्रोडक्शंस आए, एक थी लेडीज वर्सेस रिक बहल।

साल 2010 में एक साथ तीन बड़ी फिल्में यशराज फिल्म्स ने रिलीज की, जिनके प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा। एक थी परमीत सेठी की फिल्म बदमाश कंपनी, प्रदीप सरकार की फिल्म लफंगे परिंदे और मनीष शर्मा की फिल्म बैंड बाजा बारात।

आदित्य चोपड़ा यशराज फिल्म्स की बागडोर संभाल रहे हैं और ये प्रोडक्शन एक के बाद एक कई फिल्मों का निर्माण कर रहा है। सलमान खान ने यशराज फिल्म्स के साथ अपनी पहली फिल्म की। कबीर खान निर्देशित एक

आज यशराज फिल्म्स की कमान आदित्य चोपड़ा संभाल रहे हैं। साल 2013 के आखिरी दिनों में आदित्य चोपड़ा ने रिलीज की विजय कृष्ण आचार्य के लेखन और निर्देशन वाली आमिर खान की फिल्म धूम 3। इस फिल्म ने 500 करोड़ की कमाई करके एक रिकॉर्ड कायम किया है।

आदित्य चोपड़ा इन दिनों अपने बैनर यशराज फिल्म्स के लिए बतौर प्रोड्यूसर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। साल 2014 में यशराज फिल्म्स के बैनर तले उन्होंने पेश की फिल्म मर्दानी। इसमें मुख्य भूमिका में थीं रानी मुखर्जी। साल 2015 में शरद कटारिया के निर्देशन में एक फिल्म आई दम लगा के हईशा। इसे भी यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। यशराज फिल्म्स आजकल नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रहा है। साल 2014 में आई शाद अली की फिल्म किल दिल। इस फिल्म के गाने गुलजार ने लिखे थे। सुनते हैं ये गाना।

आदित्य चोपड़ा की एक चर्चित फिल्म रही है फैन, जिसमें शाहरुख खान दोहरी भूमिका में थे। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। आदित्य चोपड़ा ने काफी लंबे समय तक किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। फिल्म फैन और सुल्तान के वो निर्माता ही रहे। यशराज फिल्म्स की तमाम फिल्मों के निर्माण की जिम्मेदारी वो संभालते रहे और इस बैनर के तले कई निर्देशकों ने अपनी फिल्में निर्देशित की। बहुत बरस बाद आदित्य चोपड़ा एक बार फिर से लौटे निर्देशन की दुनिया में। उन्होंने बनाई फिल्म बेफिक्रे।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता, निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, गाते गाते आप इस दीवार से जाती हो।

0: जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।